ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। उषा की अलसाई पलकों पर निशा की चुप्पी प्रभात में ढल चुकी है और सूर्य की किरणें कोमल अंचल लिए धरती पर आ रही हैं। पवन लहरियों की वीणा पर पंछी चहचहा उठे हैं। नील गगन की सुंदर आभा के साथ नव आशा का दीपक नई ऊर्जा लिए जल उठा है और हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्रोताओं, आप अपनी दिनचर्या आरंभ कर चुके हैं और साथ ही आपने अपना रेडियो सेट भी ऑन कर लिया है और आपको इंतजार होगा देश दुनिया में हो रही गतिविधियों को जानने का। तो देर कैसी, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो। कुछ ही पलों में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमान योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ

0: ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। श्रोताओं, समय है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में आप सुनेंगे ग्रीष्मकालीन जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर डॉक्टर तेजेंद्र कुमार से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ग्रीष्मकालीन जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन इस समय?
3: किसान भाइयों के लिए खेती में ग्रीष्मकालीन जुताई बहुत ही आवश्यक है, बहुत फायदे हैं इससे। देखिए, जुताई तो खेत की मिट्टी की ऊपरी परत को चीरना या उसको उलट देना, ये जुताई कहलाती है। अब जुताई जो होती है कई प्रकार की, जैसे गहरी जुताई होती है, छिछली जुताई होती है, ग्रीष्मकालीन जुताई होती है। तो इस समय ग्रीष्मकालीन जुताई की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, रबी फसलें सब कट चुकी हैं, खेत खाली हो गए हैं, तो जितनी जल्दी हो सके गहरी जुताई कर देना चाहिए। इस समय गर्मी पड़ रही है और ये कम से कम जुताई है ये 15 सेंटीमीटर गहरी जरूर करनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी नीचे की मिट्टी पलट के ऊपर आ जाए। मुख्य बातें इस प्रकार से हैं, जैसे कि ग्रीष्मकालीन की जुताई हर 2-3 साल में एक बार जरूर कर देना चाहिए खेत में। इसके अलावा खेत के चारों ओर ऊंची ऊंची मेड़े बंधी होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन जुताई करें उसके बाद मेड़ अवश्य बांध दें, जिससे कि जो बरसात होगी उसका पानी खेत से बाहर न जाने पाए, क्योंकि ग्रीष्मकालीन जुताई जब होती है तो उसके बाद बड़े बड़े ढेले ऊपर आ जाते हैं, वो ढेले बरसात के 33% पानी को सोख लेते हैं और जो पानी बचता है वो खेत में भरा रहता है। तो इस तरह से मजबूत मेड़े बंधी रहेंगे तो जो पानी बरसात का है वो भी बाहर नहीं जाने पाएगा। इसके अलावा जब ग्रीष्मकालीन जुताई कर देते हैं आप, तो जमीन में जल धारण क्षमता, जो पानी सोखने की क्षमता है, वो भी बढ़ जाती है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जुताई हमेशा, अगर खेत आपका ढालू है तो ढाल के विपरीत करना चाहिए खेत, जिससे कि जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे जाए और कंप्लीट तरह से सोख जाए, पूरी तरह सोख जाए वर्षा का पानी।
2: तो जहां भी ग्रीष्मकालीन जुताई करनी है डॉक्टर साहब, तो मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए?
3: जी हाँ, मिट्टी पलटने वाले हल से करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर मिट्टी पलटने वाला हल नहीं उपलब्ध आपके पास तो आप कल्टीवेटर से भी जुताई कर सकते हैं, लेकिन गहरी जुताई करें। इस बात को ध्यान रखें कम से कम 15 सेंटीमीटर गहराई की मिट्टी जरूर ऊपर आ जाए।
2: तो इसके फायदे क्या क्या है ग्रीष्मकालीन जुताई के?
3: मुख्य जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये कि मिट्टी के सतह पर, ऊपरी सतह पर जो भी फसल अवशेष पड़े रहते हैं, जैसे रबी फसलें कटने के बाद पैरा पड़ा रहता है, पत्तियां पड़ी रहती हैं, घास फूस पड़े रहते हैं, खरपतवार, ये सब मिट्टी के नीचे पहुंच जाते हैं जब गहरी जुताई कर देते हैं, मिट्टी के साथ नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार जो हानिकारक कीड़े मकोड़े रहते हैं जमीन में, उनके अंडे बच्चे रहते हैं, वो सब भी भूमि के ऊपर आ जाते हैं और इस तेज गर्मी की धूप में सब मर जाते हैं, जिससे कि हमारी मृदा स्वस्थ हो जाती है। इसी तरह खरपतवारों के बहुत से बीज उस जमीन में पड़े रहते हैं, वो भी बीज गर्मी की जुताई करने से ऊपर आके गर्मी की धूप में खत्म हो जाते हैं। इस तरह मिट्टी का जो कटाव है, बरसात जब होती है तो मिट्टी बरसात के पानी से कट के बहती रहती है, तो ये कटाव भी लगभग 66% तक कम हो जाता है, क्योंकि पानी का बहाव तेजी से नहीं हो पाता है, ढेले रहते हैं, वो पानी को सोख लेते हैं और बहाव की गति कम कर देते हैं, तो इस तरह कटान भी बहुत कम होता है। इसके अलावा गोबर की खाद जैसे देते हैं या कार्बनिक खाद जो भी देते हैं मिट्टी में रहता है, वो भली भांत आसानी से मिल जाता है मिट्टी में और पौधों को पोषक तत्व के रूप में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार बहुत से जीवाणु रहते हैं, लाभदायक जीवाणु रहते हैं हमारे मिट्टी के भीतर, वो मिट्टी के भीतर के जीवाणु जो उपलब्ध हैं उनकी सक्रियता भी बढ़ जाती है जब ग्रीष्मकालीन जुताई होने के बाद, और जो कि दलहनी फसलों में भी अधिक उपयोगी हुई है। इसी प्रकार जब गहरी जुताई कर लेते हैं तो मिट्टी के भीतर हवा और सूर्य का प्रकाश, ये दोनों का भी संचरण और नीचे सतह तक आसानी से होता रहता है।
2: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे ग्रीष्मकालीन जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
3: 9415550 5

0: 15560503 94155060503। किसान भाइयों को इस गर्मी की जुताई को अवश्य खेत में करना चाहिए तथा जो फसल अवशेष बचा हुआ खेतों में इसको जलाएं ना कतई, बल्कि इसका अवशेष प्रबंधन करके खेत में ही सड़ाएं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी और आपकी फसल उत्पादन अच्छा से अच्छा होगा।
1: डॉक्टर तेजेंद्र कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और ग्रीष्मकालीन जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ग्रीष्मकालीन जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन, इस विषय पर अभी किसान भाई सुन रहे थे डॉक्टर तेजेंद्र कुमार से की भेंट वार्ता। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। खेतों में मीठा पानी और जीवन में मीठी वाणी हमेशा मिठास और खुशहाली ही लाते हैं। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, वाणी का महत्व। वाचन स्वर डॉक्टर शीबा राकेश का है।
3: मनुष्य जीवन में वाणी का स्थान अद्वितीय है। ये केवल ध्वनि या शब्दों का समूह नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, संस्कार और आत्मा की अभिव्यक्ति है। वाणी मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, भावनाओं का संप्रेषण होता है और संस्कृति का संवहन संभव होता है। जिस प्रकार जल जीवन के लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार वाणी सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए अनिवार्य है। वाणी का प्रभाव गहन और व्यापक होता है। मधुर वाणी किसी उदास मन को प्रफुल्लित कर सकती है, किसी निराश व्यक्ति को आशा से भर सकती है और किसी क्रुद्ध व्यक्ति को शांत भी कर सकती है। दूसरी ओर कटु वचन गहरे घाव छोड़ जाते हैं, संबंधों को तोड़ते हैं और मनुष्यता को कलुषित करते हैं। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने वाणी को तपस्या और साधना का विषय माना और उसे संयमित, मर्यादित तथा परिष्कृत करने का आग्रह किया। सच्चाई ये है कि वाणी केवल मुख से बोले गए शब्दों तक सीमित नहीं, ये तो मन के भाव, बुद्धि की गहराई और आत्मा की संवेदनशीलता का स्वरूप है। किसी के कहे गए शब्दों का तभी प्रभाव होता है जब वे उसके आचरण और जीवन से मेल खाते हों। असंगति की स्थिति में वाणी निर्जीव और निष्प्राण प्रतीत होती है, पर जब जीवन और वचन में एक रूपता आती है तब वाणी मंत्रवत प्रभाव उत्पन्न करती है। वाणी का एक आयाम है संयम। अनियंत्रित वाणी बारूद की चिंगारी की तरह है, जो स्वयं भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है, जबकि संयमित वाणी शीतल चांदनी की तरह है, जो जीवन को आलोकित कर देती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने वाणी संयम को साधना का प्रथम सोपान माना। वाणी का दूसरा आयाम है प्रेरणा। वाणी केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि मार्गदर्शन का उपकरण भी है। इतिहास गवाह है कि महापुरुषों की वाणी ने समाज की दिशा बदल दी। भगवान श्री कृष्ण की गीता की वाणी ने अर्जुन जैसे शंकालु योद्धा को धर्म युद्ध हेतु प्रेरित किया। महात्मा बुद्ध की वाणी ने करुणा का मार्ग प्रशस्त किया और महावीर की वाणी ने अहिंसा को मानवता का सर्वोच्च मूल्य बना दिया। वाणी का तीसरा आयाम है सृजन और संवेदनशीलता। मधुर वाणी में संबंधों को जोड़ने और जीवन को सुंदर बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। ये व्यक्ति और व्यक्ति के बीच सेतु का कार्य करती है। कटु वाणी दीवारें खड़ी करती है, सौम्य वाणी पुलों का निर्माण करती है। इसीलिए कहा गया है, मधुर वचन अमृत तुल्य है और कटु वचन विष के समान। वाणी का एक और आयाम है साधना। साधना का अर्थ केवल मंत्र जप या पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता में निहित है। साधना से निकली हुई वाणी मात्र ध्वनि नहीं रहती, वो ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। ऐसी वाणी न केवल सुनने वालों के कानों में गूंजती है, बल्कि उनके हृदय में उतरकर जीवन का पथ प्रदर्शन करती है। वाणी के माध्यम से मनुष्य अपने संस्कारों को व्यक्त करता है। ये केवल शाब्दिक संप्रेषण नहीं, बल्कि आंतरिक व्यक्तित्व का दर्पण है। वाणी जितनी परिष्कृत होगी, जीवन उतना ही उज्ज्वल और दिव्य होगा। वास्तव में वाणी वो साधन है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण, व्यक्तिगत से सामाजिक और सीमित से असीमित बना सकती है। यही वो पवित्रता है जो वाणी को साधना का अमूल्य वरदान बनाती है। वाणी केवल ध्वनि नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति है। ये न केवल संबंधों का निर्धारण करती है, बल्कि संस्कृतियों और सभ्यताओं की धारा को भी दिशा देती है। ये या तो जीवन को विषमय बनाती है या अमृत तुल्य। इसीलिए आवश्यक है कि हम वाणी के प्रत्येक प्रयोग को साधना मानकर करें। हमारी वाणी में सत्य, करुणा और माधुर्य का सम्मिश्रण हो, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे और समाज को सही दिशा प्रदान कर पाएंगे।
2: मनुष्य को प्रकृति का सबसे शक्तिशाली और अनमोल

प्रदान है वाणी। तो अपने संस्कारों से, व्यक्तित्व और रिश्तों की मिठास से, अपनी बोली से बनाए रहिए अपने आसपास अपने रिश्तों और मित्रों का एक समूह। अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, वाणी का महत्व। वाचन स्वर डॉक्टर शीबा राकेश का था। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जिनके चरणों में आरंभ का मंगल और जीवन का संबल छिपा है, भगवान गणेश, जो हमें नव ऊर्जा, नव प्रेरणा और शुभारंभ का प्रकाश अपने भक्तों के जीवन में जगाते हैं। आइए मंगल मूर्ति की वंदना से प्रारंभ करते हैं आज की आराधना।

मन को असीम शांति, शक्ति और सकारात्मक प्रदान करती हैं देवी माँ। देवी माँ जो सिर्फ हमारे लिए मूर्ति ही नहीं बल्कि धैर्य, साहस और शक्ति का जीता जागता रूप हैं। आइए माता की जय जयकार करें।

आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। और अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 198 में निषाद राज के साथ प्रयाग के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भरत के मन में परिताप का प्रसंग।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा।

कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: प्रत्येक बुधवार सायं 6:30 पर कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को सुन सकते हैं आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच के माध्यम से भी।

0: श्रोताओं, समय हुआ है सुबह के 7 बजे का और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। आज की स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं जानकारी एंटीऑक्सीडेंट का खजाना लीची के बारे में। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो गर्मियों के आरंभ में ही अपनी खुशबू, सुगंध, मिठास और ताजगी से सभी का मन मोह लेता है। इसका रंग गुलाबी होता है, स्वाद रस भरा और ठंडक देने वाला होता है। हम बात कर रहे हैं लीची की। लीची न केवल स्वाद का खजाना है बल्कि इसमें छुपे हैं कई ऐसे गुण जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। गर्मियों की धूप में जब शरीर थक जाता है तब लीची का ठंडा रस और रसीला स्वाद हमारे तन और मन दोनों को तरोताजा कर देता है। इसकी मिठास प्राकृतिक होती है और इसमें उपस्थित जल तत्व हमारे शरीर की नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं। लीची को अक्सर हम केवल एक मौसमी फल की तरह देखते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसके पोषक गुण इसे सुपर फूड की श्रेणी में ला सकते हैं। लीची में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। जब गर्मियों में शरीर थकावट और लू का शिकार होने लगता है तब ऐसे में विटामिन सी हमारी रक्षा करता है। ये न केवल संक्रमण से बचाता है बल्कि हमारी त्वचा को भी चमकदार और युवा बनाए रखने में सहायता करता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कॉपर, फॉस्फोरस और कई प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो हृदय, मस्तिष्क और लीवर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। लीची एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मात्रा प्राकृतिक रूप से संतुलित होती है जिससे ये तुरंत ऊर्जा देता है। गर्मी के मौसम में जब शरीर सुस्त पड़ जाता है तब कुछ लीचियाँ खाने से शरीर को तुरंत ताजगी का एहसास होता है। खासकर बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है जो स्वाद में तो मीठा है ही लेकिन साथ में ऊर्जा और जल की पूर्ति भी करता है। शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की समस्या गर्मियों में आम होती है। लीची इसमें विशेष रूप से सहायक होती है क्योंकि ये लगभग 80% पानी से भरपूर होती है। इसका सेवन शरीर में तरलता बनाए रखता है और ये त्वचा की कोशिकाओं को भी हाइड्रेट करता है। यही कारण है कि लीची खाने से त्वचा मुलायम, चमकदार और ताजगी भरी बनी रहती है। लीची का प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर भी सकारात्मक होता है। इसमें उपस्थित फाइबर मल त्याग को आसान बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा ये गैस और अपच जैसी परेशानियों को भी कम करने में मददगार है। अगर भोजन के बाद लीची खाई जाए तो ये पाचन में सहायता करती है और पेट को हल्का बनाए रखती है। कुछ वर्षों में हमने देखा है कि लीची को लेकर कई भ्रम फैले हैं, खासकर छोटे बच्चों में इसके अधिक सेवन से जुड़ी कुछ घटनाएं चर्चा में रहीं। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी चीज अगर संतुलन में ना ली जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। लीची में प्राकृतिक शुगर अधिक मात्रा में होती है इसलिए इसे खाली पेट या बहुत अधिक मात्रा में खाने से शरीर में ग्लूकोज असंतुलन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि लीची हानिकारक है बल्कि ये है कि इसे संतुलन और सही समय पर लेना चाहिए। जैसे कि दिन के समय भोजन के बाद अगर आप वजन घटाने की सोच रहे हैं तो भी लीची एक अच्छा विकल्प हो सकती है बशर्ते इसे सीमित मात्रा में लिया जाए। इसमें जीरो फैट और कम कैलोरी होती है और यदि ये अन्य फलों और हल्के नाश्ते के साथ खाई जाए तो ये एक हेल्दी विकल्प बन सकती है। इसे स्मूदीज, शरबत या सलाद के रूप में भी लिया जा सकता है जिससे इसका स्वाद और पोषण दोनों बना रहता है। भारत में खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लीची की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मुजफ्फरपुर की लीची तो GI टैग भी पा चुकी है और उसकी मिठास के चर्चे देश विदेश में हैं। इसका मतलब ये भी है कि ये फल न केवल पोषण और स्वाद का स्रोत है बल्कि हमारे किसानों की मेहनत और भारत की कृषि विविधता का प्रतीक भी है। श्रोताओं, जब अगली बार आप लीची खाएं तो उसे केवल स्वाद का फल न समझें, उसमें छुपे पोषण, ताजगी और स्वास्थ्य के गुणों को भी पहचाने। ये फल हमें प्रकृति की तरफ से गर्मियों में मिला एक उपहार है जो हमारे शरीर को ठंडक, ऊर्जा

0: और सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन हमेशा याद रखें, हर अच्छी चीज की तरह इसका भी सेवन संतुलन के साथ करें। ताजगी से भरपूर फल खाएं और गर्मियों की इस मिठास को स्वास्थ्य के साथ बांटें। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: एंटीऑक्सीडेंट का खजाना लीची, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा में। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। आप सुन रहे हैं 747 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। और श्रोताओं, अब समय है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला में आज का विषय है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस विषय पर बताएंगे नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर समाअत फरमाइएगा कलीम सिफात इस्लाही का मकाला, बाहमी इत्तेहाद के फरोग में उर्दू जबान का किरदार। इसके अलावा कलामे शायर में आप सुनेंगे अब्दुस सलाम सलाम फैजी से उनका ताजा कलाम, पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की होगी। सुबह 9:15 का समय होता है जिले की हलचल का। आज के जिले होंगे मथुरा और प्रतापगढ़। कानून की बात कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनिएगा ऐश्वर्या द्विवेदी, एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनना ना भूलें मुक्तिनाथ झा की कहानी उलझन।

श्रोताओं आपको बता दें, शाम 7:31 पर कानून की बात में आप सुनेंगे पॉक्सो एक्ट 2012 में बदलाव विषय पर ऐश्वर्या द्विवेदी से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव का राग चारुकेशी में बांसुरी वादन। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद अहमद हुसैन का शहनाई वादन राग यमन में। ममता श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोकरंग कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर, और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी। इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर पूरन चंद विभागाध्यक्ष प्रोस्थोडेंटिक्स विभाग केजीएमयू लखनऊ से की गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा बढ़ती उम्र की महिलाओं में दांतों की समस्या। इस विषय पर बातचीत करेंगी नीना सोनकर। पशुओं में खुरपका मुंहपका कारण और निवारण विषय पर सुनना ना भूलें डॉक्टर सुनील कुमार राय से की गई भेंटवार्ता। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5:45 पर नई उड़ान कार्यक्रम में फिट इंडिया क्रम में ओबी आधारित जानकारी का विषय होगा जल संकट विनाश की आहट। और शाम 5:10 पर हमारे युवा साथी युवा तरंग में सुनेंगे सुनील कुमार तिवारी से की गई भेंटवार्ता समाज आधारित अर्थव्यवस्था। भेंट करता होंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान सुनना ना भूलें शाम 6:30 पर। आज इस कार्यक्रम में विषय है खरीफ उत्पादन की तैयारी और उन्नत तकनीक, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, खरीफ फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र, अपर कृषि निदेशक कृषि रक्षा उत्तर प्रदेश। प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय का होगा। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से 747 KHz पर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा के साथ।

आज की विविधा में सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं वैशाली। अच्छा बताइए दोस्तों, अगर आज दुनिया के सभी लोग अचानक एक दूसरे से बात करना बंद कर दें तो क्या होगा? व्यापार ठप, रिश्ते टूट जाएं, युद्ध भड़क उठे और हजारों साल की इंसानी विरासत धूल में मिल जाए तो कैसी होगी दुनिया? कभी सोचा है? दुनिया में इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतने रीति रिवाज, इतने खान पान, पहनावे और अलग अलग सोच होने के बावजूद इंसान एक दूसरे से जुड़ कैसे जाता है? कोई नमस्ते कहता है, कोई सलाम तो कोई हेलो, कोई वड़क्कम, लेकिन भावना एक ही होती है, मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ। और यही सम्मान, यही समझ, यही बातचीत हमें आपस में जोड़ती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2024 में 10 जून को विश्व सभ्यता संवाद दिवस मनाने की घोषणा की। इसे मनाए जाने का उद्देश्य था अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों और समाजों के बीच संवाद, सम्मान, सहयोग और शांति को बढ़ावा देना। तो आज की विविधा में बात उस सभ्यता की जिसमें समाज जीता है, जो हमें हमारी पहचान देती है, बात उस संवाद की जो सीमाओं से परे जाकर लोगों को जोड़ता है, भेदभाव को कम करता है और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करता है। हम कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह त्योहार मनाते हैं, बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं और अपने जीवन के मूल्यों को कैसे अपनाते हैं, ये सब हमारी सभ्यता संवाद का हिस्सा हैं और भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, हर किलोमीटर पर भाषाएं बदलती हैं, स्वाद बदलता है, गीत संगीत बदलते हैं, रंग बदलते हैं, फिर भी हम एक राष्ट्र के रूप में जुड़े रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरती एक परिवार है। बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई और कई अन्य समुदायों ने देश की सभ्यता को समृद्ध बनाया है। हमारे त्योहार भी हमें यही सिखाते हैं। दीपावली केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं बल्कि खुशियां बांटने का अवसर है। ईद भाईचारे का संदेश देती है, क्रिसमस प्रेम और करुणा की सीख देता है, वहीं गुरु पर्व सेवा और मानवता का महत्व बताता है। इन सभी अवसरों पर लोग एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, यही है सभ्यता संवाद की असली भावना। सोचिए अगर पुराने समय में सभ्यताएं एक दूसरे से ना जुड़ती तो क्या होता? ना व्यापार फैलता, ना ज्ञान फैलता, ना कला फैलती, ना विज्ञान इतना आगे बढ़ता। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट केवल सामान का रास्ता नहीं था, विचारों का भी रास्ता था। दोस्तों, लोग मसाले लेकर जाते थे लेकिन साथ में भाषा, संगीत, कहानियां और ज्ञान भी ले जाते थे। भारत की सभ्यता ने दुनिया को योग, आयुर्वेद, शून्य दर्शन और आध्यात्मिक दृष्टि दी। तो दुनिया की दूसरी सभ्यताओं ने भी मानवता को विज्ञान, कला, वास्तुकला, साहित्य और नए विचार दिए। यानी हर सभ्यता मानवता की किताब का एक सुंदर अध्याय है और अगर कोई एक अध्याय खुद को पूरी किताब मान ले तो ज्ञान अधूरा रह जाता है। पांचवीं सदी में बना नालंदा विश्वविद्यालय, जहां चीन, कोरिया, अरब, श्रीलंका के छात्र एक साथ पढ़ते थे, ये था असली संवाद

ये थी असली सभ्यता। आज के डिजिटल युग में जब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, मोबाइल की स्क्रीन पर हम कुछ सेकंड में किसी दूसरे देश के व्यक्ति से बात कर सकते हैं, एक क्लिक में जापान की तकनीक देख सकते हैं, अफ्रीका का संगीत सुन सकते हैं, यूरोप की कला समझ सकते हैं और भारत का योग पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, संचार के साधन तो बढ़े हैं मगर कहीं ना कहीं संवाद कम हो गया है, यानी कि जानकारी की बाढ़ तो है लेकिन समझ का आज अकाल है। विश्व सभ्यता संवाद दिवस उत्सव नहीं एक चेतावनी भी है दोस्तों, जो हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता का मतलब अपनी जड़ों से कट जाना नहीं है। आधुनिकता का अर्थ है अपनी सभ्यता को समझते हुए दूसरों की सभ्यता संस्कृति का सम्मान करना। संवाद की असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, दिल बड़ा करने में है। संवाद का अर्थ है मैं अपनी बात कहूँ लेकिन आपकी बात भी सुनूं। मैं अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व करूं, लेकिन आपकी सभ्यता संस्कृति का भी सम्मान करूं। मैं अपनी पहचान बचाऊं, लेकिन आपकी पहचान को भी जगह दूं। दोस्तों, यही सभ्यता है, यही संवाद है और यही मानवता है। याद रखें, दुनिया को दीवारें नहीं दरवाजे चाहिए, और दरवाजा तब खुलता है जब हम दस्तक देते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, दुनिया तब खूबसूरत बनती है जब सभ्यताएं टकराती नहीं, आपस में संवाद करती हैं, कुछ नया सीखती हैं और तभी समाज में बदलाव आता है और तभी राष्ट्र विकास करता है। तो आज की विविधा में बस इतना ही। दीजिए अनुमति वैशाली को नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
3: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
2: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
3: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
3: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कल 12 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पंथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई प्रमुख लोगों ने बधाई दी। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने कहा कि ये कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जय प्रकाश शिवहरे ने कल लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है।
4: भारत सरकार

0: इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जनविश्वास एक और जनविश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जनविश्वास फूल के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके इस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
1: रक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की इस पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश में प्रस्तावित सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के प्रगति की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: एक अन्य बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए कल लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिमोहन श्रीवास्तव का राग चारुकेशी में बांसुरी वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे, जिसे संपन्न करने का वक्त हो चला है, तो दीजिए अनुमति हमें। लेकिन श्रोताओं बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने

0: नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेत्रित्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की

0: भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60 1000 करोड़ रुपए आवंटित

0: किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
3: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
2: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र और आप सुन रहे हैं यंग बरेली। दोस्तों, यंग बरेली में हम हर बार आपके सामने एक यंग अचीवर को लेके आते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं अक्षिता राठौर जी। अक्षिता राठौर जी ने कई गेम की प्रतियोगिता में ताइक्वांडो के द्वारा 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आइए आपसे उनको मिलवाते हैं। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते बेटा, कैसे हो?
1: मैं सही हूँ।
0: तो अक्षिता, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो?
1: मैं 6th में हूँ।
0: अच्छा, तो ताइक्वांडो का शौक आपको कैसे लगा?
1: ताइक्वांडो का शौक

0: पहले मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए करा था, पर अब मेरे को इतना अच्छा लगता है कि अब मैं उसको करे बिना रह ही नहीं पाती।
1: हाँ, तो जीवन में हम लोग जो चीज आदत में शुमार कर लेते हैं तो वो फिर छूटती नहीं है ना। और बढ़िया है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बढ़िया है, और आत्मरक्षा हर किसी को आनी चाहिए, खासतौर से लड़कियों को, है ना।
0: जी
1: तो कौन-कौन सी प्रतियोगिता आपने लड़ी और कहाँ-कहाँ आपको गोल्ड मिला?
0: मेरे को 5 गोल्ड मिले हैं, जिसमें से मेरे को 4 डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं और 1 13th ओपन नेशनल में मिले हैं।
1: तो ये जो ओपन नेशनल हुई थी ये कहाँ हुई थी?
0: ये उत्तराखंड में हुई थी।
1: उत्तराखंड हल्द्वानी में शायद, है ना।
0: हाँ
1: तो बहुत बढ़िया बात है। और आपको आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा इसके लिए आगे बढ़ाने में प्रेरणा देते हैं,
0: जी
1: तो आप क्या कहना चाहेंगी? अपने मम्मी पापा, अपने कोचेस को धन्यवाद देना चाहेंगी रेडियो के माध्यम से?
0: मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा गोल्ड मेडल आया है, और जब से मेरा गोल्ड मेडल आया कि तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत थैंक्स अपने विमल मिश्रा सर, अपने पापा और अपनी मम्मी मिस्टर दिवांग राठौर, मिसेस दीपा राठौर।
1: तो उनको भी बड़ी खुशी हुई होगी, मम्मी पापा को और आपके सारे रिश्तेदारों को, कि आपको इतने सारे गोल्ड मिले हैं, है ना।
0: जी
1: तो हमारे रेडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी श्रोताओं को, लिसनर्स को जो सुन रहे होंगे, कि खेल के माध्यम से लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाई में बढ़ाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं सबके लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, उन लड़कियों के लिए, हर टीनेज लड़कियों के लिए, और मैं चाहती हूँ कि उनको भी अपने लिए अपना खुद की रक्षा करना आना चाहिए।
1: तो बहुत अच्छा लगा अक्षिता जी आपसे बात करके। और आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगी?
0: मैं भविष्य में ओलंपिक मेडल लाना चाहती हूँ
1: और
0: देश
1: देश
0: के
1: का
0: लिए।
1: नाम रोशन करना चाहती हूँ, है ना।
0: जी
1: तो आकाशवाणी बरेली परिवार की ओर से, समस्त श्रोताओं की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आपने हमसे बात करी, हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

सिपाही भर्ती परीक्षा में उमड़ी भीड़, बस अड्डों व स्टेशन पर अफरा तफरी, जाम ने किया परेशान। जिले के 19 केंद्रों पर हुई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। आज यानी कि 10 तारीख को परीक्षा का अंतिम दिन। 17,400 अभ्यर्थी पंजीकृत थे दूसरे दिन, जिनमें से 13,520 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। 3,952 अनुपस्थित रहे दोनों पालियों में। 52,500 अभ्यर्थी हैं तीनों दिन के लिए बरेली में पंजीकृत। दोस्तों, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जिले के केंद्रों में हजारों अभ्यर्थियों के पहुंचने से मंगलवार को शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। परीक्षा केंद्रों के आसपास बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पे भारी भीड़ उमड़ने से अभ्यर्थियों के साथ साथ आम यात्रियों को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ी। परीक्षा के समाप्त होने के बाद कई प्रमुख मार्गों पे जाम लग गया, जबकि बसों और ट्रेनों में सीट पाने के लिए धक्का मुक्की की स्थिति बनी रही। मित्रों, पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जिले में 19 केंद्रों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। भीषण गर्मी के बीच परीक्षा देने आए युवाओं में उत्साह तो दिखा, लेकिन परीक्षा के बाद घर लौटने की चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई। बरेली कॉलेज के सामने सैटेलाइट बस अड्डा, जंक्शन रोड और रेलवे जंक्शन रोड पर देर रात तक जाम की स्थिति बनी रही। इससे आम लोगों को भी आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परीक्षा समाप्त होने के बाद पुराना बस अड्डा और सैटेलाइट बस अड्डे पे अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बसों में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की होती रही। परिवहन निगम ने एडमिट कार्ड दिखाने पर अभ्यर्थियों को किराए में 50% तक की छूट दी थी, लेकिन अचानक बड़ी भीड़ के कारण अधिकारियों को व्यवस्था संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर भी कमोबेश यही स्थिति रही। ट्रेनों में सवार होने के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ने से प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। भीड़ के कारण नियमित यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। दोस्तों, मंगलवार को हुई परीक्षा में पंजीकृत 17,472 अभ्यर्थियों में से 13,520 शामिल हुए, जबकि 3,952 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पहली पाली में 8,756 में से 6,760 और दूसरी पाली में भी 6,760 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलने पे अधिकांश अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र का स्तर सामान्य बताया। तो मित्रों, आज भी तैयार रहिए, क्योंकि आज भी पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

मरम्मत हुई पूरी, 17 से खुलेगा चौपला पुल। दोस्तों, चौपला फ्लाईओवर की मरम्मत के चलते सुभाष नगर करकैना क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या बदल ही गई थी। 30 एक्सपेंशन जॉइंट्स की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI बदायूं के अधिकारियों ने मरम्मत के लिए 45 दिन के लिए 27 जून तक फ्लाईओवर पर वाहनों को बिल्कुल आवागमन बंद कराया था। मित्रों, लेकिन अब अवधि घटकर 17 जून कर दी गई है। NHAI के परियोजना निदेशक ने बताया कि जॉइंट्स की मरम्मत कराई जा चुकी है, अब फिनिशिंग का कार्य कराया जा रहा है और जहां जहां मरम्मत हुई है उनकी तरावट कराई जा रही है। दोस्तों, 17 जून से ही फ्लाईओवर पर वाहनों का आवागमन शुरू होगा। शहर की लाइफलाइन चौपला पुल अटल सेतु से जुड़ जाने के बाद महत्वपूर्ण हो गया है। सुभाष नगर की तरफ से इस पुल के माध्यम से शहर में ही नहीं सिटी स्टेशन रामपुर रोड पर आवागमन सुगम हो गया है। ये पुल बंद होने से रामगंगा तिराहे पे बदायूं की तरफ से आने वाले वाहनों को लाल फाटक की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। राहत की बात यह है कि NHAI के अधिकारियों ने पुल के सभी एक्सपेंशन जॉइंट्स की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा लिया है, तो है ना खुशखबरी, सभी के लिए 17 से खुलेगा चौपले का पुल।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
3: आप सुन रहे हैं यंग बरेली, आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। बीएड व बीएलएड अंतिम वर्ष के छात्र भी भर सकेंगे एमएड प्रवेश फॉर्म। आवेदन शुरू। अभ्यर्थी 30 जून तक विश्वविद्यालय के समर्थ प्रवेश पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन। पूर्व के वर्षों की तरह प्रवेश परीक्षा की जगह मेरिट के आधार पर होगा एमएड में दाखिला। दोस्तों, रुहेलखंड विश्वविद्यालय के शिक्षा और संबद्ध विज्ञान संकाय में संचालित बीएड व एमएड विभाग में शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अभ्यर्थी 30 जून तक विश्वविद्यालय के समर्थ प्रवेश पोर्टल पे आवेदन कर सकते हैं। बीएड द्वितीय वर्ष व बीएलएड चतुर्थ वर्ष

की परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों को भी एमएड प्रवेश के लिए आवेदन का अवसर प्रदान किया गया है। इस बार दाखिला पूर्व के वर्षों की तरह प्रवेश परीक्षा की जगह मेरिट के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, इस परिवर्तन से अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा की तैयारी और अतिरिक्त बैग से राहत मिलेगी। मित्रों, प्रवेश के लिए बीएड व पीएलएड में न्यूनतम 55% अंक होना आवश्यक है। वहीं बीएड व बीएलएड अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्राप्तांकों व अन्य आवश्यक विवरण को पोर्टल पर अपलोड करने का अवसर दिया जाएगा। इससे अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी समय से प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। इन स्टेप्स का पालन कर भरें फॉर्म। दोस्तों, अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम समर्थ प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके बाद उसी पोर्टल पर उपलब्ध कॉलेज पंजीकरण प्रपत्र भरना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट निकालकर आवश्यक दस्तावेज सहित बीएड व एमएड विभाग में जमा कराना होगा। विभाग में आवेदन प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।

यंग परिली। अभी आपने सुना ये साप्ताहिक कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं कुछ लोक गीतों को लोक रंग में। कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति है अंशुना सक्सेना के स्वर में।

अभी आपने सुने कुछ लोकगीत लोक रंग में। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। अब आप सुनेगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। अंग्रेजी में कहते हैं इस फिल्म का गाना शान की आवाज में, गीत को

दोस्तों, आज सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। प्रतिवर्ष 10 जून को ये दिन मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, वैश्विक एकजुटता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य ये भी है कि विभिन्न सभ्यताओं की विविधता के सम्मान, समान संवाद और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए बातचीत के महत्व को उजागर करता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि सभी सभ्यतागत उपलब्धियां मानव जाति की सामूहिक विरासत है और दुनिया में शांति व साझा विकास बनाए रखने के लिए संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गाना राज रिबूट, इस फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह की आवाज, रश्मि विराग का लिखा हुआ गाना, जीत गांगुली का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दो लफ्जों की कहानी। इस फिल्म का गाना कनिका कपूर की आवाज, कुमार के बोल हैं और अर्जुन का संगीत है।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमेश रेशमिया, शान कुणाल गांजावाला और अमृता काग की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना। हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम है अपने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

एक पहेली लीला, ये फिल्म का नाम है। मीत ब्रदर्स अनजान और कृष्णा की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है। मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है। क्या तकते हो? जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान अली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी जोशी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था। जॉनी का हवालात तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी, जिसमें मैं तो आ गया लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को तीस मार खा।
1: नारायण नारायण कल्याण हो। जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूं।
0: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
4: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
0: दोस्तों सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस सवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें। उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बंबई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साये में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थीं। सब लड़के

0: पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलेस मास्टर विठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वारे जमाने, कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था, किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी, और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूँ। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे, इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीतकर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा आशर साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाई आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे, क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
1: चंगेज खान के शेर दिल सिपाहियों, आसमान की मुकद्दस रूहों ने चंगेज खान को मंगल कौम में पैदा किया, आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खान के वफादार रहे हो, इस मुतबर्रक कला की कसम खाकर उसी तरह हमेशा वफादार रहने का इकरार करो, ताकि हम चंगेज को दुनिया का फातिहा देखें, तुम्हारे शम्मन की आरज़ू पूरी हो।
2: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया, नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
0: दस्त तो दस्त थे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्राव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्की चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप भारत भूषण मियां नजीर वास्ती पहाड़ी सान्याल बेमिसाल गीता बाली मधुबाला सुरैया लाजवाब नरगिस मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजर कर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के कारदार कर रहा हूँ।
2: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
0: नई हीरो ने मुमताज शर्मिला टैगोर बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांता अपने के मुकाबले में कर चुका हूं। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने एक ही कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूं तो वो मुझे बदमाश कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो, वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं, भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
3: मेरी बेटी कहां है मेरी बेटी?
4: बच्चा मैं खराब

0: कर दिया। साफ कह रहा हूँ,
1: मेरी बेटी कहाँ?
0: बैठे कौन सा बेटे?
1: उस राज्य से तुम उठा कर ले गए थे।
0: हमें कुछ याद नहीं।
1: याद करो, प्लीज याद करो।
0: ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
1: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
0: रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूँ, और तुम मेरे कदमों में।
1: मुझे सिर्फ इतना बतला दो, मेरी बेटी कहाँ है?
0: मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से समझा, उसे पढ़ने लिए वलायत भेजा, और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
1: मुझे एक दफा उससे मिलने दो प्लीज।
0: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
2: गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ, और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई, और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन, यहाँ तक कि मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई, और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई, छई में मिस्टर पुराण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एसएम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायती नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर वही खामिन ललिता बाई का है? और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना? छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना हे भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते।

मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा मैं। अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

0: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता है। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतबल ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: नामालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो ही हाथ मैनेजर पंजे ढीले कर दिए। कम वक्त देसी मैन जंगली
2: हाथी हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
2: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली।
1: अरे चब्बे जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी दुला, के दुसहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
2: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई
1: कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
2: नहीं नहीं, नहीं
1: मगर कौन सी परी भैया?
2: अरे वही बसंती।
1: अच्छा ओ तुहार मार छुट्टिया।
2: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
0: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है, तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता दुनिया।

0: आग में तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गया। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज़ दफ़े नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं आए। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब?
3: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
2: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
3: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
2: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
3: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू, अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
2: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
4: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
5: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
1: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बुद्ध, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्ग बार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया।
6: यार हमारी बात सुनो,

0: न हो।
1: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
2: दोस्तों, बात बाहर ना जाए। मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट, रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिर कर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाए। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए, वरना
3: अरे तो

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां पर आपको मिलता है गीत संगीत और ज्ञान का बंपर एंटरटेनमेंट। आपके सोशल मीडिया के फरमाइशी फिल्मी गीतों के कमेंट्स पे आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद के आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो हमसफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म जंजीर से, आवाज है मन्ना डे की, गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। इसी गीत की फरमाइश भेजिए मौला हलवायान शेरकोट बिजला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने।

हमारे पुराने श्रोता खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। आप हैं बहेड़ी से अंजुम भाई खालदा बेगम, इसी गीत को सुना चाहे साधु शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़, चंदकला रिवाड़ ने। आप हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक।

राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, अभय गुजराती। ये फरमाइश आई है गंजुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी की। वारसी क्लब सिंदौली मीरगंज बरेली से आप हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रिहान शेख। करूल अमराबाद से युब खान, इमरान शेख, रिहान शेख। ये फरमाइश है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा की। कोका भिलाई से आप हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदी जंगेल। दमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, सगुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। ये फरमाइश है नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजरत फातमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ पन्ने भाई और पप्पू भाई अंसारी की। गांव लोहडडप जिला बागपत से आप हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान। डांगरी से बाबूराम जयपाल। खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। और आप हैं हमारे पुराने श्रोता कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। तो सुनते हैं फिल्म जंजीर का ये गीत।

والا ہم سفر ہم راز ہوں تا قیامت تا قیامت

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: झुक गया आसमां, इस फिल्म में आप सुनेंगे मोहम्मद रफी को और शब्द रचना है हसरत जयपुरी की, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, ये फरमाइश है। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह की। आप हैं हमारे श्रोता मोहम्मद अकरम अंसारी नगरिया कला बरेली से। छत्तीसगढ़ भुरसुदा से भगवानी सेन, संतोषी सेन, चिराग सेन, गजेन सेन, इसी गीत को सुना जाए। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू ने। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से बेरूलाल वक्तरिया धाकड़, भोला वक्तरिया, प्रवीण वक्तरिया, रियांश वक्तरिया और प्रतीक वक्तरिया। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। ये कमेंट में भेजा है दहीकाव नांदुरा से धोंडू माथुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार भारती, प्रतीक्षा कोमल, समाधान भातुरकर, संत नगरी।

टिकाव से शुभम राउत कुमार रुद्र राउत। मित्रों आपसे निवेदन है कि एक बार में एक ही कमेंट भेजें। ज्योतिनगर नौकर राजस्थान से पुखरात बटकुचर कैलाश मिस्त्री गोर्धन धरा घनश्याम भार्गव बाबू गौरी और हसन सिक्का। इसी गीत को सुनना चाहे कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत कुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल ने। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग पूनाराम कृष्णा देवांगन। कलनौर से आप हैं नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा। अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य ज्योति शाक्य सक्षम शाक्य। इसी गीत को सुनना चाहे पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह अश्वनी शाह मंगल बिन शाह राजेंद्री शाह ने। जिला नांदेड़ इताला महाराज से शंकर लाल जायसवाल कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। ये फरमाइश है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किसु तासु अर्णव आनंद सत्यमानंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत गुड्डी भगत। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से आप हैं एम असलम सैफी जबुनिशा बेगम सद्दाम सैफी सोनी सैफी जाहिद सैफी आबाद सैफी आबाद खान। गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर बरेली से ओमपाल गंगवार अनीता गंगवार और इनके मम्मी पापा। ये कमेंट हमें भेजा है अशोक नगर मणिनाथ उत्तर प्रदेश बरेली से राकेश दिवाकर उर्मिला दिवाकर शिवा दिवाकर और लवी दिवाकर ने। नर्मदा पार्क मंगल बेटा से मास्टर अलीम पटेल मुजाहिद पटेल नदीम पटेल। आप है हमारे पुराने श्रोता ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारुनूर अंसारी फरियाद हुसैन अंसारी शकील अहमद इदरीसी मोइन अंसारी तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। आप हैं राजधानी रायपुर से नीलू मेघ डॉक्टर वन्ना कुमार बिट्टू कुमार। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर वीणा वंडलकर विविधा वंडलकर। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहनी हाजी डॉक्टर अफजल मलिक संदीप मक्कर। इसी गीत को सुनना चाहे रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी साहनी ने। तो सुनते हैं ये गीत आप और हम और सारे श्रोता।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: दीप तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना
2: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
2: देखा
1: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
1: फ्री वाईफाई है ना
2: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: बाकीचा इस फिल्म में आप सुनेंगे लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत गीतकार है कमाल अमरोही और संगीतकार है गुलाम मोहम्मद सुनने की फरमाइश है आप सबकी मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम उत्तर प्रदेश से तौफीक अहमद सिद्दीकी अतीक अहमद सिद्दीकी मोहम्मद दानिक सिद्दीकी

ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल। इसी गीत को सुनना चाहा है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने।

ग्राम कोठा मक्खन बरेली से अफरोज अंसारी, फारूक अंसारी। जमशेदपुर से आप हैं चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल। कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी भाई, कल्लू मिस्त्री। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर। इसी गीत को सुनने की फरमाइश है कस्बा सेथल, जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन अंसारी, तासिफ हुसैन अंसारी, मोहम्मद अजहान अंसारी, अलमीर बशर अंसारी की। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा। आप हैं बहुत पुराने श्रोता बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, सैम नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रानाज, बेबी चाहत। और ये हैं हमारे पुराने श्रोता जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। रोड़सरा नहला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, भीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांश साहू। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से आप हैं शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। इसी गीत को सुनना चाहा है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आरके राजा ने। नर्मदा पार्क मंगलवेडा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। आप हैं बहुत पुराने श्रोता पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और तुलसी मस्कीन। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। कटरा चांद का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली से अनुखिलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से आप हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शिंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने। ग्राम लसुडीहा पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिवस, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद डांगी। कनकोला दातागंज से आप हैं इसरत खान, शहरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान, अरहान खान। ग्राम व पोस्ट गौना कुसमाड़ा थाना सैजदा तहसील मेहरोनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव,

द्रौपदी देवी नामदेव, रामदेवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखनपाल नामदेव, चाहना नामदेव, आकाश नामदेव, रानी परी नामदेव, सुरभि नामदेव, पायल नामदेव और हैं इनके मम्मी पापा। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से रामचंद मखीजा का फिर भाई, श्रीमती सविता मखीजा, बेबी स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी एवं पूरा मखीजा कुटुंब सहृदय। राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार। ये कमेंट हमें भेजा है अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर और जयपाल यादव ने। सालपुरा जिला 12 राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल कफार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया कमेंट्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, अपने रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत के साथ। प्रेम कहानी, इस फिल्म में आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में एक गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोर्ड। ये कमेंट हमें भेजा है मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा जिला बरेली से तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, अजरुद्दीन मोहम्मद हसन अंसारी ने। गांव हीरा वाली फजल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। आलागंज जनपद शहजानपुर से आप हैं डॉक्टर आरवी सिंह, अर्जित यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव, दीक्षा यादव। फजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालनी खेड़ा, ट्यूअंशी खेड़ा। आप है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। गांव खोकरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारसा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा। ये कमेंट हमें भेजा है भोपाल कल राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार ने। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घट्टे, संगीता घट्टे, साक्षी घट्टे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टुल, पीबी कुलथे। मंसूरी रेडियो लिस्नर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा सबिश्ता, मोहम्मद नसी, पलक लूबना और यक्ष मंसूरी। गिरगांव मारा से गजानन नादरे, मारोतराव पांचाल। चुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानू शानू, बबन मुनु कान्हा ठाकुर और हरिप्रिया ठाकुर। गांव कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवड़ भाविष्टे, अनीता भाविष्टे और राहुल भाविष्टे। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल बघेल, भारती बघेल। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से आप हैं पुराने श्रोता बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर,

0: आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर और बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, बेटी वाणी, बेटा आरव, मम्मी चंद्रकला, पापा काशीनाथ, भाई गणेश, बहन सोनी, अरोही और प्रियंशी। बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। जिला पीलीभीत ग्राम ढकिया के सरपुर बांसखेड़ा से एके राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाशन राजपूत, पप्पू भैया, मदन लाल, सत्यपाल वर्मा, भगवान दास राजपूत, रवि कुमार वर्मा, शिवपाल यादव, मनोज कुमार सक्सेना, छोटी सी गुड़िया, चंचल कुमारी। इसी गीत को सुनना चाहे देवरी भाटपारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, कन्नू लाल रजक, मुरली छत्री ने। ग्राम धुर्राबारा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। एयरपोर्ट रोड वन्ना नगर इंदौर से नारायण भाव खड़से, ललिता आशा रानी खड़से, संजना परी खड़से, गणेश कार्तिक खड़से, देवकर चौधरी, स्वाति चौधरी, प्रज्ञा चौधरी। और आप हैं हमारे पुराने श्रोता रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से गजानन लेले, नवदीप वेले, विश्वदेव वेले, अवंतिका येले। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी अंशिका जोशी, कुमारी अंकित जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती केवट जी, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डाबर जी, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। ग्राम कोलासरा नांदूरा महाराष्ट्र से प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े, संतेश बगाड़े। जिला बालतोरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापत, माणक उषा, बाला देवी प्रजापत। आप हैं शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अधिक बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत। तो सुनते हैं फिल्म प्रेम कहानी का ये प्यारा सा गीत।
1: मैं तुझे प्यार कर...

प्यासा सावन। इस फिल्म में आप सुनेंगे लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के युगल स्वरों में ये गीत। शब्द रचना है संतोष आनंद की और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश चौरी। चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावर जिला खरगोन मध्य प्रदेश से कृष्णपाल सिंह चौहान, श्रीमती तारा देवी चौहान, नव उदित सिंह चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, ध्रुवी एवं प्रथम सिंह चौहान। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये। कस्बा गोहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता। गंजुंडवारा से आप हैं शमशुद कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान। बड़ी गैबी चौरा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द एवं समस्त मालवीय परिवार। नेहरू चौक पैठड़ से डॉक्टर सूर्य यादव, अनीता यादव, आरती पूजा, प्रसाद यादव, सोनल यादव, बेबी सिया यादव। जालना शहर से सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओम यादव, सुभाष यादव, चंदन यादव, एकनाथ यादव, संगीता यादव। लोकुकालोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया। राजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयपान पाल, जय सिंह पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल। ये फरमाइश हमें भेजिए गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति, लविस प्रजापति, मुनीश कुमार प्रजापति ने।

नंगल खेड़ा गांव फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीष शर्मा, राहुल शर्मा। राजनगर मधुबनी बिहार से हैं आप नवीन सिंह, ज्योति सिंह, चुलबुल रानी। सदर बाजार कुलावरी से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद साकी पवार, अलमास पानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, मोहम्मद हसनैन पवार। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से आप हैं जसवीर सिंह अरोड़ा जी। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस बहुनाथ बंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना ला भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर, आर्यन कृष्णा और पीही स्वर्णकार। जमनिया गाजीपुर से आप हैं हमारे पुराने श्रोता सूरज जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। मदार चौक ग्राम उदयपुर बन्ना धाम जिला बरेली उत्तर प्रदेश से नसीम अली, नाजिम, शाकिब, खालिद, गुड्डू, अली हासिम। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर यूपी से अनिश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर, आकर्ष राजभर। कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। कोल सिटी बरखा काना से अफजालता, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार, मोहम्मद अफजल मलिक। साउथ दिल्ली से आप हैं हमारे श्रोता गुरमीत सिंह मीता। ग्राम मजुआ गंगापुर फौजीपुरा बरेली से हसमुख जी, हसान, समस, इनाया और शानूर, फलक नूर, ताज, मोहम्मद अबानूर और साथ में हैं गुप्ता जी। लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। रामपुर रोड की लछावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल, नमन, पिंकी, रिंकी, पिरखू, प्रिया सिंह, अलका, संगीता, शैफाली, पूजा, गरीब भाई और साथ में है राम अवतार शर्मा, श्री राम राठौर। नई बस्ती गंजडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। मदरसा गेट भावपुर मंडियाओ जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम। रायपुर अनई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। तो सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म जीने की राह से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। शासीनगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल। A5B ब्लॉक जनकपुरी नई दिल्ली से आप हैं प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा। चक 15 PS जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सरजीत सिंह जोशन, सरजीत कौर जोशन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोशन और वैंकूवर कनाडा से हैं साथ में इनके रॉबिन सिंह जोशन। राम सिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से आप हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। गांधीनगर चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर विर्क, जैतिक विर्क और मीका विर्क। अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय, शुभम बेंडे, पवन जरिए, संजीव डाबेराव। सालार पहलगाम कश्मीर से पीर जाता मिराज उद्दीन। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल। बनबेगरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश, अंजलि रोशनी सारवा। रावर करनाल से विनोद लखनपाल। ये कमेंट में भेजा मध्य प्रदेश से कृपाल सिंह परिहार ने। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आप हैं दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर एवं समस्त परिवार। गली सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतन लाल माला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस प्रियांशी, पुष्पा, गौरव मौर्य, चंद प्रकाश मौर्य। भाटपारा छत्तीसगढ़ से आप हैं हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार।

बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नन्नी कुमारी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। धनवती नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, कृष्ण सिंह। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। मां भारती रेडियो श्रोता संघ पोस्ट अक्टोहा तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से सुरेश कुमार साहू, कमलेश कुमार, देवेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, रवि कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सोनू साहू, राघवेंद्र साहू, भावना साहू, जसदीप साहू और समस साहू परिवार। चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवेरी लाल कुशवाहा, मंजूलाल कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा। मबुलवाड़ी महाराज से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, पी एस नवालकर, तुषार करांगली।

आपकी पसंद। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए अब सुनते हैं सबरंग। सबरंग में पहला लोकगीत है रुचि शुक्ला के स्वर में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम में अगली कव्वाली है अजीज नाजान के स्वर में।

0: सब रंग। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में कार्यक्रमों की श्रृंखला।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
2: नमस्कार। 26 मई 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार
2: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
3: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया। कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट

0: ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से लेस देन 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा,
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं। इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से, तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।

0: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
1: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
0: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूँ तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहाँ देखते हैं?
1: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कमर्शियली प्रोड्यूस चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और एटीएमपी यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
0: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था, अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
1: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट जो फोकस है वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है, जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
0: तो अगले, अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
1: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक

0: पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना है।
1: सर अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं, एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से आपने, खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते।
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था, हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था। उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है। लेकिन इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे, उन जॉब्स के लिए हमारे

0: युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्युपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
3: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
4: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण। तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब।

0: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
1: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
0: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
1: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे। और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
0: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
1: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है। जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया तो आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
0: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
1: वो तो विषय अलग है। उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
0: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी, खतरा लग रहा है क्या?
1: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं।
0: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी, राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
1: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाए। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में। लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियाँ मनाते हैं, रिजोर्ट में छुपके कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है। और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति

0: उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इजराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं। ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जो विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के पुलके से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं, अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं, तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मेलिटी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको

0: उजागर करना और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते

0: निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं FM रेनबो प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: 12:05 का वक्त और आप सबका इस्तकबाल करती है आपकी होस्ट फातिमा। वक्त हो गया है प्रोग्राम शत्रुपा का। जी हाँ, आज जायके का कौन सा वो एस्पेक्ट है जो हम कवर करेंगे इस प्रोग्राम में, सब कुछ साझा करूंगी आपके साथ। लेकिन उससे पहले एक पॉजिटिव नोट, एक पॉजिटिव डोज जिस पर आगाज करेंगे प्रोग्राम का, और वो ये है कि भाई आज स्टूडियो आते वक्त, क्योंकि गर्मी बेतहाशा थी, तो मैंने नोटिस की इस बात को कि कुछ गर्मी के चलते, कुछ इंसान की खुद की मसरूफियत के चलते, कई लोग ऐसे मिले मुझे रोड पर ही चलते फिरते, जिनके चेहरे पर एक अजीब सा, मतलब आप कह सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन, और उनकी जो तेवरियाँ थी ना, वो थोड़ी सी चढ़ी हुई लग रही थी मुझे। फिर मैंने खुद रियलाइज़ किया कि कितने जजमेंटल हो जाते हैं हम ना लोगों को देख करके। लेकिन फिर ये भी रियलाइजेशन आया कि हाँ, हो सकता हो कोई वजह हो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जजमेंटल होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। जजमेंटल होने से बेहतर है कि आप सिचुएशन को समझें और उस सिचुएशन में खुद को रख के देखें, तब आपको पता चलेगा एम्पथाइज करना किसे कहते हैं। तो बस इसी नोट पर आगाज़ करेंगे इस प्रोग्राम का एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: सात रंग का इंद्रधनुष है,
4: सात सुरों की सरगम है,
5: सात जन्म है सात समंदर,
3: साथ हमारा हरदम है,
5: जिंदगी के सतरंगी रंग
4: FM रेनबो के संग।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: 12:13 का वक्त हो गया है, और बता दूं भाई, रास्ते में मतलब स्टूडियो आते वक्त मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पर आम बिक रहे थे। जी क्या ही बताऊं बस। तो फिलहाल मार्केट में आम अवेलेबल तो है, लेकिन हाँ, अभी माना जा रहा है कि अभी ये जो अपनी दशहरी है ना, जो डाल की पकी हुई दशहरी होती है, वो अभी मार्केट में नहीं आई है। लेकिन फिर भी आम देख करके ही ना आंखों को इतना सुकून मिलता है कि हम आपको क्या ही बताएं। गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल है आम। इसे आम और खास सभी लोग बड़े शौक से खाते हैं। जी हाँ, आम और खास सभी लोग बड़े शौक से खाते हैं। ये हमारी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में काफी मददगार भी साबित होता है, क्योंकि भाई देखिए, मौसमी फल है, और कुदरत का निजाम कुछ ऐसा है कि जो मौसमी फल होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन अगर इस वक्त हम बात करें, जैसे मैंने आज आते वक्त देखा तो बाजार में कई वैरायटी के आमों की भरमार है, और स्थानीय बागीचों के साथ साथ बाहरी राज्यों से आए आम भी मार्केट्स में और मंडियों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। हालांकि आम की इस खरीदारी में थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी सेहत पर थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। तो लापरवाही सेहत पर भारी ना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ कैसे पहचाने कि ये आम बिल्कुल वर्थ है हमारे लिए। दरअसल बाजार में मिलने वाले ज्यादातर आमों को समय से पहले तोड़कर केमिकल्स में पकाया जा रहा है। बाजार में केमिकल से पकाए जा रहे आमों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, जिससे पेट की समस्याएं और तमाम जटिल बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इन केमिकल युक्त आमों की पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है, वो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो केमिकल युक्त आम है ना, इनका सेवन करने से पेट में तेज जलन, गैस, उल्टी और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही अगर कृत्रिम रूप से पकाए गए ये आम शुगर पेशेंट्स यानी जो डायबिटिक्स हैं, अगर वो ले लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। जी हाँ, ऑल ऑफ अ सडन उनके शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, या फिर कई कंडीशंस में कंडीशंस बहुत वर्सन अप हो जाती हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बेहद नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके लगातार सेवन से न सिर्फ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, बल्कि भविष्य में काफी सारी जटिल बीमारियां जो होने का जो उनको इस तरीके की जटिल बीमारियां होने का जो खतरा है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। अब कैसे हम पहचान कर पाएं और किस तरीके से खुद को बचा पाएं कि कौन सा आम हमें खाना है, कौन सा नहीं खाना है, इसके बारे में भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक छोटे से कमर्शियल, नहीं कमर्शियल ब्रेक तो नहीं है, ब्रेक है अब हमारा म्यूजिकल। बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक मैंने क्यों किया हुआ है, तो इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे और उसके बाद आपसे कुछ बातें और हम जरूर करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉइंग 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: मैं किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती।

से देवी नहीं मिलेगी।

12:25 का वक्त और दावते इश्क फिल्म का ये जो ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया, इस गाने की पिक्चराइजेशन में लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि आदित्य रॉय कपूर एक चपाती को पूरा हवा में स्वर्ल करते हुए वापस अपने उंगलियों पर जब लाते हैं ना, तो माइंड ब्लोइंग सीन है। हम लोग भी कोशिश करते हैं ना कि घरों में कुछ ऐसा कर पाए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि भैया इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है। फिलहाल दावते इश्क का गाना तो सुन लिया आपने, लेकिन दावते आम, जी ये कोई आम दावत की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आम की दावत, जी मैंगो की दावत के बारे में बात हो रही है। वक्त हो चुका है जब हम बेहतरीन आमों का मजा उठाएंगे अगले 1 से 1.25 महीने तक। और कैसे पहचान करें, कैसे हम खुद घर पर पका सकते हैं इन आमों को बगैर इस मलामत के कि कहीं हम केमिकल युक्त आम तो नहीं खा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ गुफ्तगु हम करना चाह रहे हैं। भाई जो आम केमिकल से पकाए जाते हैं ना, वो अक्सर पूरी तरह पीले दिखने के बावजूद अंदर से कुछ कच्चे होते हैं और उनका टेस्ट भी बेहतरीन नहीं होता, बेस्वाद से लगते हैं और उनकी जो स्किन है ना वो भी थोड़ी सिकुड़ी सी लगती है। अब जब आज मुझे ये प्रोग्राम करना था ना, तब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब बचपने में हम अपने ननिहाल जाते थे ना, तो क्या होता था, एक बड़ी सी बाल्टी होती थी, जितना भी आम आता था उसमें डाल दिया जाता था और वो सब आम नीचे बैठ जाता था और कई घंटे तक, 2.5 घंटे 3 घंटे तक वो उसमें पड़ा रहता था। तब हम सोचते थे क्यों ऐसा होता है, हम लोग को क्यों इतनी देर वेट करना पड़ता है। तो आज जब ये प्रोग्राम करना था ना, तब मुझे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और ये रियलाइजेशन मेरे सामने आया कि भाई सबसे बड़ी पहचान ये कि केमिकल से पका हुआ आम है या नहीं है, ये आप कर सकते हैं आम को पानी में डुबोकर। जी पानी में डालने पर जो केमिकल से पके आम होते हैं ना, वो डूबते नहीं हैं बल्कि ऊपर तैरने लगते हैं। और इसके बिल्कुल उलट, पेड़ का पका प्राकृतिक आम पानी में डालते ही नीचे बैठ जाता है। बाजार में आम खरीदने के फौरन बाद उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। आम को घर लाने के बाद पहले साफ पानी से अच्छी तरह से धोएं और फिर कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए, भूल जाइए। हालांकि आम लाने के बाद भूला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी भूलना पड़ेगा। ऐसा करने से आम की जो प्राकृतिक गर्मी होती है, जो टॉक्सिटी होती है ना, और बाहरी केमिकल का जो असर होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट

चाह रहा है, और वो ये है कि भाई अगर हम बाहर के पके हुए आम, केमिकल से इनफैक्ट पके हुए आम ना खाना चाहें और घर पे ही पकाना चाहें आम, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप फलों के राजा आम के शौकीन हैं लेकिन केमिकल्स आपको डराते हैं, तो आप सबसे पहले आम की एक पेटी ले आइए, जितना भी आम आपको लाना है, कच्चे आम ले आइए, उसको साफ पानी से धोकर सुखा लें, फिर अखबार में एक एक आम अलग से अच्छी तरह से लपेट कर सामान्य टेम्परेचर पर किसी भी गत्ते के डिब्बे, बर्तन या जार में रख दीजिए। 3 से 5 दिन में कच्चा आम पक कर तैयार हो जाएगा, वो भी केमिकल का इस्तेमाल किए बगैर। जी हाँ, ध्यान रहे कि कमरे का तापमान कम से कम 20 से 22 डिग्री होना चाहिए। एसी वाले कमरे में इन्हें बिल्कुल भी ना रखिए। हालांकि इस प्रोसेस में पूरी पेटी में, यानी कि अगर आप बहुत सारे आम इकट्ठा करके रखते हैं ना, पेटी ना भी ले, अगर किसी गत्ते में आप रख रहे हैं, तो उसमें 2, 3, 4 आम खराब भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है जो अच्छे आम होंगे वो आपको नेचुरली पके हुए मिलेंगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम सब के लिए बड़े फायदेमंद होती हैं, और हम तो पर्सनली करते हैं। हमने सोचा था कि कभी अगर ऐसा मौका लगा कि हमें जून के महीने में शतरूपा में जायके को लेना पड़ा ना, तो फिर हम इसका डिस्कशन जरूर करेंगे। तो बस इसी नोट पर एक और बेहतरीन सा ट्रैक आप तक पहुंचाएंगे। आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

आपको जिन्हें आम बहुत पसंद होता है ना, वो भी लुटपुट जाते हैं अगर टाइमली आम मार्केट में नहीं आता है ना, और वो मतलब जो उन्हें पसंद होता है अगर टाइमली नहीं आता है तो बड़ा निराश हो जाते हैं भाई। उनका तो लगता है कि बहुत डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। और आम के शौकीन लोगों की आपको क्या ही बात बताऊं, कुछ लोग मैं ऐसे भी जानती हूँ जिन्होंने क्या जो क्या करते हैं, आम के साथ रोटी खा लेते हैं जी, आम के साथ वो पराठा खा लेते हैं, मतलब पके हुए आम को वो एज अ फुल मील ट्रीट करते हैं जी। तो भैया ऊपर वाले से दुआ है जल्दी से जल्दी बारिश हो जाए, और फिलहाल तो दशहरी की बड़ा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है मार्केट में, दाल की पकी हुई दशहरी का, तो जल्दी से आ जाए मार्केट में। बस उसके बाद क्या है, जो लोग रोटी से खाते हैं वो रोटी से इंजॉय करेंगे, जो सादा खाते हैं वो सादा इंजॉय करेंगे, वो जो एज अ प्रॉपर मील लेते हैं वो प्रॉपर मील की तरह खाएंगे। तो भाई टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो जायका है ना वो मुंह में आम का अब तक आ चुका होगा, और बिल्कुल मुंह में आपका पानी, मुंह में जो है ना पानी आना शुरू हो चुका होगा। आम से जुड़ी हमने कई सारे फैक्ट्स पर नज़र डाली, किस तरीके से हम घर पे आम पका सकते हैं, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि हम घर पे नहीं पका पाते हैं, तो फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या बचता है, मार्केट से खरीदने का। अब आम खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए मार्केट से, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे कर लेते हैं। आम खरीदते वक्त जब कभी भी आप मार्केट जाएं, तो आपके मन में ये जो एक सवाल उठता है ना, पता नहीं मीठा होगा कि नहीं होगा, सही तरह से पका है भी कि नहीं। सवाल ये भी होता है कि आम को पकाने के जो अलग अलग तरीके बाजार में उपलब्ध हैं, उनकी पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आप जब मार्केट से आम लें तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आम के ऊपर अम्लीय रस के दाग धब्बे तो नहीं हैं, आम पर किसी रसायन के अलग अलग सफ़ेद या नीले निशान ना हो। उमूमन आम को छू कर भी उसके पकने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पका हुआ आम थोड़ा सॉफ्ट होता है, अधपका आम कहीं से सॉफ्ट और कहीं से ठोस होता है, जबकि कच्चा आम पूरी तरीके से ठोस होता है। और दूसरा तरीका ये भी है, आप आम को बिल्कुल नीचे से अंगूठे से अगर हल्का सा प्रेस करके देखेंगे ना, तो पका हुआ आम छूने से सॉफ्ट लगेगा। इसके लिए आपको पूरे आम को दबा दबा कर देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर जो लोग ऐसा करते हैं ना, तो जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं आम के, कहते हैं भाई साहब थोड़ा ध्यान से, आम है बड़ा नाजुक फल होता है, थोड़ा सा वो ऑफेंसिव भी हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो। इसके लिए ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, नीचे से चेक करिए और आपको पता चल जाएगा कि आप जो आम खरीदने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से पका है या नहीं है। ऑल राइट, राइपनिंग मेथड से पके आमों का रंग एक तरीके का होता है, क्योंकि ये एक समान तापमान में पकाए जाते हैं, और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और दिखने में बेहद खूबसूरत रंग के होते हैं। अब आम ये नॉर्मल लोगों के खाने के लिए तो बड़ी सारी बातें हमने कर ली, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो डायबिटिक है, और आम तो सभी को पसंद होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आम और खास सभी को पसंद होता है आम। तो डायबिटीज पेशेंट्स आम को एक स्नैक्स की तरह ले सकते हैं, डॉक्टर्स उन्हें एक छोटा पोर्शन लेने की सलाह देते हैं। आम को खाने के साथ खाने से परहेज करना चाहिए, जब भी आम खाएं तो आधी चपाती कम खा लीजिए, अगर थोड़ा सा आप इंटेक बढ़ा रहे हैं आम का तो एक चपाती कम खाइए। इससे आम और चपाती से मिलने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, उनकी मात्रा का एक बैलेंस बन जाता है। दोपहर में खाने के बाद आप आम खा सकते हैं, और इवनिंग स्नैक्स में भी आम का सेवन किया जा सकता है। लेकिन ये तो जो नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी बात हो गई, लेकिन जिन्हें थोड़ा सा हाई लेवल रहता है, टाइप 2 रहती है, तो उन्हें थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर कभी बहुत ज़्यादा दिल चाहे तो प्लीज़ अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे एक सलाह ले करके ही इसका इंटेक करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। आम के भरपूर फायदे हैं, भरपूर। जी हाँ, आम में क्या ऐसी खासियत है कि इसे फलों का राजा बना दिया गया। दरअसल आम स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही गुणकारी फल है। इसमें मौजूद विटामिन्स, बीटा कैरोटीन और फाइबर इसकी प्रोडक्टिविटी को, इसकी क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आम खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, अपच के लिए भी काफी अच्छा है। जी हाँ, आप अपच की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आम आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। ये बिना पचे ही अवशोषित होने वाला फल है। जी

0: के अलावा ये ऊर्जा बढ़ाने में काफी मददगार होता है, काफी सहायक साबित होता है। तो आम के बहुत सारे फायदे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आम आ जाए मार्केट में और हम खाना शुरू कर दें, तो बस हमारे लिए तो यही फायदा है। और हम तो बेसब्री से दशहरी का इंतजार करते हैं। फिलहाल आज क्योंकि मौका है और दस्तूर भी है, तो आम से बनने वाली एक डिश है जो ईजिली बन जाएगी आपके साथ साझा करूंगी मैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा वक्त दे रही हूँ, आप एक पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए, फटाफट बताऊंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

लिए आप ले सकते हैं, या इसके अलावा आपको और जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सूती या मलमल के साफ कपड़े में दही को बांध ले। इसे 4 से 5 घंटे या रात भर के लिए किसी नल या ऊंचे स्थान पर लटका दे ताकि दही का सारा एक्सेसिव वाटर जो है ना वो निकल जाए। अब कपड़े से गाढ़े दही को निकाल कर एक बड़े कटोरे में डालें। बड़े कटोरे में डालिएगा, छोटे में मत डालिएगा। इसकी एक वजह है, इसे चम्मच से या विस्कर की मदद से तब तक फेंटें जब तक ये बिल्कुल मक्खन की तरह चिकना और मलाईदार ना हो जाए। देखिए, बड़े बर्तन में जब आप रखेंगे ना ये दही, तो आपको फेंटने की जो प्रक्रिया है उसमें बड़ी मदद मिलती है और खूब बेहतरीन फेंट के निकलता है दही। अब इस फिटे हुए दही में आम का पल्प, पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर डालें। इसे फिर से अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी चीज़ें एक से हो जाएं, मतलब मिल जाएं आपस में। भीगे हुए केसर के धागे डालें और अच्छी तरह मिला लें आम श्रीखंड को। बस अब क्या है, अब किस चीज़ का इंतज़ार है, अब सिर्फ आपको खाना ही खाना है। आम श्रीखंड एक सर्विंग बोल में निकालें, इस पे कटे हुए मेवे डाल दें। कटे हुए मेवे से इसे सजाएं। अब इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, और उसके बाद ठंडा ठंडा आम श्रीखंड पूरी या पराठे के साथ खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी खाना पसंद करते हैं, भाई हमें तो हर चीज़ के साथ पसंद है, और ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है इस टाइम पर। अगर गेस्ट आपके घर आते हैं ना, आप घर का बना हुआ आम श्रीखंड सर्व करते हैं ना, आप जैसे मैंने बताया ना, फाइनल जब बन जाए बड़े बोल में, उसके बाद आप उसे रेफ्रिजरेट करते हैं। तो आप अगर छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ों में से रेफ्रिजरेट करेंगे और उसके बाद मेहमानों के सामने सर्व करेंगे ना, तो बड़ा अच्छा सा लुक देता है, और बड़ा आपको बड़ा प्राउड फील होगा कि आपने खुद बनाया, खुद सर्व किया। तो बस इसी नोट पर वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को आज, और एक छोटे से म्यूजिकल और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की।

अभी आप सुन रहे थे FM रेनबो के विविध कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आइए सुनते हैं श्रोताओं के प्यारे प्यारे पत्रों पे आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। अनुरोध गीत के आज के सुरीले और कर्णप्रिय सफर को लेकर मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति है खून भरी मांग फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और साथियों की। गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार हैं राजेश रोशन और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। ये खत हमें भेजा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा ने। कोटवा नारायणपुर बावपट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। इसी गीत को पसंद किया है अशरफ खां पानी की टंकी के पास बरेली से रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वन्ना शर्मा, महिमा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, वंश कनिष्का। ये खत हमें आया है बरेली जंक्शन से गरीब भाई, आमिर भाई, सादिक भाई, वीरेंद्र सिंह चौहान, विक्की भारद्वाज, अमान खान, प्रदीप पाल, नमन सिंह और श्रीराम राठौर का। इसी गीत की फरमाइश भेजी है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: कलाकार इस फिल्म में आप सुनेंगे किशोर कुमार के स्वर में ये गीत। शब्द रचना है इंदीवर की और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। सिमंदर पार्क वीरमगांव गुजरात से आप हैं अजीत प्रमिला, भावे सन्नी भावसार, हेतल कृष्णा, जयमीन भावसार। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मोहताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौड़, बेबी मंतशा, मोहम्मद शादाब खत्री। और ये फरमाइश में भेजिए बदाई रोड करगैना मदरसे के पास से दानिश अंसारी ने। बिलारी से रजा अहमद, इसरत जहां, जमाल कमाल और आयत जहां ने ये पत्र हमें भेजा है। आंवला मोहल्ला बजरिया अंसारी चौक से मोहम्मद हसनैन अंसारी, अदनान अंसारी, अजहान अंसारी, अब्दुल हामिद अंसारी, सद्दाम हुसैन अंसारी, जाहिद हुसैन।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म सरस्वती चंद्र से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत, मोहन रावत। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुधर शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन शाह, राजनीति शाह और सुषमा कपूर। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। इसी गीत को सुनना चाहे वार्ड नंबर 6 आंवला बजरिया से मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, कासिम अंसारी, असलम अकरम, इर्तिका कौसर, आयरा कौसर, मोहम्मद दानियाल अंसारी ने। दुर्गई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परवणी से सीआर कुलकर्णी। ये खत हमें भेजा है कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी इद्रीस, नूर मीना, इरफान और कासिफ मीना ने। जिला बरेली ग्राम करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, अमीर भाई अंसारी। एकता कॉलोनी रोहतक से ये खत हमें आया है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, साहिल कांगड़ा का। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं स्वीटी छाबड़ा और रविंद्र सिंह छाबड़ा। खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। तो सुनते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत।

सरफरोश। इस फिल्म में आप सुनेंगे अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में गीत। शब्द रचना है समीर की और धुन बनाई है जतिन ललित ने। और सुनने की फरमाइश हमें भेजिए अपने पत्रों के माध्यम से आप सबने। बीजनाम मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, और यहीं से हैं यूनुस खान, सरताज बेगम, सोफिया खान। बहेड़ी से ये खत हमें भेजा है अंजू भाई, खालदा बेगम, कहकशा, दानिशा दिल और शफक ने। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, जिला पीलीभीत से आप हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और परिवार के सभी सदस्य। अलीगंज रोड ग्राम मोहलिया से हसमत खां, हशमत खां, अजमत खां और डालमिया। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद, जिला बरेली से आप हैं हमारे पुराने श्रोता लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बब्लू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा। मोहल्ला किशोर बाजार बिहारीपुर सिविल लाइन से कुंदलाल सागर, ब्रजेश कुमार सागर, विपिन कुमार सागर, कल्पना सागर, पूजा सागर, बेटी नैना सागर और आपके साथ हैं समस्त सागर परिवार के लोग।

कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है फिल्म तरार से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीतकार हैं रानी मलिक और संगीतकार हैं अनु मलिक। सुनने की फरमाइश है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर की। छत्तीसगढ़ भाटपारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, ज्ञावेंद्र कुमार वर्मा। ये खत्म में भेजा है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी ने। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से आप है हमारे पुराने श्रोता मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। परिमहल कासगंज से आबाद खान, अल्ताफ नवील, असलम सैफी, शमसुल कमर, उस्मान अंसारी। आप हमारे पुराने श्रोता बरेली कैंट पश्चिम

केविन के पास चनेटी बरेली से विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी श्रीवास्तव। रेलवे रोड गंडोडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख। ये खत में भेजा आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर ने।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र और आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत देवेंद्र रावत के साथ। फर्स्ट लव लेटर, इस फिल्म में आप सुनेंगे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वरों में ये गीत। शब्द रचना है अनजान की और धुन बनाई है बप्पी लहरी ने और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हृदय शुभ बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्य भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी कनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। इसी गीत को सुनने के लिए खत भेजा है कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी ने। नाज रेडियो क्लब करेली बरेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार, बेटी नुजरत फातमा, अबरार अहमद, इकबाल, इसरार, तस्लीम रजा और मुन्ना भाई। कुतुबखाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इरफान, आमिर, इकबाल, अफजाल, साजिदाबी, समाया, सेरीन, सबनूर, फैजल, अमान और इनके मम्मी पापा। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निकित कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। भिलाई छत्तीसगढ़ से ये खाता में भेजा है मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा ने। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द और राहुल।

फिजा। इस फिल्म में आप सुनेंगे अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में ये गीत। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं अनु मलिक। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। सिद्धार्थनगर रोड नंबर 6 इज्जत नगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव, गोलू, मोनिका और आशा श्रीवास्तव। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, असमा सालिया, शोएब खान, पीत रामोज तबा खान, राउप भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। शेरनगर बहेड़ी से आप हैं लईक अहमद इदरीसी, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अतीक, यास्मीन, शिफा बी। मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, जन्नत। सुनते हैं ये गीत फिल्म फिजा से।

कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है फिल्म हद कर दी आपने से। गायक कलाकार और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद और गीतकार हैं आनंद बख्शी। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। बेरड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर और तनु करमकर। ग्राम बुडगहन से रामदुलार प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंदेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति, शशिकांता प्रजापति। लिखा था भेजा है सेक्टर नंबर 2 आवासीय कासगंज से पवन गौड़, कुसुम गौड़, सुयश आशीष और राधिका गौड़ ने। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जबुनिशा बेगम, अक्रम सैफी, आबाद खान। इसी गीत को सुनना चाहा है मोहल्ला गड़ैया बरेली से मोहम्मद कैसर शमसी, मोहम्मद अजीम शमसी, मोहम्मद सलीम शमसी, मोहम्मद नवीद शमसी, रजिया शमसी बेबी ने।

कार्यक्रम अनुरोध गीत की अंतिम प्रस्तुति है फिल्म सागर से। आवाजें हैं आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं आर डी बर्मन, और सुनने की फरमाइशें हैं आप सबकी। जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से आप हैं ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येन कुमार कठेरिया, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निप्या, सरता और अंतिमा। नकासा रोड उसैद बदायूं से मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, बबलू, विकास।

सक्सेना, कर्मवीर भोजवाल, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भरत यादव। ये खत्म है विजय कदीरी रेडियो क्लब ग्यासपुर बीसलपुर से कलीम अलवी, आबिद अलवी, बेबी तबस्सुम, रानी तबस्सुम, गुलबहार, सारा बरेलवी ने। मिलक भूजपुर आशा जिला मुरादाबाद बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन। परिमहल कासगंज से आप हैं आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नबील, अहम असलम सैफी। तो सुनते हैं ये गीत

इसी गीत के साथ आज का अनुरोध गीत संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त देवेंद्र रावत को इजाजत दीजिए। नमस्कार। और आगे के कार्यक्रमों के साथ आपके साथ हैं हमारे साथी संजय कुमार।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, अभी तक आप कार्यक्रम सुन रहे थे देवेंद्र प्रताप सिंह रावत के साथ, और अब मैं हाजिर हूं कार्यक्रम रसरंग लेकर। कार्यक्रम रसरंग में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं कव्वाली। सुनिए और इंजॉय करिए।

साथियों, ये कव्वाली अजीज और साथियों की आवाजों में हमने आपको सुनवाई। कहते हैं ना कि यादों का कोई मौसम नहीं होता, बस एक गीत और पूरा जमाना आंखों के सामने होता है। पेश अगला प्रस्तुति आप सबके लिए, सुनिए।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कहते हैं ना कि सुर जब एहसासों से मिलते हैं तभी बनता है रस रंग का असली रंग। विज्ञापन से पहले हमने जो आपको पेशकश सुनाई थी उसमें आवाजें दी थी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने, और अब एक बार फिर अजीज और साथियों की आवाजों में एक कव्वाली और आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30
1: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
1: अगली पेशकश, उससे पहले आपको बता दें अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 2:30 पर कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम में हम करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग। विषय रहेगा सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां। सोच लीजिए क्या बोलना है आपको रिकॉर्डिंग के समय। तब तक रस रंग के साथ ये पेशकश आप लोग के बीच में।

इस पेशकश के साथ ही जिसे आवाज दिए हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने, हमारा आज का प्रोग्राम रसरंग जी संपन्न होने वाला है। फिर मुलाकात होगी रसरंग की नई रंगीन और मधुर प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय को दे इजाजत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 होने को हैं। कुछ ही देर में रिले कर रहे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: रामकुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अपना घर, इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मुकेश के स्वरों में। प्रेम धवन के बोल हैं, रवि का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत भूत बंगला फिल्म से। हसरत जयपुरी ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ

0: कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: बहु बेटी फिल्म का गीत अब सुनिए, आवाज है मोहम्मद रफी की, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि का संगीत।

0: दिल पे नहीं है काबू, हाय मेरी जान ना सता तू।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और

0: सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी, आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और क्या हाल चाल है?
1: बस ठीक हूँ, बहुत दिन बाद आपके साथ इस कार्यक्रम में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: कैसा होता है ना कि जब हम बाहर मिलते हैं उसकी बात कुछ और होती है, और जब हम सखी सहेली के मंच पर होते हैं तब हम होते हैं, आप होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सखियां होती है, बहुत सारे श्रोतागण होते हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: वो जो महफिल होती ना उसकी उसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, जैसे कि हर जगह की एक वाइब होती है,
0: हाँ
1: एक ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है
0: और
1: ना।
0: है ना, और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियां बैठे हुए हैं अपने आंगन में, कोई पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
0: विषय बता दे।
1: बिल्कुल
0: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज ना है, ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें, तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाते हैं, तो वो हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट्स कर कर करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा खा के हम बोर हो गए, तो उसमें हम एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है, यानी उसको अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है।
1: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
0: वैसे आजकल जो है ना, समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे हजारों।
1: हजार होते
0: पुराना जमाना
1: हैं।
0: याद कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है, इस तरह की दाल बनाए, वो बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
1: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा

0: कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
1: और आजकल हो क्या रहा है नेहा, कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना?
0: समझ रही हूं मैं आपकी, आपका इशारा किस और है।
1: जी, शब्द हमारा, विचार आपके। इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है, या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है, या संवाद पीछे छूटता जा रहा है।
0: और किस तरह का संवाद होता है।
1: है ना? हाँ,
0: बिल्कुल। और फिर इसके अलावा हमारी महिला श्रोताओं का फेवरेट जो है साड़ियों का संसार।
1: उसमें हम चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश की जो विरासत है, चंदेरी

0: उसमें हम चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश की जो विरासत है चंदेरी साड़ी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। और हमारे बहुत सारे श्रोता भाई वो भी लिख कर बताएं, हमारी बहनें लिख के बताएं कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है ना। और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में
1: बिल्कुल। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए
0: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो
1: जी।
0: बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। यानी जब हमारे पास में आंखें हैं ना, तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास आंखें नहीं है उन्हें इसकी बहुत ज्यादा महत्ता मालूम है। तो मरणोपरांत आप नेत्रदान जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए। यानी यूं कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के, हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी, जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके। मैंने अपनी गलती से सीखा, हो
0: जी
1: सकता है वो किसी के लिए यानी एक पहले से पता चल जाए कि हाँ
0: जी
1: ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी करेंगे।
0: बिल्कुल स्वागत है आपकी, आपके कमेंट्स का, आपकी बात का। और अब क्या करें,
1: जी, अब एक गाना सुनवा देते हैं, बहुत
0: सुनते हैं
1: बातें हो
0: गीत
1: गई
0: जी, सुनते हैं गीत।
1: हैं ठीक।

0: तू नेहा मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ। बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊँ।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं। इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर
1: हाँ।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं। पर वो
1: बिल्कुल।
0: बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र हैं या आंखों में रोशनी है। तो आज
1: जी
0: अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना? इन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
0: बिल्कुल। और किंतु अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब सोनाली जी, यहीं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली
0: जी
1: हूँ। अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता, जब
0: ओहो।
1: तक, हाँ, जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती हैं तब तक। अब ये हमें पता नहीं था, चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने 1 ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है, तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते।
0: ओहो।
1: तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय, लेकिन वो काम नहीं आ पाया। तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है, तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है, ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि वे मुझे नेत्रदान करना है, और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो
1: नहीं
0: पाई
1: हो
0: तो
1: पाती।
0: हमें बहुत
1: जी
0: बुरा लगता है।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: नेत्रदान केवल एक दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और
1: बिल्कुल
0: भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग

0: कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है, इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
0: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान। नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है। नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
1: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी, तो उनकी भी आंखें ले गए, और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। तो ये
0: और
1: एक अच्छा कार्य था।
0: बहुत अच्छा कार्य किया है, और इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है। मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
1: एक साथी लिख रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए, आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।
1: महादान।

0: सोनाली जी, बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखा है, नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मैं खुद नेत्रहीन हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती हैं। इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे। आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं, और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं। तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: नेत्रदान कर
0: करें।
1: सके। और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी, ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख
0: देख
1: सके।
0: सकें,
1: और जब भी
0: बिल्कुल।
1: खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ, और साड़ी
0: साड़ियाँ
1: में जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी
0: झलक उठता है।
1: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है। ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित है। अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरीकारी के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है।
0: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है, जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार, जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियाँ, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है, और जरी युक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है। यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
0: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी

0: चंदेरी साड़ी है।
1: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी साड़ियां
0: क्या बात है,
1: हैं।
0: क्या
1: मुझे
0: बात है।
1: शौक है तो पहनती हूँ, और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। और कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है, और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं। उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
0: क्या बात है। चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ ना मिलना, ऐसे कई कारण हैं।
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: सखी सहेली कार्यक्रम में वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: बिल्कुल।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 100.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: आज अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
3: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
3: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
3: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
3: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
3: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
3: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
3: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
3: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
3: फिर क्या होता है,
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
3: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
3: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
2: जी।
3: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
2: जी।
3: फिर कॉफी

0: परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी तीन चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है,
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना यह सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@cieet.nic

इन पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।

0: लक्ष्मी लक्ष्मी वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे
0: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
0: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ?
0: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
0: क्लिक। लक्ष्मी इस पैरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
0: अच्छा।
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
0: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
0: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं। वो
2: तो दोस्तों आज के प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपके साथ आपका दोस्त संजय। हेलो,
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार, नाम बताइए।
3: शनेजा बोल।
4: तन को ज़ेबेना कहते हैं
5: जी।
4: फिर कॉफी परोसी जाती है।
5: खास बात यह है कि कॉफी तीन चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है।
6: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
0: अच्छी।
6: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
0: और दूसरी इलोर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
6: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियाँ तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
0: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
6: जी हाँ,
0: नदी बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है। अच्छा तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
6: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
6: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर

0: मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
1: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
1: रेस्ट हाउस में?
2: जी।
1: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
1: ओके,
0: बाय
1: बाय।
0: ओके,
2: सुनीता। 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
0: हाँ,
2: अरे लगता है कमल जी आ गए।
3: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
2: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: आइए आइए, स्वागत है आपका।
1: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
2: जी
1: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
0: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
1: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली
0: है। क्यों नहीं।
2: कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
1: अच्छा।
2: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
0: मतलब?
2: मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में है, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
1: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
0: वांडी पेरियार?
1: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
1: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है।
0: जी।
1: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
0: अच्छा।
1: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
0: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
2: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
0: अच्छा।
1: और इडुक्की के बाद इसमें नीरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथातन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
2: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
1: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है।

कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियाँ तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की? और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि ये कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है। तो आप अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@gmail.com।
7: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। 4 बजे हैं, इंतजार हो।

0: होगा आपको अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ इस प्रोग्राम का। साथियों, आज का विषय हम बता ही चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। कार्यक्रम में विषय रखा गया है, सैर कर गाफिल जिंदगानी फिर कहां। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपके साथ आपका दोस्त संजय। सैर कर गाफिल जिंदगानी फिर कहां, ये शेर है और मिर्जा गालिब साहब का शेर है। इसके आगे की लाइन भी और भी है, उस पर डिस्कस बाद में करेंगे। आज कार्यक्रम में विषय, जैसा कि हम आपको अभी बता चुके हैं, कि सैर कर गाफिल जिंदगानी फिर कहां। अब इस विषय पर हमारे कौन कौन से श्रोता हमसे बात करना चाहते हैं, ये तो कार्यक्रम बताएगा। ये मशहूर शेर जो केवल घूमने फिरने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि जीवन को पूरे मन से जीने का संदेश भी देता है। इंसान अक्सर भविष्य की चिंताओं और बीते हुए कल की यादों में इतना उलझ जाता है कि आज का सुंदर पल उसकी मुट्ठी से फिसल जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो पल आज हमारे पास है, वही सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों, देखते हैं आज के पहले कॉलर इस विषय पर, सैर कर काफिल जिंदगानी फिर कहां, कौन है, आइए देखते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं समरीन बात कर रही हूँ।
0: समरीन, तो आपके नाम का अर्थ क्या है?
1: मुझे नहीं पता।
0: जी, एक जैसे हमारे देश की सेना में एक वो होती है ना, समुद्र में चलने वाली समरीन, एक तो वो समरीन होती है।
1: जी,
0: चलिए आप अपने गार्जियन से अपने नाम का अर्थ पूछिएगा। बहरहाल, आज कार्यक्रम में विषय है सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, क्या कहेंगी इस विषय पर?
1: जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हमें जो जिंदगी है, हमें घूमना चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए। जी, फिर जिंदगानी कहां, जैसे हमारा वक्त इंतजार थोड़ी ना करेगा,
0: इसलिए
1: हमें सब कर लेना चाहिए।
0: तो समरीन, हम ये कहना चाहेंगे कि आप कहां कहां घूमी हैं, बताएंगी?
1: जी जी, मैं बरेली घूम के आई हूँ, फरीदपुर, शाहजहांपुर और आगरा भी घूमने की प्लानिंग हो रही है मेरी, और रामपुर भी घूम के आई हूँ। जी,
0: बरेली का झुमका कहां पर लगा है पता है आपको?
1: जी, झुमका चौराहे पे लगा है।
0: अच्छा, देखा है?
1: जी जी, देखा है।
0: कार्यक्रम सुनती है हमारे?
1: जी जी, सुनती हूँ।
0: चलिए, और कुछ कहना चाहेंगी आज के विषय पर?
1: जी जी, हमें जिंदगी में घूम लेना चाहिए, किसी वक्त हमारा इंतजार नहीं करता है, और थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालना चाहिए।
0: बहुत सही, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी, मैं गाना सुनना चाहूँगी।
0: गाना तो हम सुनाएंगे, कौन सा सुनेंगी बताइए?
1: मैं ये सुनना चाहूँगी, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया।
0: ठीक है, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये बहुत अच्छा टॉपिक है जी। सबसे पहले तो इस टॉपिक पे आपको बधाई दूंगा
1: जी।
0: सैर तो जिंदगी के लिए जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर हमारी दिनचर्या सुबह उठ के सैर कर ले, शाम को कर ले, तो ये छोटी मोटी बीमारियां तो हमारे ऐसा लगा लो भी करीब भी नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल,
0: अगर हमारा शरीर सैर करने के काबिल है तो हमें सैर जरूर करनी चाहिए। और बड़ी खुशकिस्मती है, मेरे को बताते हुए बड़ा नाज भी हो रहा है, करीब दो साल पहले मैं डेली एवरेज 20 किलोमीटर सैर किया करता सुबह शाम।
1: अच्छा।
0: हाँ जी, लेकिन मेरा बिजनेस इस तरह का था भी मैं रात को 12 बजे तक काम करना, फिर मेरा शरीर ऐसा नहीं हुआ भी मैं डेली करूं, फिर भी मैं सैर थोड़ी बहुत करता रहता हूँ।
1: तो सतीश अनेजा साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि चंडीगढ़ के अलावा आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं या अपने परिवार को लेकर गए हैं, कुछ बताएं।
0: तो चंडीगढ़ में बहुत कम रहा हूँ, और मेरी जितनी भी बिरादरी है, मेरा जितना भी खानदान है, वो सभी बल्कि मेरी इस बात पे बात करते हैं। ये बंदा सबसे ज्यादा ऐश कर रहा है, मेरा साल में कम से कम 5-6 चक्कर तो मेरे मनाली में लग जाते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ जी, क्योंकि मनाली में वहाँ भी मतलब हमारा एक आशियाना बना हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं लाहौल स्पीति में बर्फ पे घूमना, बर्फ के साथ हटकेरियाँ खेलना, ये मेरा शौक है। और सर इत्तेफाक की बात है, अभी हर जगह पे आप जैसे मेरे प्रेमी रहते हैं, श्रीनगर पे भी मेरा ऐसा।
1: अच्छा।
0: रहता हूँ मैं, और ये मंसूरी वगैरह इधर जहाँ भी ना, बच्चे मेरे नैनीताल कैलाश पर्वत भी गए।
1: अच्छा।
0: वापस उतर रहे हैं।
1: हमारे
0: तो परिवार के अंदर खून में बसा हुआ है सैर करना और पूरा एंजॉय करना।
1: अच्छा, तो अनेजा साहब हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जो इंसान है वो मशीन बनता जा रहा है, सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियां और तनाव, और ये सारी चीजें उसके चेहरे की मुस्कान को छीन लेती हैं। ऐसे में थोड़ी सी यात्रा, थोड़ा सा प्रकृति के बीच समय और अपनों के साथ बिताए कुछ पल मन को नई ऊर्जा से भर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से मशीन बने हुए हैं?
0: सर, पैसों की लालसा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, कंपटीशन इतने बढ़ चुके हैं, इंसान को पता भी नहीं कि मेरी दिनचर्या कहाँ से शुरू होनी चाहिए और मेरे शरीर के लिए क्या फायदा है। मैं कहता हूँ पैसा कमाना अच्छा बात है, परिवार को पालना उसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जिंदगी में अपना मनोरंजन करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना हम दूसरे काम करते
1: हैं। बिल्कुल सही कहा अनेजा साहब। ठीक है,
0: के साथ मोहब्बत है और आकाशवाणी बरेली से मोहब्बत है, और 90 साल का जो सफर पूरा किया आकाशवाणी ने, उसके लिए सर आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक।
1: चलिए अनेजा साहब, आज आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करेंगे अगले कार्यक्रम में आप जरूर कार्यक्रम में शामिल होंगे अपनी फोन कॉल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके सर, थैंक यू।
1: ओके।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: हेलो।
4: हेलो।
3: हाँ जी, अपना नाम बताइए।
4: जी मैं मेघा बात कर रही हूँ, बरेली से।
3: मेघा, क्या करती हैं आप? मेघा
4: जी मैं पढ़ाई करती हूँ।
3: अच्छा, कौन सी क्लास में?
4: जी मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा।
3: अच्छा, तो मेघा आकाशवाणी बरेली के प्रोग्राम सुनती हैं आप?
4: जी जी जरूर सुनती हूँ।
3: कैसे लगते हैं आपको
4: प्रोग्राम? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
3: आज कार्यक्रम में विषय रखा गया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। क्या कहेंगी इस विषय पर?
4: मैं इस विषय पर यही कहना चाहूंगी कि हमें घूमते फिरते रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी है, तो हमें अपनी जिंदगी के लिए भी कुछ करना चाहिए। जिंदगी एक ही बार मिलती, बार बार नहीं मिलती है, तो अपने लिए भी कुछ करना चाहिए।
3: क्या बात है। और ये भी कहते हैं ना कि यात्राएं जो होती हैं केवल तस्वीरें नहीं देती बल्कि यादें दे जाती हैं। हर नया शहर, हर नया रास्ता, हर नई मुलाकात हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है ना?
4: जी, इसीलिए जहाँ मन करे वहाँ घूमना चाहिए और जहाँ मन करे वहाँ जाना चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल सही कहा मेघा। और कुछ कहना चाहेंगी इस विषय पर?
4: बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम बचा के रखें कि हम वहाँ जा सके और घूम सके।
3: क्या बात है। वो कहते हैं ना कि धैर्य, साहस और विनम्रता और कभी जीवन को नए नजरिए से देखने की हमें इन यात्राओं से प्रेरणा मिलती है ना?
4: जी जी।
3: और ये यात्राओं का अनुभव आगे चलकर हमारी सबसे अनमोल पूंजी बन जाता है।
4: इसलिए मेरा घूमने का बहुत शौक है, इसलिए मैं घूमती रहती हूँ, हर महीने 15 दिन में घूमती रहती हूँ।
3: ये तो बहुत बढ़िया बात है
4: जी। मैं गाना भी सुनना चाहूंगी।
3: जी गाना बताइए।
4: जी अब तो मेरा प्लान है कि मैं अमेरिका जाऊँ, तो मैं सुनना चाहूंगी अमेरिका अमेरिका मेरी जान।
3: तो मेगा

0: हेलो,
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नाम बताइए।
1: लाल गंगवार बोल रहे हैं लखनऊ के सामने से।
0: बेचे लाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है। अकालमारी परिवार में आप सब लोग कैसे हैं?
0: सब बढ़िया है। आज कार्यक्रम में विषय मालूम है आपको?
1: जी,
0: सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, है ना?
1: हाँ सर जी।
0: तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे बेचे लाल जी?
1: जी जी है कि अगर समय मिलता है तो यात्रा जरूर करनी चाहिए।
0: उससे हमें क्या प्राप्त होता है यात्राओं से, कुछ बताइए।
1: जी, यात्राओं से ये मिलता है कि हमने किताबों में तो पढ़ा, लेकिन साक्षात किसी चीज के दर्शन हो जाते हैं, नई नई जानकारियां मिलती है हमें।
0: बहुत बढ़िया।
1: थोड़ा ये भी है कि हमारे यहाँ मौसम कैसा रह गया है, वहाँ कैसा है, इन चीजों से थोड़ा मन को सुकून मिलता है।
0: हाँ।
1: जी जी, आनंद मिलता।
0: तो बेचेलाल जी, और कुछ बताइए इस विषय पर।
1: पिछले साल कुंभ गए थे।
0: हाँ हाँ।
1: तो पूरे टोली में एक तो चीज ये है कि घर में तो हम अकेले अपनी फैमिली में रह रहे हैं
0: जी,
1: और बाहर जाते हैं तो कम से कम 10 फैमिलियों के लोग गए थे।

0: अब कुंभ न आए उसके बाद दिमाग में आया कि चलो भाई राम मंदिर भी चलते हैं। और घर पे कोई विचार नहीं था सर। अब बाहर ऑटोमेटिक अयोध्या का मन में बस में बैठ गए और साहब सुबह होते ही अयोध्या पहुंच गए।
1: अच्छा दर्शन हो गए,
0: दर्शन हो गए। तो ये होता सर, ये लगता था कि कब दर्शन होंगे और दर्शन तुरंत हो गए।
1: हाँ तो कहते हैं ना कि अचानक अगर हमें जहाँ हम घूमना चाहते हैं, जहाँ दर्शन करना चाहते हैं, अगर प्रभु के दर्शन हो जाएं तो मन बड़ा आनंदित हो जाता है। तो बेचेलाल जी, हम कहना चाहेंगे कि आप यूं ही अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते रहें और खुद भी घूमते रहे ताकि आपको कुछ नई नई चीजें समझने और देखने का अवसर प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताइए।
1: इंदौर से ललिता बोल रही हूँ सर।
0: ललिता, क्या करती हैं आप, कहाँ रहती हैं?
1: इंदौर में रहते हैं सर।
0: अच्छा, इंदौर में आप रहते हैं।
1: जी, इंदौर से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, तो ललिता जी, इंदौर में एक ज्योतिर्लिंग है, वहां के विषय में कुछ बताइए श्रोताओं को। इंदौर के पास है
1: जी, ओंकारेश्वर और
0: एक,
1: उसके पास।
0: हाँ, एक ओंकारेश्वर जी, वहां के विषय में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: सर ये नर्मदा नदी के किनारे हैं
0: जी,
1: सर, मेरा भी एक ही बार जाने का सौभाग्य हुआ है अभी तक।
0: तो आप तो बहुत पास में रहती हैं वहां से।
1: फिर भी सर योग बनता है तो ही हम जा पाते हैं।
0: अच्छा, तो आज का विषय हमारे कार्यक्रम में है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। क्या कहेंगी इस विषय पर आप?
1: जी सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि समय रहते हुए, हाथ पैर में ताकत दम रहते हुए तो घूम लेना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल।
1: साथ में पैसा भरपूर रहता है लेकिन शरीर साथ छोड़ देता है।
0: हाँ, कभी कभी देखा गया है कि 40 वर्ष के बाद

0: बाद व्यक्ति के घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है, पैरों में दर्द शुरू हो जाते हैं, शरीर कुछ अनफिट हो जाता है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप?
1: जी सर, मैं ये अपने आप पे भोग चुकी हूँ। मैं 40+ ही हूँ, सारी तकलीफों का सामना मैं कर रही हूँ। आज घूमने को मिलता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता है सर।
0: जी जी, तो ललिता जी और कुछ कहना चाहेंगी आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रमों के विषय में?
1: सर मैं ओंकारेश्वर के बारे में बता रही थी। ओम के आकार का बना हुआ है जी सर, ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है।
0: जी
1: जी सर, मैं 2018 में एक बार गई हूँ इतने उम्र में, बहुत प्रसन्नता हुई।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी जी। और सब सर पिछले हफ्ते हम अभी त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर होकर आए हैं। वहाँ पे भी खूब भीड़ थी लेकिन दर्शन करके बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई सर।
0: आप हमारे इधर उत्तराखंड में केदारनाथ जी आई हैं कभी?
1: नहीं सर, अभी उसका तो सौभाग्य नहीं मिला है।
0: आप प्रोग्राम बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सब जगह अलग अलग दिशाओं में ज्योतिर्लिंग है लेकिन जो केदारनाथ जी है वो दक्षिण मुखी केदारनाथ जी है।
1: जी सुना है तो सब बहुत कुछ है सर, लेकिन अभी जैसे अगर आना भी चाहे तो कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, अकेले तो प्रवास कर नहीं सकते हैं।
0: हाँ ये भी बात ठीक है।
1: केदारनाथ की यात्रा थोड़ी कठिन है, उसमें आए तो एक दूसरे का सहयोग से।
0: नहीं अब कठिन नहीं है ललिता जी, क्योंकि अब इतना डेवलपमेंट हो चुका है उस जगह पर या उस जगह से पहले कि आपको जगह जगह पर हर वो चीज उपलब्ध होगी जो आप मन में सोचिए वो चीज उपलब्ध हो जाएगी।
1: चलिए सर, अगर भगवान का बुलावा आया दर्शन करने का तो बिल्कुल अवश्य आएंगे उत्तराखंड।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये क्षण भंगुर है, इसलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह जिया जाना चाहिए, हर सफर को एक नई सीख की तरह अपनाना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए।
1: जी सर जी। सर मैं गाना सुनना चाहती हूँ ठोकर फिल्म का।
0: कौन सा?
1: अपनी आंखों में बसा कर तुम्हें इकरार करूँ।
0: ठीक है ललिता जी, हम आपको जरूर सुनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद।

और अब साथियों, दोस्तों, श्रोताओं, कहना चाहेंगे कि ये तो कॉल के माध्यम से आप हमसे जुड़े थे और अब बारी है उन श्रोताओं की जो आकाशवाणी बरेली के फेसबुक प्रोफाइल पर जिन्होंने इसी विषय पर कमेंट भेजे हैं। और आपको बता दें, सैर कर गाफिल जिंदगानी फिर कहा, इस विषय पर कौन क्या बोलता है, कहता है, क्या महसूस करता है, जोड़ते हैं ऐसे हमारे श्रोता को। और ये श्रोता हैं रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड के गंगा सिंह रावत साहब। कहते हैं कि इस शेर के मायने यही है कि जब तक तन मन जमा है तब तक जहां मर्जी वहां घूम लो, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। नौजवानी के दिन जिंदगी के सबसे हसीन दिन होते हैं, जिसमें मन हमेशा उमंग से भरा रहता है। इस उम्र में परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ भी नहीं रहता, बस आंखों में सपने पल रहे होते हैं और मन पतंग की तरह आसमान में उड़ना चाहता है। तो गंगा सिंह रावत साहब, हमने आपको देखा है फेसबुक पर और आप भी पतंग की तरह उड़ते रहते हैं और साथ में हम भी उड़ते रहते हैं, तो एक ना एक दिन हमारी पतंग और आपकी पतंग कहीं ना कहीं आपस में टकराएगी जरूर। सुनते रहे और एंजॉय करें।

और अब बारी आती है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी साहब और उनके साथ में हैं लालू अंसारी साहब। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, इस विषय पर लाल मोहम्मद अंसारी साहब का कहना है कि जीवन अनमोल है, इसे हमेशा कद्र करना चाहिए जीवन की। दुनिया में रहकर कुछ भी काम कर लो, किसी दिशा में घूम लो, कितना भी रोजगार कर लो, कितना भी व्यापार कर लो, कितनी भी लोगों की बेईमानी कर लो, कितना भी लोगों का दिल दुखा लो, मगर इस दुनिया से इतना गाफिल ना हो जाओ, ये भी याद ना रहे कि हमें किसी ने यहां सैर करने ही तो भेजा है। अगर जाने अनजाने को कोई गलत हो गया हो तो जीवन दोबारा नहीं मिलने का। तो साथ में इन्होंने अपना एक संदेश भी दिया है, वो संदेश है कि हमें चाहिए कि इसी जीवन में अच्छे काम करें, लोगों का दिल ना दुखाएं, किसी का हक ना मारें। तो लाल मोहम्मद अंसारी साहब, बिल्कुल 100% आपकी बात सही है, लेकिन साथ में जिम्मेदारियों के साथ, रोजगार के साथ, परिवार के पालन पोषण के साथ, अगर हम आप अपने लिए भी कुछ समय निकालते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आनंद के लिए भी वो बहुत बढ़िया टॉनिक के रूप में होता है। हम कहेंगे एक बार आप जिस यात्रा पर जाएं और फोन के माध्यम से कार्यक्रम में उस यात्रा का वर्णन अवश्य करें हमारे

अब शामिल हो रहे हैं प्रवीण चौहान साहब। इन्होंने आकाशवाणी बरेली के फेसबुक प्रोफाइल पर अपना कमेंट भेजा है इसी विषय पर। कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है, जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए अभी घूम लो वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। साथ ही ये इनकी इंडिविजुअल जो फीलिंग है, व्यक्तिगत फीलिंग है, वो ये है कि कहते हैं कि मेरा मन दुनिया की अलग अलग खूबसूरत जगहों पर घूमने का बहुत करता है। तो प्रवीण चौहान जी आपसे कहना चाहेंगे इसी विषय पर कि जब हम प्लान करते हैं कहीं घूमने जाने का, अगर मान लीजिए 3 महीने पहले हम प्लान करते हैं, तो उसी प्लानिंग के अंतर्गत जो 3 महीने का उत्साह होता है वो हमारे अन्य कामों को भी पॉजिटिव बनाता है। अन्य काम भी हम बहुत आनंदित होकर कर देते हैं। यात्रा पर जब जाते हैं तो उस समय तो आनंद मिलता है, लेकिन जब हम वापस आ जाते हैं यात्रा के, तो 3 महीने और हम आनंदित रहते हैं वहां के विषय में सोचकर, वहां के ट्रैक के विषय में सोचकर, वहां के आनंद के विषय में सोचकर। तो आप दिल को छोटा ना करें, जहां मन हो घूमने का एक बार पैकिंग करें और निकल जाए। 3 महीने इधर और 3 महीने उधर, 6 महीने आप आनंदित रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। एक और हमारे लिसनर हैं शीशगढ़ से, तिगड़ी कस्बा है, शाहरुख खान, हाशिम अरहम बाबू और किशबानूर। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। कहते हैं कि इस संसार की खूबसूरती को देख लो और यात्राएं कर लो, क्योंकि ये अमूल्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और अगर जीवन बच भी गया तो ये जोश, ऊर्जा और जवानी फिर लौट कर नहीं आएगी। साथ ही कहते हैं कि जो बेखबर होते हैं उन्हें जगाने का प्रयास करती हैं ये यात्राएं। किसी कवि का कहना है, ये लिखते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ काम, जिम्मेदारियों या आलस में अपनी जिंदगी गुजार देता है वो बहुत बड़ी गलती करता है। जीवन की जो नश्वरता है ये जिंदगी सीमित है। दुनिया घूमने, ज्ञान अर्जित करने और जीवन का सही आनंद लेने का सबसे सही समय जवानी यानी कि युवावस्था है। बुढ़ापे में ना तो शरीर में वो ताकत रहती है और ना ही दुनिया देखने का उत्साह रहता है। बिल्कुल सही कहा शाहरुख खान जी और आपके परिवार के लोगों ने कि समय रहते अगर आप 40 से ऊपर या 40 से नीचे हैं तो समय अवधि आपको चूज करनी है, चुनना है कि हमें कब घूमने जाना चाहिए। घूमने से बहुत सारी चीजें आपने जैसा बताया प्राप्त होती हैं। हम मन ही मन बहुत खुश रहते हैं और जब खुश रहते हैं तो सारी चीज़ें पॉजिटिव रूप में होती रहती हैं। तो इसी पॉजिटिविटी को बनाए रखते हुए भेजते हैं ये गीत।

का अंतिम जो कमेंट हमारे पास है वो है कृष्णपाल सिंह चौहान साहब का, साथ में उनके परिवार के लोग हैं, तारा देवी चौहान, नव उदित सिंह चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान और ध्रुवी, साथ में प्रदुम सिंह चौहान। कहते हैं कि आज जी लो जी भरकर, कल का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा चौहान साहब आपने। आज जो वर्तमान में हमारे सामने घटित हो रहा है, अगर हमने उन चीजों को एंजॉय कर लिया तो हमारा जीवन सरल हो जाता है, और कल क्या हो जैसे आपने कहा कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल सही बात, जो आज है कल क्या मालूम कौन सा रास्ता मिले। हो सकता है हम जिस प्रोग्रेस पे चल रहे हों वहां से डाउनफॉल शुरू हो जाए और हमारी प्रोग्रेस रुक जाए, या हम जहां जाना चाहते हैं वहां ना जा पाए। तो जो भी है वो कर लो, जीवन में कल क्या होगा कोई नहीं जानता।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। विषय था सैर कर गाफिल जिंदगानी फिर कहां। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम आपको बता दें, हमारी आज और कल की सभा में प्रसारित तथा रिले होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

5:30 पर हम आपको जोड़ेंगे कार्यक्रम नारी संसार से। कार्यक्रम में आपके साथ होंगे नूर फातिमा। कार्यक्रम में ही चर्चा का विषय रहेगा ना पहुंचाएं बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस। कार्यक्रम में ही वार्ता होगी जिसका विषय रहेगा डिजिटल साक्षरता और महिलाओं के लिए नई संभावनाएं। वार्ताकार होगी रीना। कार्यक्रम युववाणी में 6:00 आबिदा के साथ आपको जानकारी मिलेगी। चर्चा होगी इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन इस विषय पर। कार्यक्रम युववाणी में ही आप जुड़ेंगे चक्रव्यूह से। ग्राम जगत कार्यक्रम में 6:30 पर हैडल पार और कृष्णवीर के साथ चर्चा का विषय रहेगा मच्छरों से बचाव के उपाय। साथ ही होगी कृषक गोष्ठी। विषय रहेगा कृषक गोष्ठी का चूल्हा चौका के साथ खेती में सहयोग। और इस विषय पर प्रतिभागी होंगे गोष्ठी में बिमलेश कुमारी, सुखदेई, रेखा रानी। संचालन रहेगा क्षमा सक्सेना का। रेडियो हेल्पलाइन प्रसारित करेंगे 7:31 पर। कल सुबह 8:15 पर नमस्ते बरेली कार्यक्रम में आपके साथ होंगी नीतू त्रिपाठी। 9:00 हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य प्रसारित किया जाएगा 9:30 पर। 10:00 हम आपको जोड़ेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम से। झुमका गिरारे ये कार्यक्रम होगा 11:15 पर और 1:00 आप सुन सकते हैं अनुरोध गीत। साथियों 2:00 होगा प्रोग्राम रस रंग। 2:30 पर हम प्रसारित करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें रिले किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 3:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। और कल शाम 4:00 एक बार फिर से होगा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। कार्यक्रम के नारी संसार कार्यक्रम में 5:30 पर शिल्पी छतवाल के साथ चर्चा का विषय रहेगा ना बने स्वयं के डॉक्टर। साथ में ही होगी वार्ता जिसका विषय रहेगा बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाएं। वार्ताकार होंगी मंतशा जैदी। कल के कार्यक्रम युववाणी में 6:00 आबिदा के साथ आप सुनेंगे ओए लक्की। कार्यक्रम किसान वाणी में कल 6:30 पर आपके साथ होंगे कृष्णपाल और पूनम। कार्यक्रम में ही होगी कृषि गोष्ठी। विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान उर्वरकों का संतुलित प्रयोग। इस विषय पर प्रतिभागी रहेंगे प्रमोद कुमार।

कुमार गिरीश राजेंद्र कुमार, गोष्ठी संचालन करेंगे सुरेंद्र पाल। ग्राम जगत कार्यक्रम में 7 बजे चर्चा का विषय रहेगा सड़क पर सावधानी, और अनुरोध गीत हम प्रसारित करेंगे 7:31 पर। साथियों, तो ये थी हमारे केंद्र से आज और कल की सभा में प्रसारित तथा रिले होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली से अब हम लेकर आए हैं आज की संध्या में भजन संध्या। साथियों, जहां भक्ति का स्वर गूंजता है वहां ईश्वर का साक्षात वास माना जाता है। आइए तन मन को प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए आज की इस संगीतमय संध्या का शुभारंभ करते हैं।

आज की ये भजन संध्या हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे, यही हमारा प्रयास है।

कहते हैं कि प्रभु का नाम जितनी श्रद्धा से लिया जाए उतनी ही कृपा बरसती है। आइए पूरे भाव और भक्ति के साथ इस भजन का आनंद लें और प्रभु के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें।

साथियों, इस भजन के साथ ही हमारी आज की भजन संध्या यहीं पर संपन्न होती है। भजन संध्या में जो आपने भजन सुने उन्हें क्रमशः स्वर दिया था अनुराधा पौडवाल, हरिहरन, पंडित जसराज, वीणा और अनूप जलोटा ने। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। 5:30 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार सुनने वाली सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने संसार यानी नारी संसार में। कैसे हैं सखियों? उम्मीद है हमारी सखियां अच्छी होंगी और साथ ही घर में आजकल खूब हल्ला गुल्ला और रौनक का माहौल भी होगा, क्योंकि घर में बच्चों की हंसी हो, उनकी शरारतें हो तो पूरा माहौल जैसे खिल उठता है। लेकिन कभी कभी अनजाने में हम बच्चों से ऐसी बातें कह जाते हैं जो बच्चों के आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। जब बच्चा कोई गलती करता है तो उसे डांटने से पहले ये जरूर सोचिए कि कहीं हमारी बात से उसके दिल को चोट तो नहीं पहुंच रही। बच्चे की तुलना आप दूसरों से नहीं कीजिए, बल्कि उसकी छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ कीजिए। याद रखिए, जिस बच्चे को घर से भरोसा मिलता

अपनापन मिलता है, वो जिंदगी की मुश्किल राहों में भी अपने रास्ते तलाश कर लेता है। बच्चों की कमियां नहीं, उनकी खूबियां देखिए, उन पर सहयोग विश्वास कीजिए, क्योंकि आज आपका दिया हुआ हौसला ही कल उनके मजबूत भविष्य की पहचान बने।

0: सखियो, आज की दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है। मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि सीखने, कमाने और आगे बढ़ने का नया रास्ता बन चुके हैं। और इस बदलते दौर में हमारी सखियां भी पीछे नहीं है। सखियो, इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आइए सुनती है एक वार्ता, जिसका विषय है डिजिटल साक्षरता और महिलाओं के लिए नई संभावनाएं। और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं रीना।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज की इस विशेष वार्ता में मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रही हूं, जो आज के समय में हर परिवार, हर गांव और हर समाज से जुड़ी हुई है। विषय है डिजिटल साक्षरता और महिलाओं के लिए नई संभावनाएं। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पहले जिन कामों को करने में कई दिन लग जाते थे, आज वही काम कुछ मिनटों में पूरे हो जाते हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर ने हमारे जीवन को काफी बदल दिया है। आज लोग घर बैठे बैंक का काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इलाज की जानकारी ले रहे हैं और खेतीबाड़ी की नई तकनीकी सीख रहे हैं और रोजगार के नए अवसर भी खोज रहे हैं। ऐसे समय में डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी हो गई है, खासकर महिलाओं के लिए। नई उम्मीद और नई ताकत बनकर सामने आई है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है डिजिटल साक्षरता का अर्थ क्या है। डिजिटल साक्षरता का मतलब है मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट का सही, सुरक्षित

और समझदारी के साथ उपयोग करना सीखना, जैसे मोबाइल चलाना, इंटरनेट का उपयोग करना, ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना, वीडियो कॉल करना, भुगतान करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी लेना। आज डिजिटल जानकारी केवल सुविधा नहीं रही बल्कि जरूरत बन चुकी है। पहले बहुत सी महिलाएं तकनीकी से दूर रहती थीं, उन्हें लगता था कि मोबाइल और इंटरनेट केवल पढ़े लिखे लोग चला सकते हैं, लेकिन समय बदल रहा है। गांव और कस्बों की महिलाएं भी डिजिटल दुनिया से जुड़ रही हैं। आज महिलाएं मोबाइल से बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रही हैं, ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर रही हैं, खेती और स्वास्थ्य से जुड़ी बातें सीख रही हैं और घर बैठे छोटे छोटे व्यवसाय भी कर रही हैं। डिजिटल साक्षरता महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम कर रही है। जब कोई महिला खुद मोबाइल चलाना सीखती है, ऑनलाइन भुगतान करना सीखती है या इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करती है, तो उसके भीतर आत्मनिर्भर बनने का विश्वास पैदा होता है। पहले बैंक या सरकारी दफ्तर के छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब महिलाएं खुद मोबाइल से बैंक बैलेंस देख रही हैं, पैसे भेज रही हैं, बिजली और पानी का बिल जमा कर रही हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर रही हैं। इससे उनका समय भी बच रहा है और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। बहुत सी महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन काम करके अपनी आय बढ़ा रही हैं। कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है, ब्यूटी पार्लर से जुड़ी जानकारी सीख रही है, कोई खाना बनाने की सुविधा साझा कर रही है, तो कोई हस्तशिल्प का सामान ऑनलाइन बेच रही है। कुछ महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पाद लोगों तक पहुंचा रही हैं। पहले गांव की महिलाएं अपने काम को केवल आसपास के लोगों तक ही दिखा पाती थीं, लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से उनका काम दूर दूर तक पहुंच सकता है। ये डिजिटल तकनीकी की सबसे बड़ी ताकत है। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल साक्षरता महिलाओं के लिए नई राहें खोल रही है। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें किसी कारण वंश पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती थी, लेकिन अब मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से वे दोबारा सीख रही हैं। आज ऑनलाइन शिक्षा के कई माध्यम उपलब्ध हैं। महिलाएं घर बैठे सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, खाना बनाने में सहायक और कई अन्य विषयों का परीक्षण प्राप्त कर रही हैं। इसे वे अपने हुनर को और बेहतर बना रही हैं। डिजिटल साक्षरता केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, ये महिलाओं को जागरूक भी बना रही है। पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ले रही हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की माताओं के लिए भी डिजिटल माध्यम बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। आज महिलाएं घर बैठे अस्पतालों की जानकारी ले सकती हैं, डॉक्टर से सलाह प्राप्त कर सकती हैं और स्वास्थ्य संबंधित जरूरी जानकारी समय पर जान सकती हैं। श्रोताओं, आज सरकार भी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। देश के विभिन्न हिस्सों में डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग सिखाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी अब डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन लेन देन सीख रही हैं, जिससे उनका काम आसान हो रहा है। डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता बढ़ती जा रही है और गांवों में डिजिटल साक्षरता का महत्व और भी अधिक है। आज किसान परिवार की महिलाएं मोबाइल पर मौसम की जानकारी देख रही हैं, तकनीकी सीख रही हैं, बीज, खाद और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। बच्चों की पढ़ाई में भी मोबाइल और इंटरनेट मददगार साबित हो रहे हैं। अगर महिलाओं को सही डिजिटल जानकारी मिले तो पूरा परिवार आगे बढ़ सकता है। डिजिटल दुनिया ने महिलाओं को समाज में नई पहचान भी दी है। आज महिलाएं अपने विचार खुलकर व्यक्त कर रही हैं। महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे समाज में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। जहां डिजिटल दुनिया के इतने फायदे हैं, वहीं कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। इसीलिए महिलाओं को डिजिटल सुरक्षा की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को बैंक की जानकारी नहीं देनी चाहिए। ओ
OTP, पासवर्ड और ATM से जुड़ी जानकारी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए।

0: अगर कोई फोन करके बैंक अधिकारी बनकर जानकारी मांगे तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। अनजान लिंक पर क्लिक करने से भी बचना चाहिए। डिजिटल हमें ये समझना होगा कि डिजिटल तकनीक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये शिक्षा, रोजगार, जानकारी, आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम है। अगर महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाए तो वे अपने परिवार और समाज को नई दिशा दे सकती हैं। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। डिजिटल साक्षरता महिलाओं के जीवन में नया आत्मविश्वास, नई पहचान और नई संभावनाएं केवल आ रही हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हर गांव, हर कस्बे और हर घर की महिलाएं डिजिटल दुनिया से जुड़े सीखें और आगे बढ़ें। छोटी सी शुरुआत भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। समय बदल रहा है और हमें भी समय के साथ आगे बढ़ना होगा। हम महिलाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ेंगे तो आने वाला भविष्य और अधिक मजबूत, जागरूक और आत्मनिर्भर बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देती हूँ।
1: सखियो, अभी आप सुन रही थी जानकारी जिसका विषय था डिजिटल साक्षरता और महिलाओं के लिए नई संभावनाएं, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी रीना।

गर्मी की छुट्टियां आते ही बच्चों की खुशियां देखते ही बनती हैं। उनकी जो मौज मस्ती है बस शुरू हो जाती है। बुक्स से उनको छुटकारा मिलता है और एक

0: स्टैम्प से भी उसको राहत मिलती है। खेलने कूदने का वक्त और फिर मन पसंद काम करने की आजादी। लेकिन अक्सर यही छुट्टियां धीरे धीरे मोबाइल, टीवी और बिना वजह यूं ही समय गुजारने तक सीमित हो जाती हैं। ऐसे में सखियों सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन छुट्टियों को बच्चों की बेहतर तरबियत, अच्छी आदतों और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए किस तरह से जोड़ा जाए। इंसिबिलिटी सेगमेंट में हम आपकी बात करवाते हैं ऐसी सखियों से जो अपने क्षेत्र में एक नया काम कर रही हैं। इसीलिए सखियों आज हम पहुंच गए इन्हीं अहम बातों पर रोशनी डालने के लिए जानी मानी शिक्षाविद और बच्चों की मार्गदर्शिका हेमलता जी से मुलाकात करने के लिए। नमस्कार हेमलता जी।
1: नमस्कार मैम।
0: हेमलता जी, जब हम लोग छोटे थे और जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो याद है आपको कितना धमाल होता था? क्या गजब धमाल होता था, दादी का घर हो या नानी का घर, बस दौड़ और फिर हंगामा, ये सब इतना अच्छा लगता था, इतनी खुशी मिलती थी कि पूरे साल इसी खुशी में गुजारते थे कि बस जो छुट्टियां आएंगी और ये धमाल फिर से मिलेगा। लेकिन आजकल जब गर्मी की छुट्टियां आती हैं वो बच्चों के लिए खुशी लेकर आती हैं, लेकिन अक्सर कुछ दिनों बाद बच्चे सिर्फ मोबाइल और टीवी तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए?
1: एक्चुअली साल भर छुट्टियों का इंतजार करते हैं बच्चे ही, क्या बड़े भी करते हैं बच्चों की छुट्टियों का, ताकि हम कहीं बाहर जा सकें, कुछ कर सकें। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि रूटीन से हटकर और उसमें पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ छाड़ कर और वो फिर टीवी और मोबाइल में लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है टीवी और मोबाइल वाली। तो उसमें क्या है, हमें बच्चों को तरह तरह से फिर बिजी रखना है, या हमें नई नई स्किल्स सिखानी है, या जो काम हम स्कूल जब बच्चे जाते हैं तब हम उनको नहीं सिखा पाते, या फिर प्रेशर, पढ़ाई के प्रेशर से, या फिर उनका जो कोर्स है उसके दबाव में हम नहीं सिखा पाते हैं। तो उन चीजों को अगर हम लेके चलेंगे और हम आउटडोर गेम्स के लिए ज्यादा प्रेरित करेंगे, या हम अपने बचपन की बातें उन्हें बताएंगे कि हम लोग ऐसे धमाल मचाते थे, सारा दिन आउटडोर गेम्स खेलते थे, और ये सब चीजें हम कहेंगे तो बच्चे भी उस तरफ रुझान देंगे, उस तरफ बढ़ेंगे, और शाम को हम उनको साथ में लेके जा सकते हैं और बच्चों के साथ टाइम अगर हम स्पेंड करेंगे तो हमारे बच्चों की छुट्टियां भी हैं जो तो वो अच्छे से बीतेंगी और उसको हम अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं, टाइम को यूज कर सकते हैं।
0: यानी छुट्टियां सिर्फ आराम का नहीं बल्कि बच्चों की पर्सनैलिटी संभालने का भी एक जरिया बन सकती हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी मैम, पर्सनैलिटी संभालने का भी, क्योंकि देखिए समय तो वो हमारे जीवन में से ही है ना, बच्चों के लिए, के लिए क्या, बड़ों के लिए, सभी के लिए समय का जो एक एक पल है वो बहुत ही कीमती है। तो उसको हम ऐसे ही बर्बाद ना जाने दें, और जो चीजें हमारी छूटी जा रही हैं तो उसको हम एक टाइम मैनेजमेंट करके, एक प्लानिंग करके, और हम उन चीजों को, जो चीजें हमने भी छोड़ दी, जो चीजें हमसे मिस हो गई, वो हम अपने बच्चों को, पास पड़ोस के बच्चों को करके, और हम उनके साथ लग के हम सिखा सकते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना, तो स्कूल तो सारे सब्जेक्ट जैसे साथ लेके चल रहा है, लेकिन कुछ बच्चों का रुझान है डांस में ज्यादा है, कुछ बच्चों का रुझान है कला में ज्यादा है, कुछ बच्चों को सिंगिंग का है, तो उसको हम अलग से टाइम देकर, और जब बच्चे का मनपसंद काम होगा तो वो जरूर करेगा।
0: हेमलता जी, आजकल जो माँ है अक्सर माँ से ज्यादा बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर परेशान रहती हैं, तो हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं?
1: ऑर्डर सुनना पसंद नहीं करता है, बच्चा देखता है, देखकर सीखता है, इसी चीज तो आप भी मानेंगी ना। अगर माँ सिर्फ कह रही है कि आप मोबाइल मत देखो, आप टीवी मत देखो, और खुद माँ अगर टीवी देखेगी, मोबाइल देखेगी, बच्चा नहीं मानेगा। बच्चे के साथ हमें वही करना पड़ेगा जो हम बच्चे से करवाना चाह रहे हैं, हमें उसको समय तो देना पड़ेगा, माँ हो या टीचर है। अगर टीचर भी क्लास में जा रहा है और कह रहा है बच्चों आप पढ़ो, और टीचर बैठ गया, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, बच्चे को लगना पड़ेगा, टीचर को या माँ को या जो भी बड़ा है, पेरेंट है, जो भी गार्जियन है, उसको बच्चे के साथ में लगना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे कि हम उसको अपनी, उसको ऐसा, उसमें जो भी हम एक्टिविटी करा रहे हैं उसमें हम उसको ऐसा रमा देंगे कि फिर वो आगे अकेले भी कर लेगा। अगर आप उसको होमवर्क देंगे या थोड़ा सा कि बच्चों इतना मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद आपको करना है और ये फिर दिखाना है, तो बच्चा करेगा।
0: बहुत खूबसूरत बात कही आपने, जब घर का माहौल अच्छा हो तो बच्चे खुद ब खुद अच्छी आदतें सीखने लगते हैं। क्या छुट्टियों में बच्चों को घर के छोटे काम सिखाना चाहिए?
1: हाँ जी मैम, बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी हो, चाहे बड़े हो या छोटे हो, देखिए घरेलू कामकाज या बाहर का कामकाज हर किसी को आना चाहिए। भले ही हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आपने देखा है कोविड

0: टाइम आया था, सारे घर के काम, चाहे वो कितना भी बड़े बिजनेसमैन थे या बॉलीवुड के हीरो हीरोइन तक थे, तो सभी अपने घर का काम कर रहे थे और सभी को सारे काम आने चाहिए और नेचर से हमें जरूर मिलाना चाहिए बच्चों को। अगर हमें सुबह को जब स्कूल जाते हैं बच्चे, तो सुबह को टाइम होता है ना, शाम को बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो ये जो टाइम है हमें सोने में या फिर देर तक बच्चे सो रहे हैं या देर तक टीवी देख रहे हैं, उसके बजाय हमें उनको नेचर से मिलवाना चाहिए कि देखो बच्चों ये पेड़ है, ये पौधे हैं। मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े बच्चों को पौधों की पहचान नहीं है या पेड़ों की पहचान नहीं है के, तो उसको हमें बहुत छोटे से ही बच्चों को बताना चाहिए कि ये चिड़िया है, ये पेड़ है, ये इसका घोंसला ऐसा है। भले ही हम उसके लिए मोबाइल का सहारा ले सकते हैं, टीवी का सहारा ले सकते हैं, बुक्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हमें बच्चों को ये सब चीजें सिखाना चाहिए कि पौधे में हम पानी दे रहे हैं तो देखो कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, या घर के काम काज है, घर की सफाई है, छोटी छोटी चीजें जैसे सैलेड काटना है, खाना लगाना है, तो इससे क्या प्यार भी बढ़ता है और बच्चा बाहर के लिए तैयार हो रहा है, उसको बाहर समाज के लिए हमें सामाजिक बनाना है।
1: क्यों में जो बच्चे हैं उनकी रूटीन बिगड़ जाती है
0: जी,
1: एक सही रूटीन होना चाहिए उनके लिए, और एक अच्छी रूटीन किस तरह से हम बना सकते हैं?
0: अच्छी रूटीन के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में हमें बच्चों को ये नहीं कहना है कि अब आपकी छुट्टियां हो गई, अब आप फ्री हो गए और हम भी फ्री हो गए। बच्चों को हमें उठने का, सोने का सारा हमें सेट करके सारा रूटीन बना के देना है, और सिर्फ एक हफ्ते बाद ही बच्चे की आदत बन जाती है फिर वो जल्दी उठना। जल्दी उठ के बच्चे को भी मॉर्निंग वॉक या योगा या एक्सरसाइज या हमें पानी देना, ये सब काम बच्चे को भी बहुत अच्छे लगेंगे। अगर वो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत भी करेगा, लेकिन बच्चे को भी अच्छे लगेंगे और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। छोटे बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि देखो सूरज उगने का यही टाइम है, शाम होने का यही टाइम है, दिन होने का यही टाइम है, तो क्यों ना हम अपना टाइम को यूज करें, उठने का वही टाइम रखें, सोने का वही टाइम रखें, हर एक चीज का टाइम फिक्स कर देंगे तो बहुत अच्छे से छुट्टियां मैनेज हो जाएंगी।
1: बहुत अच्छी अनुशासन वाली बातें आपने बताई, और शायद यही अनुशासन आगे चलकर उनकी कामयाबी की बुनियाद बनता है। कल बच्चे किताबों से भी दूर होते जा रहे हैं, तो किताबों की जो आदत है यानी उनकी रीडिंग हैबिट किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं?
0: ये बहुत ही चिंता की बात है मैम कि बच्चे आजकल किताबों से दूर हो रहे हैं। जैसे 20-30 साल पहले की बात करें कि किताबों के लिए ऐसे किताबी कीड़े बने रहते थे बच्चे, तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। छोटे बच्चे हैं उनको चित्र वाली किताबें, और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको कहानियों वाली किताबें अच्छी अच्छी लाकर देना चाहिए, और बजाय इसके कि मोबाइल में पीडीएफ पे किताबें पढ़ाने के बजाय हमको उनको हार्ड कॉपी में किताबें दिखानी चाहिए। और शुरू से ये सब रखेंगे हम तो बच्चे भी किताबों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहेंगे और पढ़ेंगे किताबें।
1: हेमलता जी, आप हमारी सखियों, खासकर वो सखियां जो माँ हैं, वो तो उन माओं और बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि छुट्टियों को सिर्फ आराम का और घूमने फिरने का जरिया ना बनाएं, कुछ सीखें भी। और ये भी एक चीज ये भी है कि जरूरी नहीं है कि हम बहुत दूर जाएं घूमने या किसी हिल स्टेशन पे या किसी पॉपुलर जगह पे, हम बच्चों को अपने आसपास की जगहें जिनमें हम वैसे नहीं जा पाते हैं और उसमें थोड़ा सा समय और थोड़े से पैसे के खर्चे से ही हम जा सकते हैं, तो वो चीजें दिखाएं और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सामाजिक बनाएं। क्योंकि इस समय का सबसे बड़ी दिक्कत ये मुझे लगी कि एक तो बच्चे बुक से दूर भाग रहे हैं, हर एक चीज उनको ऑनलाइन मिल जाती है, ऑनलाइन सिलेबस, ऑनलाइन होमवर्क, ऑनलाइन ये, थोड़ा सा सोशल बनाएं बच्चों को, पास की चीजें दिखाएं और सोशल बनाए, जहाँ पे सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लें और आउटडोर गेम्स के लिए उनको करें कि शाम को आउटडोर गेम्स जरूरी है, ये हमारी हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी।
1: दोस्तों, आज की इस दिलचस्प और महत्वपूर्ण बातचीत से हमने यही जाना कि गर्मी की छुट्टियां सिर्फ वक्त गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत, अच्छी आदतों और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए उनकी बुनियाद रखने का ये एक अहम मौका है। एक समझदार माँ, एक जागरूक घर और थोड़ा सा सही मार्गदर्शन बच्चों की पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने घर के माहौल में देखते और महसूस करते हैं। हेमलता जी, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारी सखियों को और जो बच्चे हैं उनके सभी पेरेंट्स को आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: और अब हम चलते चलते अब हम आपसे पूछना चाहेंगे आपकी पसंद का एक गीत।
0: पल पल दिल के पास।

सखियो हमने आपसे पूछा था एक सवाल, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? और हमारे पास जवाब आया है रामपुर रोड हल्द्वानी से, और भेजने वाले हैं गंगा सिंह रावत जी और राजवीर सिंह यादव जी, और गांधी चौक बाड़मेर राज से इस सवाल का जवाब हमारे पास आया है बबलेश पंवार जी से, और साथ ही इसी सवाल का जवाब हमारे पास भेजा है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी ने। इसी सवाल के जवाब को हमारे पास भेजा है कटा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य ने, और प्रवीण चौहान ने भी इस सवाल का जवाब हमारे पास भेजा है कि 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। सखियो हमारा आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपने पत्रों के माध्यम से या अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आज के कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक, अपने सखी नूर फातिमा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली से अब लेकर आ गए हैं कार्यक्रम ये वो वाणी। आज के कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी आबिदा।

उम्मीदों की रोशनी, सपनों की उड़ान और हौसलों की कहानियों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा, लेकर आ चुकी हूं आपका और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी। तो आइए आज भी हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से नगमे के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
2: दूसरा कोई मैच है क्या?
3: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
4: पर बैंकिंग में नहीं।
5: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
4: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
7: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
8: आवाज़ों के इस हसीन सफ़र में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आबिदा और अब वक्त है कुछ ख़ास बातों का। और आज हम साथियों मना रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन। ये दिवस हर साल 10 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बीच संवाद, समझ और सम्मान को बढ़ावा देना। दोस्तों, दुनिया में भले ही भाषाएं, रहन सहन और विचार अलग हों, लेकिन जो बातचीत है और आपसी समझ है वो पुल है जो लोगों को आपस में जोड़ती है। ये दिन हमें सिखाता है कि मोहब्बतों का मोहब्बतें हैं और फिर उसके साथ में जो संघर्ष हैं उनको आपस में हमें मिलाना नहीं चाहिए, बल्कि जो एक संवाद है उसके विषय को हमें बनाना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। आज के दौर में जब दुनिया पहले से ज़्यादा जुड़ी हुई है, तब एक दूसरे की संस्कृति को समझना और उसका सम्मान करना और भी ज़रूरी हो गया है। इसी सोच को मजबूत करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो आइए आज एक संकल्प लें कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, बल्कि संवाद और सद्भाव का रास्ता चुनेंगे। फिलहाल मैं हूँ आपकी दोस्त साबिदा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी। और अब वक्त हो चला एक और प्यारे से सॉन्ग का।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: आप बने हुए अपने दोस्त फ्रेंड हो साबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। और साथियों, अब वक्त है प्रोग्राम में हमारे सेगमेंट चक्रव्यूह का। तो आइए, हमारे चक्रव्यूह के पिछले अंक के जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे उसके आंसर हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन था कि भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, और इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंसान कौन है, और इसका सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंसानी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ पाई जाती है, ये हमने आपसे पूछा था, और इसका सही आंसर था फीमर, और ये पाई जाती है जांग में। भारत के किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश। चैट जीपीटी को बनाने वाली पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, और इसका सही उत्तर है ओपन एआई। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है, और आंसर है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और हमारे चक्रव्यूह का अंतिम क्वेश्चन, भारत में यूपीआई को किसने डेवलप किया, और इसका सही आंसर है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसको शुरू किया गया 2016 में। फिलहाल ये तो हमारे पिछले चक्रव्यूह के क्वेश्चंस और आंसर थे जिनको हमने आपको बताया। अभी एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, उसके बाद में हम आपको बताएंगे आज के चक्रव्यूह के हमारे क्वेश्चन।

आप बने हुए अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी और सेगमेंट चल रहा है चक्रव्यूह। और हमारे आज के चक्रव्यूह के

है कि भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। इसका उत्तर उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिया था, बेंगलुरु। और बाकी के हमारे जो क्वेश्चन है उन्हें नोट करिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जी एक बार फिर से सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? और हमारा अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ है? दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एक बार फिर से सुनिए, दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ओलंपिक गेम्स का आयोजन कितने वर्ष में एक बार होता है? और हमारा अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? और हमारे चक्रव्यूह का आज का अंतिम क्वेश्चन है, यूएन के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? एक बार फिर से सुनिए, यूएन के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? साथियों, हम उम्मीद करते हैं जो भी हमने आपसे आज हमारे क्वेश्चंस पूछे हैं उनको आपने नोट कर लिया होगा और आप उनका बिल्कुल सही सही उत्तर देंगे। फिलहाल अभी आप एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को।

दोस्तों, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज़ धूप, गर्म हवाएं और बढ़ते तापमान जो है उसको लेकर आ रहा है। इस दौरान शरीर को ठंडा और स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, हल्का भोजन करिए और धूप से बचाव करिए। हमें हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसे खतरों से खुद को सुरक्षित रखना है। तो आइए, गर्मी के इस मौसम को हम जो है इसमें समझते हैं कि हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी लेकर के चलिए, वरना तो ORS हो या फिर नींबू हो उसको आप साथ में लेकर के चल सकते हैं। उसके साथ में आप धूप वाला जो चश्मा होता है उसे लगा कर चलिए और सर पर अंगोछा या फिर दुपट्टा बांध करके चलिए। फिलहाल अभी हम चलते चलते इंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। 6:30 होने को है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में सब भैया बहन को अपने भैया हेडल पाल सिंह
1: और आपके अपने भैया कृष्णवीर सिंह की
0: राम राम। सुनाओ कृष्णवीर भैया, कैसे हालचाल हैं आपके?
1: हालचाल हमारे बहुत अच्छे हैं और उम्मीद जा करते हैं कि हमारे ग्रामीण साथी भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन एक चीज हम आज देख रहे हैं,
0: कहा
1: वो जा है कि बिल्कुल ध्यान ना रख रहे हो, ये चेहरा पे कैसे मच्छर ज्यादा कटवाओ, क्या करोगे?
0: अरे भैया कल यहाँ प्रोग्राम करके गए तो मंद मंद हवा चल रही, खाना खाए के छत पे सोए गए,
1: फिर
0: तो मच्छरदानी लगाने को ना रहो ध्यान। आपकी भौजी ने सोची कि लाओ आज मच्छरदानी लगा दें, ध्यान ना रहो
1: जी।
0: तो भैया रात को जैसे ही हवा रुकी और फिर मच्छर ने काटो बहुत, आपकी भौजी को कई आवाज दी, उनने सुनी ही ना, रात भर भैया नींद ना आई फिर।
1: अच्छा,
0: तभी तो आप देख रहे हो मच्छर ने बहुत चेहरा पे काट लो।
1: तो आपको सावधानी रखनी है क्योंकि आप बात तो रोज बता दो मच्छर से कैसे बच के रहने हैं हम सबको, लेकिन आप ये थोड़ी सी भूल कर जाते
0: भैया, कल ही चूक भैया की जो।
1: तो क्या कहना चाहूंगा साथियों से आज?
0: साथियों से तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, कहीं भी पानी ना ठहरने दें, और घर में जो कूलर हैं उनको पानी प्रतिदिन चेंज करते रहें, बदलते रहें, जिससे बा में मच्छर ना पनपे। और हाँ, जहाँ तहाँ नाली को पानी भर जाते हैं, वो गड्ढा हो जाते हैं घर के आसपास में, उनको नाली को प्रबंध सही तरीका से कर दे जिससे पानी निकल सके, वहाँ पानी जल भराव ना हो।
1: बिल्कुल। तो साथियों, भैया ने जो बात आपको बताई है मच्छर से बचाव के संबंध में, और आप भली भांति जानते हो क्योंकि आप सब कहूँ ना कहूँ इन समस्या को सामना करते हो, तो बस आपको बच के रहने हैं मच्छर से, ना तो फिर आज हम जो बात इनसे कह रहे हैं कल को आपसे भी कोई कह सकता है।
0: बिल्कुल सही बात है कृष्ण भैया। आप जो बताओ आज कार्यक्रम में कुछ लेके आए हो?
1: जानकारी तो बहुत सारी है और लेकिन हमारा मन जो है कि जानकारी सुनवाए, बस पहले एक मधुर लोकगीत सुनवाए साथी इनको।
0: क्या बात है भैया, आज मूड कुछ

0: सुनाओ भैया, कैसे लगो लोकगीत आपको?
1: बहुत ही मधुर लोकगीत कहाँ से लाए भैया?
0: देखो, अपने संग्रहालय में बहुत बहुत अच्छे लोकगीत हैं, और हमारा जो प्रयास रहता है दोनों जनों को कि हम वो लोकगीत उनको सुनवाएं जो उन्होंने बहुत समय पहले सुने होंगे और तब से वो अब तक न सुन पा रहे हैं।
1: हो रहा जाए लोकगीत के लिए स्वर दो अशोक कुमार मथुरिया ने।
0: हाँ, तो अब अपनी बातचीत को थोड़ी देर के लिए विराम दे रहे हैं, और कार्यक्रम में है एक महिला कृषि गोष्ठी।
1: बिल्कुल भैया, तो सुनवा अपने भैया बहन को महिला कृषि गोष्ठी चूल्हा चौका के साथ खेती बाड़ी में सहयोग। प्रतिभागी हैं बिमलेश कुमारी, सुखदेई, रेखा रानी, और संचालन कर रही हैं क्षमा सक्सेना।
2: तो सबसे पहले तो हमारी सभी बहनों को राम राम।
3: राम राम, राम, राम।
2: सबसे पहले आप बताइए आपको क्या नाम है?
3: बिमलेश कुमारी है।
2: बिमलेश जी, आप कहाँ की रहने वाली?
3: बहरोली के रहने वाले हैं।
2: और तहसील?
3: तहसील मीरगंज।
2: आपकी कितनी उम्र है?
3: 35।
2: और आपको क्या नाम है?
4: सुखदेवी।
2: कौन से गांव से आई?
4: बादशाहनगर से।
2: और तहसील?
4: मीरगंज।
2: और आप बताइए आपको क्या नाम है?
5: मेरा नाम रेखा है, मैं ग्राम हिस्मा, जिला बरेली और तहसील बहेड़ी।
2: सबसे पहले तो आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बिमलेश कुमारी जी, सबसे पहले आप बताइए, खेतीबाड़ी करते हैं?
3: हाँ, खेतीबाड़ी करते हैं।
2: अच्छा, कब से कर रही है खेतीबाड़ी?
3: खेतीबाड़ी कई साल हो चुके हैं।
2: कई साल हो चुके? हाँ। कितने साल से कर रही है?
3: 6-7 साल हो गई करते करते।
2: 6-7 साल हो गई। तो खेतीबाड़ी में क्या क्या कर रही है इस समय?
3: इस टाइम में वह कारी तुरई है, लौकी है और खीरा है, इस टाइम चल रहे हैं।
2: और ये धान गन्ना जाना लगा?
3: जो धान अब बोए जाएंगे, पौधे पड़ रही हैं, पौधे डाल दी धानों के।
2: अच्छा, तो हाँ। उसकी तैयारी कैसे कर रही हो जो बताओ हमारे कार्यक्रम सुनने वाले श्रोता?
3: हम जो खेत थोड़े संभाल लिया अच्छी तरीका से, तो उसमें जुताई करी, तो जुताई करके तो फिर मेड़ डाल के उस पे धान पौधा आती है धान की। अच्छा। वो भिजाई जाती है, शाम को भिजे दी, तीसरे दिन उसका वो निकल आता है कल्ला
2: कल्ला निकल।
3: हाँ, फिर उसमें खेत में पानी भर के फिर उसमें थोड़ा सही कर देते हैं, इसके सार ही जाए, अगर दौरी ना होए खेत, फिर उसमें बखेर देते हैं पानी भर के।
2: हाँ। तो जो बताओ हमारे साथियों को कि पानी कब भरते हो, सुबह के समय कि रात के समय?
3: सुबह के समय। सुबह के समय पानी भर देते हैं, फिर उसमें जैसे एक सार कर लिए थोड़े जैसे वहां से लकड़ी से, फिर उस पानी थोड़ा ठहक जाता है।
2: अच्छा।
3: तो फिर धान की पौध डाल दे,
2: डाल दे,
3: ऐसे होता है। फिर थोड़े बहुत दिन बाद ऊपर कल आ जाता है, फिर पानी लगाते रहो, तीसरे दिन पानी लगाते रहो उसमें।
2: अच्छा,
3: फिर तैयार हो जाती है, 1.5 महीने में हो जाती है तैयार।
2: और सुखदेवी जी, आप बताइए, आप खेतीबाड़ी करती
4: हैं? हाँ, करते हैं खेतीबाड़ी।
2: खेतीबाड़ी में क्या क्या कर रही हैं?
4: यही गेहूं धान है।
2: गेहूं धान है।
4: हाँ।
2: तो आप कैसे तैयारी कर रही हैं अपने खेत की? खेत में क्या लगाने की?
4: हम धान लगाएंगे, अब धान के पौधे पड़ेंगे।
2: धान के पौधे।
4: हाँ।
2: और सब्जी फसल भी करते हो?
4: हाँ, कर लेते हैं, तुरैया है, लौकी है, टंडे उंडे, ये सब चीज होती है, हरी सब्जी है।
2: और पशुपालन भी करते हैं?
4: हाँ, है।
2: पाल रखो?
4: हाँ, भैंस है।
2: भैंस पाल रखी है?
4: हाँ।
2: तो उसको काम कैसे करते हो?
4: उसको ऐसे ही करते हैं, सुबह उठ के घास उठ डालते हैं, फिर बाहर बांधते हैं, बाहर बांध के फिर धूप पड़ जाती थी अंदर बांधते हैं।
2: अच्छा।
4: नवा के बांध दिए, घास डाल दिए, अपने अंदर खाते रहेंगे, फिर ठंडा के टाइम में बाहर निकाल के बांध दे।
2: तो आप खेतीबाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, और घर में भी सब काम करने पड़ते हैं?
4: है ना, 3 बच्चे हैं।
2: अच्छा। हाँ। 3 बच्चे और एक आपके? हाँ। पति होंगे?
4: 5 जने हैं हम घर में।
2: और विमलेश जी, आपके घर परिवार में कौन कौन है?
3: हमारे 3 बच्चे हैं, एक सास है।
2: अच्छा अच्छा।
3: 2 जने हम हैं।
2: और रेखा जी, आप बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है?
5: हमारे परिवार में सभी लोग हैं, सास ससुर, देवर देवरानी, उनका बच्चा, और हम भी 4 लोग हैं, संयुक्त परिवार में रहे।
2: संयुक्त परिवार में रहते
5: जी।
2: तो रेखा जी, आप अपने दिन में क्या क्या काम करते हैं? जैसे खेतीबाड़ी तो होते है, लेकिन खेतीबाड़ी के साथ भी आप घर में क्या करती हो? आपको किस चीज को शौक है? कौन से ऐसे काम है जो कि आप करती हैं और बताना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
5: देखो दीदी, वैसे तो सुबह सुबह सब लोगों के घर खानो भी बनता है और शाम को भी खानो बनता है।
2: हाँ।
5: मगर उसके बाद भी हमारा टाइम बच जाता है, तो हम अपने टाइम में कढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी बहुत।
2: अच्छा।
5: और हम सिलाई भी जानते हैं, तो अपने खुद के निजी ब्लाउज, पेटीकोट और सलवार सूट जी सिल लेते हैं। बच्चन के, हमारी 2 लड़कियां हैं, तो उनके भी ऐसे फिराग है, ने कह रहे जी बना देते हैं घर ही पहन के लिए।
2: अच्छा अच्छा। मतलब जब आपको छुट्टी मिलता है चूल्हा चौका से, तो आप अपने जो आपके हुनर है, जो आप जानती हैं आप बहुत से काम करने, वो कर लेते हैं
5: जी।

0: और रेखा जी ये बताइए कि जैसे कि बड़ी है, मगौड़ी है और पापड़ है, अचार है, ये सब औरतें हम बहनें अपने घर में ही बना लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बाजार से खरीदते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं,
1: जी
0: तो आप भी जो सब चीजें घर में बनाते हैं?
1: हाँ जी जी बना लेते हैं। जब होली आती है तो पापड़ बनता है, पापड़ का चिरी ज्यादातर।
0: घर के ही बना लेता।
1: उसके बाद में अभी तो आमन को सीजन चल रहा हुआ, तो
0: हाँ
1: अचार वगैरह पड़ना है घर पर। कभी नींबू को, आम को
0: हाँ
1: और करेलन को डालते हैं डारन वारे।
0: अच्छा, करेलन
1: जी
0: को भी
1: हाँ,
0: अचार डालते
1: करेलन
0: हैं?
1: को बहुत
0: जी,
1: अच्छा अचार लगता है।
0: तो हमारे श्रोता को बताइए कि आप कैसे करेले का अचार डालती हैं।
1: इसी तरीके से पड़ता है, जैसे आम का पड़ता है,
0: अच्छा,
1: आम का अचार पड़ता है, यही मसाले पड़ते हैं करेले के अचार में।
0: कौन कौन से मसाले पड़ते हैं पूरे बताइए, कैसे आप करेले का अचार कैसे डालते हैं?
1: जैसे सौंफ, धनिया और जे नमक, ये
0: अच्छा।
1: चीजें मिले के, हल्दी मिले के करेलों में। जैसे पहले तो थोड़े छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं,
0: और फिर सुखाते होंगे उसे अच्छे
1: हाँ
0: से।
1: थोड़ी देर सुखा के। और दो तरीका का पड़ता है ना जी करेला का चार। थोड़ी
0: अच्छा,
1: देर
0: नमक
1: में जब
0: लगा के
1: भाप,
0: पड़ता है?
1: जैसे थोड़ी देर उबाल लो, उसका कड़ुपन निकल जाता है, हाँ वो और अच्छा लगता है चार। फिर उसमें
0: अच्छा,
1: सब मसाले मिला दिए, फिर तेल में डाल दिए मसाले मिले के।
0: तो और कौन कौन से अचार डाल लेते हैं?
1: आम का अचार डाल लेते हैं
0: अच्छा,
1: और करेले का
0: नींबू का।
1: और नींबू का।
0: अच्छा सुखदेव जी, आप ये बताइए कि घर के कामकाज के साथ साथ खेती बाड़ी के काम करने में कोई दिक्कत तो ना होते? कैसे सबको आप कैसे तालमेल बैठाते हैं, कैसे घर को काम करती हैं, कैसे अपने खेती बाड़ी को काम करती हैं?
1: क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे उठ के झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ,
0: हाँ
1: खाना बना के उसके बाद में फिर जो देखभाल करते हैं,
0: अच्छा,
1: साथ
0: सब
1: में काम करवाते हैं, फिर संग में पति जाते हैं, उसको संग में ड्यूटी से आते हैं, ड्यूटी जाते हैं,
0: हाँ
1: काम पर ड्यूटी जाते हैं, 6 बजे का ड्यूटी चले जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं तो टाइम मिलता तो नहीं घर का काम संभाल लेते हैं हम। जब ड्यूटी से आते हैं तो फिर उनके साथ काम जो भी होता है वो कर लेते हैं।
0: अच्छा, तो खेत
1: हाँ
0: में सबसे ज्यादा कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, मतलब महिलाओं को कुछ अलग काम, जैसे पुरुष तो बहुत से काम करते हैं खेती बाड़ी में, सारे काम उन्हीं के हाथ में होते
1: वो
0: हैं,
1: तो है, ये
0: लेकिन
1: बरहाना
0: घर,
1: करते हैं, मिर्च उर्च लगाते हैं तो उसमें लड़ाई उड़ाई संग में करवानी पड़ती
0: हाँ
1: है,
0: मैं यही
1: दवाई भी
0: जानना चाह रही
1: होती
0: हूँ
1: है।
0: कि आप कौन कौन से काम ऐसे हैं जो कि खेत में करती हैं?
1: गोभी है, मिर्चे हैं, ये
0: अच्छा,
1: सब चीज लगती है, तो इनमें लड़ाई लगती है, खाद पानी लगते हैं, पानी नहीं लगता तब भी साथ में जाने पड़ते हैं, अकेले तो फेटे नहीं फिर जाएंगे,
0: हाँ सही बात है,
1: अब दो लोग होंगे तो अपने जाए सही हिसाब से काम हो जाएगा।
0: हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने कि
1: हाँ
0: दो लोग होंगे
1: हाँ मिलजुल
0: तो
1: कर काम हो जाएगा।
0: मिलजुल के काम करने से बहुत तरक्की होती है हमारे
1: हाँ
0: घर की, परिवार की, और वैसे भी पति पत्नी को तो एक दूसरे का
1: साथ
0: पूरक कहा जाता
1: साथ ही
0: है,
1: अपना।
0: एक दूसरे का साथ होता है,
1: हाँ
0: अगर सब मिलके काम करते हैं, परिवार के लोग भी मिलके काम करते हैं, तो उस
1: हाँ
0: घर की ज्यादा तरक्की हो जाते हैं और उनको ज्यादा आमदनी होती है। रेखा जी, आप से हम ये जानना चाहते हैं खेती में औरतन की क्या भूमिका होते हैं?
1: देखो दीदी, वैसे अगर महिलाएं जा रही हैं साथ में अपने पति के साथ में तो अच्छी बात है। अगर नहीं जा पा रही हैं तो उनके लिए समय से खाना दें बनाकर,
0: हाँ
1: अगर वो खेतन पर भराई कर रहे हैं या कोई और काम है पूरे दिन ना आ पा रहे हैं, तो सुबह सुबह उन्हें उनके लिए खाना बनाकर किसी से भिजवा दें। और कभी अगर हो सका पास में खेत है तो अपने साथ में चले जाएं,
0: हाँ
1: नराई गुड़ाई है वो करवा लें, और जैसे छोटे छोटे काम हैं वे साथ में करवा लें।
0: हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर महिलाएं नहीं जा पाते हैं खेतों पे काम करने के लिए, तो वे अपने पति का पूरा सहयोग करें, समय पे रोटी, समय पे पानी, जो उनके कामकाज है उनमें हाथ बटाएं। बिमले जी, आप बताइए कि खेती के काम में सबसे कठिन क्या लागत हो?
1: कठिन क्या है, जब करते रहते हैं कोई कठिन नहीं होता है,
0: कुछ कठिन नहीं
1: कुछ
0: होता।
1: नहीं, कुछ कठिन नहीं होता है जब करते रहते हैं तो। नहीं करते हैं उसे कठिन लगता
0: हाँ, वो तो
1: है,
0: आदत पड़ जाते हैं, तो अब
1: आदत पड़
0: तो।
1: जाती है सब।
0: तो आप विमलेश जी, आप बताइए आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हैं?
1: सुबह ही उठते हैं, अब डंगर पोए हैं सब, सुबह ही उठ के झाड़ू पोछा करके फिर खाना बनाते हैं। अब तो बच्चों की जा छुट्टी पड़ गई है, नहीं तो बच्चों के बच्चे स्कूल जाते फिर और जल्दी करने पड़ते, फिर
0: अच्छा
1: उसका फिर डंगन को देखने हैं, फिर खाना बनाने हैं, जब
0: अच्छा
1: टाइम बचता है तब कर लेते हैं खेतों में।
0: अच्छा जैसे आपने बताया कि आपके परिवार में और लोग भी हैं, तो
1: हाँ
0: खेती में आपको हाथ बटाते
1: हाँ
0: हैं?
1: हाथ बटा देते हैं,
0: अच्छा,
1: जल्दी हो जाती है थोड़ी, ऐसे
0: हाँ
1: हाथ
0: जल्दी हो
1: बटाते
0: जाते
1: हैं
0: हैं।
1: तो।
0: और आपको खेती बाड़ी करते और घर परिवार संभालते में कौ थकान तो नहीं होते?
1: ना थकान नहीं होती है, जो
0: नहीं
1: ना करते
0: होती
1: हैं
0: है।
1: उन्हें लगती है थकान, जब करते
0: हाँ
1: रहते हैं तो जो लगती है, जय का रोज को काम जैसे रोज होना चाहिए जे, कि खेती में कुछ बिगड़ रहा हुआ है तो जो जैसे समझ जाए जो चीज ना बिगड़ा।
0: हाँ
1: अब तो जो चीजें चल रही है, जैसे हरी सब्जी चल रही है, तोड़ रही है ना, देखने वाली है तोड़ने हैं कि

0: कितनी बड़ी हो गई, रोज खेत पे जाने हैं, अब तो
1: देखा
0: देखा वाली चल रही है।
1: देखा वाली चल रही है। अच्छा सुखदेव जी, आप बताइए कि खेती बाड़ी जब करते हैं आप, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, जो कि हमें उससे नुकसान ना हो और हम उन बातों का ध्यान रखें तो हमें लाभ मिले उससे।
2: सुखा टाइम से पानी लगे, खाद लगे खेती में बरियाने में, और जो देखने सुड़ी उड़ी नहीं लगे। अच्छा, दवाई अच्छा। तो टाइम से लगानी है।
1: हाँ।
2: दवाई टाइम से लगाई तो फल मिलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि
2: पानी मिलेगा सही।
1: हाँ,
0: इस टाइम तो पानी चाहिए,
2: पानी लगेगा तब भी हरियाली आवेगी।
1: यानी कि सब बातों का एक सार है कि इस समय खेती करते में सबसे ज्यादा सिंचाई और पानी की,
2: पानी की है,
1: पानी समय से लगे, पानी की भी कमी ना हो।
2: पानी समय से लगेगा फिर फूल नहीं आ रहा है, फिर उसको दवाई लेगी तभी तो फल आएगा, तभी तरक्की होगी बरिहाने में।
1: अच्छा, रेखा जी आप बताइए कि खेती और घर दोनों संभालने में कब तरह की दिक्कत तो ना होते
3: है? वैसे तो दीदी कोई दिक्कत ना होती है, मगर ये है कि परिवार में बच्चे हैं और सब लोग इकट्ठे हैं तो थकान तो कभी कभी हो ही जाती है।
1: अच्छा ये बताइए कि खाली समय होता है तो आप क्या करती है, आपको कोई ऐसा शौक है जो कि आप अपने घर में पूरा करती हैं अपना?
3: कढ़ाई कर लेते हैं।
1: कढ़ाई कर लेती
3: है जी।
1: तो आप किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है कि अपने आप ही करती
3: हैं? खुद से कर लेते हैं, मगर जो कारीगर आते हैं कढ़वाने वाले गांव में,
1: अच्छा,
3: तो वो लोग साड़ियां देकर जाते हैं, सूट भी जैसे देकर जाते हैं,
2: घर घर दुपट्टे दे जाते
3: हैं। हाँ, तो वो अपने अड्डा पर लगाते हैं और वो कढ़ाई वाली सुजाती हूँ, उससे ही कढ़ाई करते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है रेखा जी, आप अपने घर पे बैठ के काम कर रही हैं और आमदनी बढ़ा रही हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो दुगनी आय हो जाती है हमारी, और अगर आप खेत पे भी एक हाथ बटाती हैं, घर पे अपना पूरा घर परिवार संभाल रही हैं और साथ ही साथ आप खाली समय में सिलाई कढ़ाई बुनाई कर रही हैं, उससे आपको आमदनी भी होती है क्योंकि आपके पास लोग दे जाते हैं साड़ी वगैरह, फिर आप उसको कढ़ाई करती होंगी। बताइए सुखदेव जी कि आप भी खाली समय में कुछ ऐसा कुछ करती है जब खाली समय होता है आपका?
2: खाली समय है तो कभी कभी हम भी कर लेते कढ़ाई, वो नंग चिपका लेते, पट्टे जाते,
1: हाँ हाँ,
2: तो कढ़ाई होती है हमारी, नंग चिपकते हैं सूटन में, सूट है दुपट्टे हैं तो वो कर लेते,
1: तो आप कर लेते हैं। हाँ। आपकी भी आय हो जाती?
2: हाँ।
1: तो हम अपनी बहनों से
2: कभी कभी कर लेते हैं, आ जाते हैं।
1: अच्छा, कभी कभी। हाँ। बहुत अच्छा
2: मिलता है तो कर लेते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि औरतों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हर समय हाथ फैलाना भी नहीं अच्छा लगता है, अगर आपके पास पैसे होंगे अपने तो आपको कभी मन है कुछ करने को तो आप अपने पास से जो आपकी जमा पूंजी उसे निकाल के दे देते दे सकते हैं। और हमने तो देखा है कि हमारी बहनें तो अपने पति के काम, जब कोई ऐसे काम होता है कि उन्हें जरूरत पड़ता है तो बहनें अपने पास ही पैसे अपने जमा निकाल के दे देती हैं। मिमरेश जी आप ये बताइए खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको कहाँ से मिलते हैं जिससे कि हमें फायदा हो?
0: हम ये रेडियो से जानकारी ले लेते हैं, ये सुनते हैं, रेडियो बाजता है।
1: अच्छा,
0: इसमें ही सुन लेते हैं कि कैसा कैसा क्या करना चाहिए।
1: तो आपको रेडियो से जानकारी मिलती है?
0: हाँ।
1: क्योंकि हमारे कार्यक्रमों का जाही उद्देश्य होता है कि हमारे कार्यक्रमों में विशेषज्ञ आए और आप लोग को नई नई जानकारी दें जिससे कि आप अपनी खेती बाड़ी
2: व्यवहार हो अपने सही जो ना हो अपनी।
1: हाँ,
2: समाचारों में आती है वे सुनते हैं अपने, तो भाई अपनी
1: अपना
0: लेते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। और सुखदेव जी पशुपालन आपने बताया आप करते हैं, तो पशुपालन में आप अपने पशुओं को कैसे नहवाती हैं, का खिलाती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखती हैं, क्योंकि इस समय देखो कितनी गर्मी पड़ रही है।
2: पहले चारा डालते हैं, चारा लाते हैं, चारा लाए खांद के
1: हाँ।
2: भूस में मिले के खवाते हैं सानी करके।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, सानी करके खिलाते हैं, खा लेती है, पानी पिलाते हैं उनको।
1: अच्छा,
0: नहा देते हैं।
2: हाँ, नहा देते हैं।
1: तो पशुओं का कोई खास ध्यान रखना पड़ रहा है इस समय? हाँ, समय
0: पशु समय तो नहाना चाहिए जरूरी,
2: नहाने में
0: तीनों टाइम है,
1: तीनों टाइम।
2: हाँ, नहाने पानी पिलाओ नहाओ, ठंडा में तो ज्यादा नहीं नहा लेते।
3: वैसे गर्मी पड़ रही है तो अपने कमरे में जहाँ जानवर हैं वहाँ पर पंखा भी लगा,
0: पंखा भी लगा देते हैं,
2: पंखा भी होना चाहिए
3: गर्मी ना लगे।
1: हाँ,
3: क्योंकि हम भी तो इस्तेमाल करते हैं पंखा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और बहुत सी बहनें क्या करते हैं कि अपने जहाँ पे जानवर बंधे हैं कोई कमरो है तो वहाँ पे टाट या बोरा लगा दो, बाकी भिजो के रखो।
0: हाँ।
1: तो वैसे भी ठंडी ठंडी हवा अंदर जाते हैं अगर पंखा ना ही लगा पा रही हैं। और अपने पशुओं को हमेशा ठंडी जगह जहाँ पे छायादार जगह हो वहीं पे बांधना चाहिए। और रेखा जी आप ये बताइए कि आप खाना बनाते हैं घर में, तो खाना सबसे बढ़िया क्या लगता है आपको बनाने?
3: वैसे तो सारी सब्जियां अच्छी लगती हैं बनाने में।
1: हाँ हाँ।
3: मगर ये है कि जो सबको अच्छा लगता है जैसे खाने में वो बनाते हैं तो और ज्यादा पसंद आता है,
1: क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं हम बहने तो और घर वाले तारीफ कर देते हैं तो हम लोग तो वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं।
2: मन खुश हो जाता है ना,
1: बच्चन को अच्छा
3: हमारे यहाँ तो पतौरा बहुत मन से खाते हैं सब लोग।
1: क्या चीज?
3: पतौरा, जो घुइया के पसंद के बनता है
1: आजकल, तो घुइया के
3: मन से खाते
1: आजकल, तो घुइया के

0: खूब बन रहे हैं,
1: हाँ
0: बहुत अच्छे लगते हैं। और आपके घर में जैसे और लोग हैं, तो आप घर में काम काज करती हैं अपना, तो और लोग भी मदद करते हैं आपकी?
1: हाँ देवरानी है वो हमारे काम में मदद करती है,
0: अच्छा
1: हम दोनों
0: अच्छा
1: मिलजुल कर लेते हैं, लड़ाई भी नहीं करते हैं एक दूसरे से।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल तो यही मिलजुल कर रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप बताइए कि आप इस बारे में आपकी क्या राय है कि संयुक्त परिवार अच्छे होते हैं कि एकल परिवार, कि अलग अलग रह रहे हैं लोग, कोई कहीं रह रहा हो है, कहीं रह रहा हो है।
1: दीदी देखो वैसे जो रह रहे हैं रहने वाले, इनकी मजबूरी है या फिर अपने शौक से रह रहे
0: सही
1: हैं बेजान
0: हाँ,
1: है, मगर वैसे संयुक्त परिवार की बात ही निराली है।
0: एक आलस
1: अभी
0: रहना
1: कोई
0: चाहिए।
1: परेशानी आ जाए,
0: हाँ
1: कोई दिक्कत आ जाए, तुम पे पैसे भी नहीं है, तब भी परिवार के सपोर्ट से तुम उस मुश्किल को आसान कर लो।
0: मिलजुल कर रहना चाहिए,
1: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात कही, देखा जी आपने।
0: मिलजुल कर होंगे तो अपनी देखभाल तो करेंगे सब।
1: हाँ कि बुरे समय में अगर परिवार हमारा एक साथ रह रहा होता है, चाहे हमारे पास पैसे ना भी हो, लेकिन एक दूसरे का साथ ही हमारा बहुत बड़ा सहारा बनता है,
0: सहारा बहुत है,
1: बहुत सहारा बनता
0: खड़ा
1: है।
0: हो जाए वो खाली तब भी
1: बिल्कुल
0: सहारा
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और एकल परिवार में क्या होता है कि आपको कोई परेशानी हो, आपको कोई देखने वालों ना आए, और आपको खुद ही अपनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा खुद ही करते होंगे जी खुद करती हूँ
0: सुबह उठ के,
1: जी।
0: और घर के खर्चा चलाने के लिए कौन कौन सी सावधानी रखते हैं? मतलब घर का खर्चा आप चलाती हैं कि आपके पति चलाते
1: ना
0: हैं?
1: अभी तो परिवार में जब हम सब एक साथ रहे थे तो हमारे ससुर के ही हाथ में सारी कारगुजारी है,
0: अच्छा
1: तो वो
0: अच्छा
1: सब कुछ ला के खुद से रखते हैं।
0: अच्छा वो सब खर्चा वो करते हैं, और आप
1: हाँ
0: तो बस खाना वाना
1: खाना
0: बनाना है।
1: बनाते हैं, खिलाते हैं, प्रेम से रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। और सुखदेव जी आप बताइए, आप घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? आप खुद चलाती हैं कि आपके घर में कोई और चलाते हैं? घर वाले चलाते हैं हमारे,
1: घर वाले चलाते
0: हमें
1: हैं
0: दोनों मिलजुल के चलाते हैं।
1: दोनों? नहीं बहुत
0: हाँ
1: अच्छी बात है कि दोनों मिलजुल कर ही चलाना
0: हाँ
1: चाहिए, क्योंकि
0: हम अलग हैं वैसे अपने घर पे। हाँ
1: अच्छा अलग है।
0: सास है हमारी, हम अपने अलग हैं, और बड़े जेठ हैं, बेबी अलग है, हम अपने अलग अलग हैं सब लोग।
1: सब लोग अलग अलग
0: हाँ
1: हैं। और विमलेश जी आप कैसे करती हैं
2: हम भी
0: अपने
2: सब मिलजुल के ही चलाते हैं,
0: मिलजुल के?
2: सब साथ जाएंगे ना, जेठ हैं, जेठानी हैं,
0: अच्छा
2: सास
0: अच्छा
2: हैं, ससुरना हैं, तो सब मिलजुल के अपने खर्चे चलाते हैं।
0: तो रेखा जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी बचत कैसे करती हैं? मतलब घर गृहस्थी में महिलाओं को बचत करने का बहुत शौक होता है, तो
1: जी
0: आप अपनी कैसे बताइए, आप कैसे किस तरह से बचत कर?
1: बचत तो ऐसे होती है, वैसे तो महिलाएं बताती नहीं है कि कैसे बचत करें कैसे नहीं करें, मगर जैसे पति से ही पैसे छुपाने पड़ते हैं, बचत इसी तरीके से होती है। अगर हमने 100 रुपए की चीज खरीदी है तो हम उन्हें 150 रुपए की बताएंगे, जिससे उनसे हम 150 रुपए ले लें और
0: बिल्कुल
1: 100
0: बिल्कुल
1: की हमारी चीज आ जाएगी और 50 रुपए हमारे पास रह जाएंगे। उसके बाद वो कभी परेशानी पड़ती है या कभी नहीं होती है तो हम उनके लिए देते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अगर इस तरह से बचत करते हैं अपने पति के ही पैसे लेके, लेकिन समय आने पर जरूरत पड़ने पर हम उनको ही तो दे देते हैं वो पैसे,
1: हाँ
0: तो ऐसा करना तो बिल्कुल सही है। और आप बताइए सुखदेव जी आप क्या करते हैं? तो आप लोग घर पे ही अपने, मतलब जैसे आप जो बचत करती हैं वो पैसे अपने घर में ही रखती है कि बैंक में भी जमा कर देती हैं?
1: नहीं कुछ पास रख लेते हैं, अब तो वैसे भी जो व्यवहारी बैंक खुल रही है जीरो, कुछ हम कढ़ाई भी कर लेते हैं तो
0: वो भी
1: वो
0: जमा
1: अपने
0: कर
1: जमा
0: देते
1: कर
0: हैं।
1: देते हैं।
0: अच्छा विमलेश जी आप बताइए कि आप कब सरकारी योजना को लाभ ले रही हैं?
2: हाँ ले रहे हैं
0: कौन सी योजना का?
2: जो समूह चला रहे हैं,
0: समूह चलाने?
2: हाँ
0: अच्छा
2: समूह
0: अच्छा
2: चला रहे हैं,
0: अच्छा
2: हाँ उसमें 100 रुपये महीना जमा होते हैं,
0: अच्छा अच्छा
2: हाँ उसी में जमा करते हैं, फिर सबको बताते हैं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। 100 रुपये 10 जने जोड़ते हैं, 10 जने जोड़ते हैं, 100 जने 100 100 रुपये करते हैं जमा, फिर उन्हें बताते हैं ऐसा तुम ऐसे करोगी तुम तो
0: अच्छा लाभ
2: ऐसा करना
0: मिलेगा।
2: चाहिए, उसमें फिर लाभ मिलता है।
0: अच्छा जैसे जो लोग समूह से जुड़े होते हैं तो क्या करना पड़ता है कि आप उनको समूह से जोड़कर बताती होंगी कि कौन कौन से काम कर सकते हैं आप? हैं
2: हाँ जैसे सरकार से पैसा आता है ना ये यूज करने के लिए, जैसे कुछ तुम खरीद रहे हो, कुछ जैसे मकान उकान बना रहे हो
0: अच्छा
2: या
0: अच्छा
2: और कुछ खोल रहे हो, जैसे दुकान कोई चीज की दुकान खोलना चाह रहे हो, तो उसमें पैसा आता है ऊपर से
0: अच्छा
2: सरकार की तरफ से।
0: अच्छा
2: हाँ उसकी इच्छाएं से उनकी ले हो या मत ले, ना ले तो वापस कर दो,
0: अच्छा
2: लेके फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जमा करते रहो, अपना पूरा पहले इकट्ठा ले लो,
0: अच्छा
2: इकट्ठा
0: अच्छा
2: लेके फिर महीना के हिसाब से जमा करते रहो, फिर पूरा फाइनल हो जाता है 11 महीने में।
0: अच्छा
2: हाँ वो भी पैसा पूरा हो जाता है, मकान भी बन जाता है,
0: अच्छा
2: कुछ भी
0: अच्छा
2: पता नहीं लगती है
0: तो जो
2: ये।
0: लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े होते हैं तो क्या वो वे केवल मकान ही बना पाते हैं कि और भी
2: कोई
0: कोई
2: भी
0: काम
2: काम
0: करना
2: में ले
0: चाहते
2: लो, जैसे
0: हैं?
2: कोई
0: चाहे
2: भी
0: हम
2: काम
0: पढ़ाई
2: ले लो,
0: सेंटर
2: दुकान
0: खोले,
2: वगैरह
0: कोई
2: कुछ
0: भी
2: भी, जैसे
0: है।
2: कोई भी चीज खोलना चाहे उस पे से इकट्ठा
0: पैसा सिलाई केंद्र खोले, बुनाई केंद्र खोले, कुछ भी, अचार पापड़ जैसे बहुत से काम होते हैं,
2: कोई भी दुकान
1: वैसे दुकान

0: ये मिलता है, वैसे तुम्हारी इच्छा है कुछ भी कर लो, अच्छी सी में लगा लो पैसे।
1: अच्छा, उसमें दुकान पता भी नहीं लगती है,
0: दुकान खोल लो कोई चीज की,
1: पता भी नहीं लगती है, किस्त द्वारा पूरा हो जाता है,
2: किस्त द्वारा पूरा हो जाता है, क्योंकि हमें एक रकम मिल जाती है जो कि हम थोड़े थोड़े पैसों के रूप में किस्त जमा करते रहते हैं और हमारे पास हमारी चीज भी हो जाती है,
0: कट जाता
2: है,
0: थोड़ा थोड़ा निकलते रहते हैं, यही काम करते हैं।
2: अब बात करते हैं हम घर की साफ सफाई की, तो जो बताइए कि आप साफ सफाई के बारे में क्या कहना चाहती हैं। सफाई हमारे जीवन में का महत्व रखती है, चाहे वो घर की हो, चाहे हमारे खुद के शरीर की सफाई हो या अपने आसपास की सफाई हो, इस बारे में बताइए।
3: सफाई तो बहुत जरूरी है। सुबह सुबह जैसे अब जब सुबह जल्दी उठ जाओ तो पहले तो आसपास की सफाई कर लो, घर की सफाई कर लो, और घर पे पोछा भी लगा लो सुबह ही सुबह, क्योंकि टाइम की बचत हो जाती है इसमें।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और फिर बच्चे हैं उन्हें भी नहाना चाहिए, अभी गर्मी चल रही है बहुत, तो रोजाना खुद भी नहाओ, और घर में अगर बड़े बूढ़े हैं तो उन्हें भी नहाओ।
2: हाँ, और आप चौका में क्या ध्यान रखती हैं कि खाना बनाते समय किन किन चीजों को खास ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हमारे मच्छर मक्खी हमारे खाने पर ना बैठ पाए।
3: वे दीदी देखो वो जाली नहीं आती है,
2: हाँ हाँ,
3: वो उन पर मक्खियां बैठती हैं मगर ऊपर रहती हैं, और हमने अपने घर पर जैसे एक रुपट्टा नौ खरीद लो तो वही अपने डाल देता खाने पर।
2: अच्छा,
3: जिससे मक्खियां ना बैठती हैं। और कभी कभी नीम को पत्तियों को धुआं भी कर देता, अगर अभी थोड़े दिन पहले जब गेहूं उठकर आए तो बहुत मक्खियां बैठती।
2: अच्छा,
3: तो मैं तो रोजाना नीम को धुआं कर देती अपने कमरे में तो मक्खियां उससे ना आती।
2: और घर के आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखती हैं?
3: हाँ, वैसे हम तो ना रखते हैं मगर जैसे जो प्रधान है वो लोग स्प्रे करवाते रहते हैं,
2: स्प्रे करवाते रहते हैं।
3: हाँ, जिससे मक्खियां पैदा ना हो, मच्छर पैदा ना हो जाएगा नालियों में, ना बड़े बड़े नाले होते हैं उनमें।
2: और सुखदेव जी आप क्या ध्यान रखती हैं साफ सफाई के बारे में?
0: सुबह उठो झाड़ू लगाओ और यही होता है।
2: अच्छा,
0: हाँ।
2: रेखा जी अंत में कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं से आप क्या कहना चाहती हैं?
3: हम तो यही कहना चाहेंगे पहली बार तो कि सब लोग साथ रहें, दूसरी बार साफ सफाई का ध्यान रखें। अभी गर्मी का मौसम है, अभी गर्मियों का मौसम है तो अपने बच्चों की देखभाल रखें, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत चल रही है तो लू में ना जाने दें।
2: बहुत अच्छी बात।
3: अपने घर पर ही रखें, दोपहर में ना निकलने दें बच्चन के लिए, और मतलब कोई भी हो चाहे जानवर भी हो उनके भी लिए विशेष ध्यान रखें, पानी को भूख को जिस सब, क्योंकि हम लोग तो अपने बचाव कर लेंगे और जानवर ही ना कर पाते बेचारे, तो उनके लिए भी थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि हम ही तो हैं उनके लिए भी।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और बिमलेश जी आप बताइए कि आप हमारे कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं से क्या कहना चाहती हैं कि खेती बाड़ी पशुपालन और घर गृहस्थी में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए?
1: यही ध्यान रखना चाहिए, ये तो गर्मी का मौसम है तो जे चीजों को ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा घाम में नहीं बच्चों को जाने दें, पशुओं को ज्यादा घाम में नहीं बांधे, जैसे ठंड है पेड़ों की उसमें बांधे, छाई में बांधे, पानी का ध्यान रखे। और खेतीबाड़ी में यही ध्यान रखना चाहिए, जैसे खेती में तो जो ये है जैसे थोड़ी बरियाने की चीज है, जैसे लौकी है तुरैया है, ये चीजें टाइम से अपने देखभाल रखें, इसका
2: टाइम से तोड़े, टाइम से
1: बाजार ले जाए।
2: और सुखदेव जी आप कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं से अंत में क्या कहना चाहती हैं?
0: ये कहना चाहते हैं मिलजुल के सब रहें, सही सलामत रहें और खूब तरक्की हो, तरक्की हो अपने और सही सलामत से सब घर में परिवार में सब मिलजुल के रहें, एक साथ रहें।
2: रेखा जी, बिमलेश जी और सुखदेव जी आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
4: साथियों अभी आपने सुनी जो महिला कृषि गोष्ठी और प्रतिभागी हिंजा में बिमलेश कुमारी, सुखदेई, रेखा रानी और संचालन कर रही हैं क्षमा सक्सेना।
5: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
6: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
7: कृष्ण भैया, आज हमने बड़ी मेहनत से एक जानकारी और जुटाई है।
4: अच्छी जानकारी जुटाई है आपने, बहुत मेहनत से, और हमारा मन जो लोग भी सुनवाते थे
7: भैया। देखो जानकारी का सिलसिला चल रहा है वो, तो क्यों ना एक जानकारी और सुनवा दें, क्योंकि इस समय हमारे जो भैया बहन के खेत हैं वे खाली पड़े हैं, और जब खाली समय में हमारे जो किसान भैया बहन है वो मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। तो जाई विषय में हमने जो सैंधा मृदा प्रयोगशाला है वहाँ से हमने जानकारी जुटाई है, आप सुन लें।
4: बिल्कुल सुनूंगी साथ ही हमारी जानकारी, लेकिन तब तक हमें

0: लोग भी छाट रहे हैं फिर।
1: ठीक है श्रोताओं, प्रतिदिन क्षेत्र संगलित कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते हैं और आज भी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। जब हम बीमार होते हैं तो अस्पताल पहुंचते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं जहां हम अपना इलाज कराते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से हम बीमार होते हैं, हमारे पशु भी बीमार होते हैं, हमारी फसलें भी बीमार होती हैं, साथ ही साथ हमारी जो धरती है वो भी बीमार होती है। अब पशुओं का इलाज कराने के लिए भी उनको अस्पताल ले जा सकते हैं, लेकिन जब धरती हमारी बीमार हो तो हम क्या करें? धरती बीमार होती है तो कैसे हम उसका इलाज करते हैं? जी हाँ, आप भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि धरती कैसे बीमार हो सकती है। हो सकती है, जब हमारी धरती बीमार होती है तो हम उसका परीक्षण कराने के लिए, उसमें क्या कमी है, हम अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराने के लिए पहुंचते हैं मृदा स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर हम अपनी खेतों की मिट्टी की जांच करा करके धरती को हरा भरा बना सकते हैं, धरती को स्वस्थ बना सकते हैं और अपनी फसलों से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इसी विषय में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम?
2: डॉक्टर राजेश रंजन कुमार।
1: आप मृदा स्वास्थ्य केंद्र सैंधा में कार्यरत हैं, जानना चाहेंगे कि जो मिट्टी की जाँच है उसकी क्या प्रक्रिया रहती है?
2: मिट्टी की जांच से सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाए खेतों से
1: जी।
2: क्योंकि वही हमारा एक नमूना है जो कि पूरे खेत को दर्शाता है। अगर वही अगर गड़बड़ हो जाएगा तो पूरी मिट्टी का नमूना लेना ही व्यर्थ होगा, उसका आकलन भी सब व्यर्थ हो जाएगा
1: जी।
2: तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैसे मिट्टी का नमूना लिया जाए। पहले तो खेत अगर एक बीघे के आपके प्लॉट है, चार पांच जगह से 2 मीटर की दूरी पे 5-6 जगह से मिट्टी आप लेंगे, 6 इंच की आकार का गड्ढा करेंगे खुरपी या फावड़े की मदद से और सतह से मिट्टी को खुरच करके और बाल्टी में आप रखेंगे। उसके बाद एक छायादार जगह पे जाके पॉलिथीन पे वो सारी मिट्टी को आप उड़े लेंगे, उसके हाथों से अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो है उसको 4 भाग में बांटेंगे, 2 भाग आमने सामने का आप फेंक देंगे, फिर 2 भाग को मिला लेंगे, फिर आपका एक ढेर हो जाएगा तैयार। फिर 4 भाग में बांटेंगे, फिर 2 भाग को अलग करेंगे आमने सामने का, फिर 2 भाग को मिला। ये प्रक्रिया आप 4 से 5 बार करेंगे तो आधी किलो मिट्टी आपकी शेष बचेगी। उस मिट्टी को आप लेकर के थैली में आप रख दीजिए पॉलिथीन की थैली में, उसमें आपका नाम, पता, खेत का पहचान, फोन नंबर, जिला एवं कौन सी फसल आप आगामी लेने वाले हैं
1: जी।
2: तो इन सबों को लिखकर आप भेजिएगा तो हम लोग रिपोर्ट जो है 1 हफ्ते में आपको दे देंगे
1: जी।
2: और इसमें कुछ बातें आपको सावधानी देने योग्य है कि मेड़ के आसपास की मिट्टी आप न ले तो ही अच्छा होगा
1: जी।
2: क्योंकि क्या होता है, खाद जो भी हम लोग डालते हैं वो पानी जब उसमें खेतों में भरते हैं तो सारा का सारा वो जो हमारा पोषक तत्व तो है यूरिया डीएपी है वो मेड़ों तक आके रुक जाता है। तो वहां से अगर हम सैंपल लेंगे अपना तो वहां सही आकलन नहीं हो पाएगा हमारे मिट्टी का, क्योंकि वहां ज्यादा मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट मिलेगा। आपसे यही आग्रह है कि 2 मीटर छोड़ के ही आप मेड़ से मिट्टी लें 4-5 जगह।
1: अगर किसी खेत में पेड़ खड़ा है तो पेड़ के नीचे
2: से भी नहीं लेना मिट्टी। और तीसरी है कि गोबर की खाद के आसपास से भी मिट्टी नहीं लेना, क्योंकि वहाँ ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। पेड़ में जो पत्तियां गिरती हैं उससे भी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तो हमारा जो आकलन होगा उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज्यादा आएगी, जो कि सही आकलन नहीं हो पाएगा आपके खेतों का।
1: रंजन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्य रूप से हमारे जो मृदा परीक्षण संस्थान है यहाँ पर कौन कौन से पोषक तत्वों की जाँच होती है?
2: यहाँ पे फिलहाल हमारे पास जो है पीएचईसी का जांच होगा खेत का, दूसरा हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है, फास्फोरस है, पोटास और नाइट्रोजन, इनका भी सिर्फ होगा जांच यहाँ पे।
1: अच्छा।
2: और बाकी आगामी है सूक्ष्म पोषक तत्वों का जांच, भविष्य में हम करने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए मशीन वगैरह इंस्टॉल होगा कुछ समय बाद, तो हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्व की भी जांच करना प्रारंभ कर देंगे
1: जी। मिट्टी की जांच कराने का उचित समय क्या होता है?
2: उचित समय है जब आपका खेत खाली हो, जब कोई फसल ना हो खेत में और खेत आपकी सूखी हो
1: जी।
2: उसी समय मिट्टी आपका लेने लायक है, क्योंकि बीज फसल में से आप मिट्टी नहीं ले सकते हैं, खेत आपकी गीली हो फिर भी ले सकते हैं। जो आपका खेत खाली हो और बुआई से पहले आप मिट्टी का जांच कराएं, उसका रिपोर्ट लें, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से ही खाद डालें
1: जी।
2: और इसमें फसल में कितनी मात्रा में खाद की आवश्यकता है यह हम लोग रिपोर्ट में लिख के देंगे, और कितनी मात्रा आपके खेतों में है, क्योंकि खेत में आपके कुछ न कुछ पोषक तत्व हैं
1: जी।
2: और ये अंधाधुंध जो खादों का प्रयोग हो रहा है, 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी आंख बंद करके लोग डाल रहे हैं, इसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि 20-30% ही पौधों को मिल पाता है खाद, बाकी सब मिट्टी में विलुप्त अवस्था में रह जाता है।
1: उसका वायुमंडल में अवशोषित
2: अवशोषित हो जाता है क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है ज्यादा से ज्यादा खेत डालने से हमारी मिट्टी ऊसर हो रही है धीरे धीरे क्योंकि

0: इतना केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग डाल चुके हैं खेतों में कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, उसके अंदर जो आपके छोटे छोटे जीवाणु है सारे विलुप्त हो चुके हैं
1: जी, सूक्ष्म जीव जो है सब विलुप्त
0: हो गए, क्योंकि उसमें केमिकल है, केमिकल आप जितना ज्यादा डालेगा वो सब धीरे धीरे खत्म होते चले जाए। पहले जो आप देखते होंगे आपका मित्र जीव केचुआ था, वो केचुआ धीरे धीरे आप देखिए खेतों में सब विलुप्त हो गया। उसका मेन काम क्या होता था, मिट्टी को भुरभुरा बनाना।

0: हाँ तुरंत पहुंचा दें। इससे क्या होगा कि आप जो अंधाधुंध खादों का प्रयोग कर रहे हैं वो कम से कम होगा, आपकी लागत जो ज्यादा आ रही फसल पे अंधाधुंध खाद के प्रयोग से, इससे क्या होगा लागत आपका कम आएगा, क्योंकि हम लोग उसी मात्रा में ही संशोधन करते हैं, उसी मात्रा में ही रिकमेंडेशन देंगे जिस मात्रा में खेतों को आवश्यकता है, आपकी फसल को आवश्यकता है। जैसे धान है 20 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है और आपके खेतों में 10 किलो ऑलरेडी है, तो 10 किलो ही आपको डालना है, ये नहीं कि आप 20 किलो की जगह 40 किलो 50 किलो डाल रहे, वो आपका आर्थिक हानि भी हो रहा है प्लस आपका मिट्टी का स्वास्थ्य भी उससे खराब हो रहा है।
1: जी बहुत ही गुणवत्तापूर्ण आपने बातें बताई हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए, हमारे जो अन्नदाता भाई हैं वो हमारी और आपकी बात को सुनकर के जरूर जागरूक होंगे और अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराएंगे, जिससे उनकी जेब भी कम ढीली होगी, कम खर्च में अच्छी फसल मिलेगी, अच्छी उपज मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। रंजन जी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी हमारे भैया बहन ने भेंट वार्ता सुनी, मृदा की जांच कैसे कब क्यों, इसके लिए जानकारी दे रहे थे हमारे साथ डॉक्टर रंजन
2: राजेश कुमार रंजन।
1: और कृष्ण भैया छांट लो लोकगीत,
2: लोकगीत छांट लो बहुत बढ़िया सो, लेकिन सुनवाएं वैसे पहले कुछ साथी हैं जिन्होंने कमेंट्स भेजे हैं।
1: अच्छा कहाँ से भेजे पहले कमेंट?
2: आप हैं सफीदों सिटी हरियाणा से, नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाड़ो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव कुश और समस्त खन्ना परिवार।
1: और जे हमको चिट्ठी मिली है ग्राम दूरीनगर जिला बदायूं से, ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र, गुड्डू, विशाल, संगम, विभू, आदर, सादित्य, कुमकुम, निव्या, सरता और अंतिमा। आप हैं विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव और सुरभि यादव, ग्राम पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से।
2: कोहका विलाई छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघेल, सकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल।
1: कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य।
2: धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आली और रयान बाबू। आप हैं जिला मुरादाबाद के ग्राम दूल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह।
1: तो आप सभी के अनुरोध पर कृष्ण भैया सुनवा दे सुंदर सुलोक गीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: कृष्ण भैया
3: जी,
2: इस संदेश से पहले जो लोकगीत सुनो हमारे भैया बहन ने, उसके लिए एक फरमाइश और मिली है हमारे लिए। वो है छत्तीसगढ़ डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजबी है, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजबी है। और अब धीरे धीरे घड़ी भी टिक टिक करके शुरू करने लगी है कि अनुमति लेने की बेल आ चुकी है।
3: बिल्कुल। तो साथियों, आज के कार्यक्रम ग्राम जगत से अपने भैया कृष्णवीर सिंह
2: और अपने भैया हेडलपाल सिंह को दीजिए अनुमति और कीजिए स्वीकार। भैया बहनों,
3: राम राम, राम।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। एक व्यक्ति नंदब्रज पुत्र दाताराम निवासी सिमरा थाना कादर चौक बदायूं 10 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 18 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गोरा, आंख नाक कान औसत, इकहरा मजबूत जिस्म तथा इन्होंने नीली बनियान काली पैंट पहनी हुई है। जिस किसी को भी इनके विषय में जानकारी मिले तो कृपया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को सूचित करने की कृपा करें।

साथियों, एक खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना और सुनिए। एक व्यक्ति पवन कुमार पुत्र तन सुख राम निवासी वार्ड नंबर 8 थाना अलापुर बदायूं 25 अप्रैल 2026 से लापता है। इनकी उम्र 45 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग सांवला, आंख नाक कान औसत, इकहरा मजबूत जिस्म तथा इन्होंने सेंडो बनियान पैंट पहनी हुई है। जिस किसी को भी इनके विषय में जानकारी मिले तो कृपया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को सूचित करने की कृपा करें। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। 7:17 होने को हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता, एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट।
5: बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन और नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
4: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399

0: छियानवे दिन का हो गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
1: राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इस क्रम में लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या समेत जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर और राज्य के अन्य मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। कानपुर देहात में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जीराम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों के लिए इंटरिम अवलोकेशन में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 9,000

0: 721 करोड़ 48 लाख रुपए धनराशि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी, अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: सौ दशमलव चार मेगाहर्ट्ज पर लीजिए अब सुनिए रेडियो हेल्पलाइन।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
4: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
5: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
6: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी
7: महिलाओं के बांझपन और जठराने की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
6: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
7: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
6: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
8: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं बरेली के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मोहन झा साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
9: धन्यवाद पांडे जी और धन्यवाद बरेली आकाशवाणी।
8: सर हमारी बातचीत का विषय है डायलिसिस। हालांकि इस बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, कुछ ऐसी वास्तविक बातें हैं जो हमारे श्रोताओं तक पहुंचना जरूरी है, आप भी ये चाहते हैं। आज हम डायलिसिस के बारे में बात करेंगे और भ्रांतियां जो भी हैं उनको जानेंगे, जो वास्तविकता है वो अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास होगा और इसके साथ ही श्रोताओं की जो समस्याएं आएंगी फोन लाइन के माध्यम से उनके समाधान भी आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो यही डॉक्टर साहब कि डायलिसिस आखिर है क्या, क्या होता है?
9: पंडित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा संक्षिप्त में अपने बारे में बताना चाहूंगा ताकि वो ये पता चल सके कि वो किनको सुन रहे हैं और किनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, इससे ऑथेंटिसिटी

0: जी बिल कंफर्म होती है। तो मैं डॉक्टर प्रेम मोहन झा हूँ और मैं MBBS MD DRNB हूँ, किडनी की बीमारियों का सुपर स्पेशलिस्ट हूँ और गंगाशील अस्पताल गंगाचरण अस्पताल दोनों में मैं गुर्दा रोग विभाग को देखता हूँ।
1: दोनों जगह आप सेवाएं दे रहे हैं
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, आपने जो अपने डिग्री के विषय में बताया, क्या विशेष डिग्री होती है ये DNB?
0: MD मेडिसिन तो एक जनरल फिजिशियन होते हैं
1: जी,
0: वो मोटा मोटा सारी चीजें देखते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: और उसके बाद आता है सुपर स्पेशलाइजेशन, यानी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो ये होती है। जैसे किडनी के लिए DNB या DM नेफ्रोलॉजी होती है, और आज से 3 साल पहले मैंने वो डिग्री पूरी कर ली थी और कुल मिलाकर जो मेरा अनुभव है वो 7 से 8 साल का है गुर्दा रोग के फील्ड में। अब हम टॉपिक की ओर चलते हैं।
1: हमारा आज का विषय डायलिसिस है, भ्रांतियां और जो वास्तविकता है उसके बारे में जानने की अभिलाषा है, इच्छा है डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले तो डायलिसिस के बारे में बताइए और डायलिसिस का आपस में क्या संबंध?
0: आपने सही सवाल पूछा, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो डायलिसिस को समझने से पहले हमें गुर्दों के बारे में समझना पड़ेगा
1: जी।
0: हमारे गुर्दे शरीर में 24 घंटे हर पल हर सेकंड काम करते हैं और बेसिकली ये सिर्फ एक काम नहीं करते, ये बहुत सारे काम करते हैं, जिनमें से एक काम होता है खून की सफाई।
1: अच्छा,
0: जैसे कि शरीर में जो हम खाना खाते हैं जो डाइजेशन होता है उसमें यूरिया क्रिएटिनिन एज अ वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है तो उसको शरीर से निकालना है। इसके अलावा शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करना है, जैसे आप पानी कम पीते हैं तो पेशाब कम बनता है, पानी ज्यादा पीते हैं तो पेशाब ज्यादा आता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है और कैल्शियम फॉस्फोरस सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं इनकी मात्रा को कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा जो खून बनाने का हॉर्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन वो भी किडनी से निकलता है।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा जो विटामिन डी बनाने का हार्मोन होता है वो भी किडनी से निकलता है।
1: इतना महत्वपूर्ण काम है किडनी का?
0: किडनी हमारी इतना महत्वपूर्ण काम करती है और ये हमें पता नहीं होता, हमारे अंदर ये काम हर समय किडनी कर रही होती है। जब किडनी किसी वजह से डैमेज हो जाती है, अचानक से डैमेज हुई हो चाहे धीरे धीरे डैमेज हुई हो, तो कई बार डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है। तो डायलिसिस वही काम टेम्परेरी बेसिस पे करती है,
1: यानी वो शरीर के बाहर मशीन के द्वारा किया जाता है जो किडनी काम कर रही है
0: जी।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा कि किडनी सिर्फ पेशाब को छानने का काम नहीं करता बल्कि कई हार्मोन बनते हैं, क्या ये सब भी संभव होता है डायलिसिस में बाहर की किसी मशीन के द्वारा होता है?
0: डायलिसिस से हार्मोन नहीं बन सकते, इसलिए जिन मरीजों में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है उनमें साथ में और भी दवाइयां दी जाती हैं।
1: अच्छा।
0: जो नेचुरल किडनीज हमारी होती हैं वो नेचर के द्वारा बनाई हुई है इसलिए वो बेस्ट होती हैं। ठीक है, तो उनका कुछ काम डायलिसिस के द्वारा कुछ काम दवाइयों के द्वारा होता है, तो इसीलिए डायलिसिस को एक जीवन रक्षक प्रक्रिया बोला जाता है, लाइफ सेविंग प्रोसेस बोला जाता है डायलिसिस को
1: जी। जब इतनी बात हो रही है तो डॉक्टर साहब ये भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे, किडनी चूंकि दो होती है, कई लोगों में ये भी सुना है एक किडनी होती है, तो दो के पीछे क्या उद्देश्य है? प्रकृति क्या एक संदेश या मैसेज देना चाहती है? क्या दोनों किडनी एक साथ काम करती है या फिर एक कुछ समय काम करती है दूसरी उसके बाद काम करती है? क्या व्यवस्था होती है शरीर
0: जी? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे दिन में एक किडनी काम करती है रात में दूसरी किडनी काम करती है, ऐसा नहीं होता है। दोनों किडनी हर समय काम कर रही होती है और नॉन स्टॉप काम कर रही होती है, बिना किसी आराम के काम कर रही होती है। जिन लोगों में पैदाइशी एक किडनी होती है उनमें वो एक किडनी के सारे जीवन नॉर्मल कट जाता है, जिन लोगों में किसी वजह से एक किडनी निकालनी पड़ती है और दूसरी किडनी अगर सही है तो उनमें भी जीवन नॉर्मल चल जाता है, जिनमें दोनों किडनी ठीक है उनमें भी जीवन नॉर्मल चल जाता है।
1: यानी किडनी का जो काम है वो आपने बता दिया है, किस तरह काम करती है ये जिज्ञासा भी हमारे श्रोताओं की पूरी हुई। अब डायलिसिस के विषय में बात हो जाए सर, क्या होती है, कब करनी पड़ती
0: है? देखिए, पहले तो कब करनी है ये जानना चाहिए। तो इसके दो तरह के इंडिकेशंस होते हैं, एक क्लिनिकल इंडिकेशन एक बायोकेमिकल इंडिकेशन। बायोकेमिकल इंडिकेशन वो होते हैं जिनमें यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई
1: जी,
0: या सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा कम या ज्यादा हो गई, या कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, या आप कह सकते हैं कि शरीर में एसिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, तो ये बायोकेमिकल इंडिकेटर्स हैं। क्लिनिकल इंडिकेटर्स में आते हैं कि किसी किडनी पेशेंट को दौरे पड़ने लग जाएं यूरिया क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ने की वजह से, जिसको यूरिमिया या यूरिमिक सिम्टम्स बोलते हैं, या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या सांस फूलने लग जाए, पेशाब आना बंद हो जाए, भूख लगना बंद हो जाए
1: जी,
0: नींद आना बंद हो जाए, खून की बहुत ज्यादा कमी होने लग जाए, तो ये सारी वजह होती हैं जिनमें हम डायलिसिस की जरूरत पड़ती है।
1: अच्छा,
0: तो डायलिसिस दो तरह की होती है, एक खून वाली डायलिसिस और एक पानी वाली डायलिसिस।
1: अच्छा,
0: तो ज्यादातर लोगों को खून वाली डायलिसिस के बारे में पता होता है, जिसको गुर्दों की धुलाई बोलते हैं,
1: हीमोडायलिसिस भी इसी को
0: जी, हीमोडायलिसिस इसी को बोलते हैं। इसमें एक फिशुला या कैथेटर के थ्रू पेशेंट के शरीर से एक ट्यूब से ब्लड मशीन के थ्रू पास होता है फिल्टर से और दूसरे ट्यूब

0: थ्रू वो साफ होके वापस चला जाता है। तो मशीन का काम सिर्फ ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है और इसमें ब्लड लॉस ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बल्कि खून को साफ करके वापस लौटा दिया जाता है। दूसरी जो पानी वाली डायलिसिस होती है उसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: जिसमें कि पेट में एक सर्टेन फ्लूड होता है जिसको पेरिटोनियल फ्लूड बोलते हैं, जो अलग अलग कंसंट्रेशन का आता है, उसको पेट में डाल दिया जाता है और कुछ अंतराल के बाद उसको निकाल लिया जाता है। ये पेट वाली डायलिसिस होती
1: है। डॉक्टर साहब, किन लोगों में हीमोडायलिसिस या खून वाली डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, वो किस तरह के मरीज?
0: ओवरऑल ये पेशेंट की चॉइस पर भी डिपेंड करता है
1: जी।
0: एक्यूट कंडीशंस में या जिनमें अचानक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनमें हीमोडायलिसिस हम प्रेफर करते हैं। और जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है तो, और वो सुटेबल कैंडिडेट है, विलिंग है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस उसको सजेस्ट कर दी जाती है। पेरिटोनियल डायलिसिस का ये एडवांटेज होता है कि पेशेंट अपना घर पे कर सकता है।
1: अच्छा।
0: दिन में, रात में, सोते समय भी होती रहती है। पेशेंट कोई ऑफिस गोइंग है तो आराम से ऑफिस जा सकते हैं, या आप बाहर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ आप आराम से बाहर घूमने भी जा सकते हैं। हीमोडायलिसिस में ये लिमिटेशन होती है कि आपको हफ्ते में 3 बार या 2 बार, जैसा रिकमेंड किया है किडनी स्पेशलिस्ट ने, वैसे आपको आके 4 घंटे तो एटलीस्ट लेट नहीं होता है। जैसे सपोज हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए बोला गया तो हफ्ते में 3 बार तो आपको आना ही है, तो 4 घंटे तो डायलिसिस चलेगी, प्लस आपका आने का टाइम, जाने का टाइम, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, पेरिटोनियल डायलिसिस में वाइटल्स ज्यादा अच्छे से मेंटेन रहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हीमोडायलिसिस में थोड़ा फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं बीपी में जी।
1: अच्छा।
0: लेकिन हीमोडायलिसिस का जो रेस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है और ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जिन पेशेंट में यूरिन आना बंद हो गया, यानी रेजिडुअल रीनल फंक्शन खत्म हो गया, उन पेशेंट्स में फिर पेरिटोनियल डायलिसिस ज्यादा सुटेबल नहीं रहती है, तो उनको हीमोडायलिसिस पे स्विच करना पड़ता है। या जो कोई पेशेंट बहुत ओवरवेट हैं, या जिनकी पेट की सर्जरी हो चुकी है, या पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से पेट में फंगल इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो गया, या कई बार कैथेटर डल चुका है और पेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो चुकी है, तो वो सारे पेशेंट सुटेबल होते हैं हीमोडायलिसिस के लिए।
1: अच्छा, अब ये बताइएगा डॉक्टर साहब, क्या परिस्थितियां होती हैं जबकि डायलिसिस या फिर सीधे से हीमोडायलिसिस की बात हम करना चाहेंगे, हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है?
0: ये तो हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि क्लिनिकल और बायोकेमिकल दो तरह के इंडिकेशंस होते हैं।
1: अच्छा।
0: जिनमें
1: क्लिनिकल इंडिकेशंस,
0: क्लिनिकल इंडिकेशंस में जैसे सूजन आना, सांस फूलना, पेशाब न आना और दौरे पड़ना, ब्लीडिंग होना,
1: जी
0: ये सारे क्लिनिकल इंडिकेशंस होते हैं।
1: अच्छा।
0: और तो इनमें डायलिसिस की अगर सलाह दी गई है तो करा लेना चाहिए, क्योंकि डायलिसिस आपकी जान बचाती है।
1: अच्छा। डॉक्टर साहब, जैसे डायबिटीज का मर्ज हो गया या फिर दिल के मरीज हो गए और इसी तरह की अन्य बीमारियां भी हैं, कैंसर है, किसी को थायराइड की बीमारी है, तो क्या डायलिसिस के साथ ऐसा है कि कोई खास बीमारी अगर किसी व्यक्ति को है तो उस व्यक्ति को ज्यादा संभावना है डायलिसिस की, या ये एक अलग तरह की विधा है, अलग तरह की संस्कृति है?
0: देखिए, डायलिसिस का रिस्क सीधे किडनी की बीमारी के रिस्क से जुड़ा होता है।
1: अच्छा।
0: और किडनी की बीमारी का रिस्क, जो आपने बीमारियां बताई कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, कैंसर है, या किडनी में पथरी है, या बहुत ज्यादा कोई लंबे टाइम से दर्द की गोलियां खा रहा है, या बहुत ओवरवेट है, अनहेल्दी खाना खाते हैं, बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, तो उनमें किडनी की बीमारी होने का रिस्क ज्यादा होता है। और किडनी की बीमारी होने का रिस्क ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली एंड स्टेज किडनी डिजीज होने का रिस्क बढ़ेगा और डायलिसिस के चांसेस बढ़ेंगे इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पॉपुलेशन।
1: अगर किसी व्यक्ति को परिस्थितियां ये कहती हैं कि उसे डायलिसिस की जरूरत है, कई बार लोग टालते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए नए प्रयोग करते रहते हैं खुद पर, उनका ये मानना होता है कि हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। डायलिसिस जैसी प्रक्रिया जो आप बता रहे हैं बड़ी साधारण हो गई है आज के दौर में, और अब दो तरीके आपने बता भी दिए हैं, अगर कोई व्यक्ति लगातार टाल रहा है उसे डायलिसिस की जरूरत है तो वो किस ओर जा रहा है?
0: जैसे मैं बता रहा हूँ, आज मेरे पास 2 पेशेंट आए थे
1: जी,
0: मतलब कई सारे पेशेंट थे, इनमें 2 स्पेशली मेंशन करने लायक पेशेंट थे
1: जी।
0: एक पेशेंट था जिसको मैंने 6 महीने पहले देखा था, और 6 महीने पहले उसका, 24 साल का लड़का था, 6 महीने पहले उसका क्रिएटिनिन 4 के आसपास चल रहा था, हीमोग्लोबिन उसका 7 पॉइंट था, तो मैंने उसको ब्लड चढ़ाने के लिए और प्रॉपर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए और सारी दवाइयों के लिए, सब वैक्सीनेशन के लिए सारा समझाया। उस दिन वो आया, वो रेस्पॉन्स भी आया, लेकिन उसके बाद जैसा कि आमतौर पे होता है कि लोगों के रिश्तेदार, मिलने वाले, मोहल्ले पड़ोस वाले, ये सारी चीजें कभी कभी भटका देती हैं
1: जी।
0: तो उनके साथ भी यही हुआ और वो अल्टरनेटिव मेडिसिन यूज करने लगे। हालांकि देखिये, मैं किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, है ना, लेकिन जो उनका रेस्पॉन्स था, वो लड़का 3 महीने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेने के बाद

0: उसको ऑल्टरनेट मेडिसिन के पास वो इसलिए गया क्योंकि उसको ये वादा किया गया कि हम आपकी किडनी ठीक कर देंगे और हम आपको डायलिसिस की नौबत नहीं आने देंगे। एक लड़का जिसका वेट 64 केजी था वो लड़का 30 केजी वेट के साथ आया, इतना सीवियर वेट लॉस हो गया, उसका सारा खाना पीना बंद करवा दिया गया था और मेरे पास सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे के साथ आया। हालत इतनी खराब थी, बीपी 200 के ऊपर, और फिर हमने उसको वेंटिलेटर पे लिया, डायलिसिस करी कई सारी और उसके बाद वो लड़का डिस्चार्ज होके गया,
1: नॉर्मल हो पाया।
0: एक वो लड़का था जो आज आया और उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि शायद अगर वो रेगुलर दिखाता रहता तो उसको इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरे जो पेशेंट हैं वो 28 साल का लड़का था जिसको उल्टी दस्त हुए और कहीं बाहर ट्रीटमेंट वो करा रहा था और उसके गुर्दे एकदम बैठ के डिहाइड्रेशन की वजह से, तो 3 दिन से उसको पेशाब एक बूंद भी नहीं आया था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उल्टियां हो रही थी, शरीर पे सूजन आ गई थी। तो वो मेरे पास इमरजेंसी में आया था, हमने भर्ती किया, जांचें करी उसकी, को ये सारे इंडिकेशन थे डायलिसिस के लिए। तो उसका क्रिएटिनिन था 9
1: जी
0: और हीमोग्लोबिन रह गया था उसका 8। तो हमने उनको बोला, उनके घर वालों को, कि डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो जैसा कि सबके मन में या समाज में ये भ्रांति है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो जिंदगी भर चलेगी, तो मैं श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो जिंदगी भर चलेगी। ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है, न ही हर मरीज पर लागू होती है। तो जैसे कि ये बच्चा था, जैसे ही मैंने इसको डायलिसिस के लिए बोला, इसके घर वालों ने साफ मना कर दिया, हम डायलिसिस नहीं कराएंगे। हमारे यहाँ पे एक पेशेंट की डायलिसिस हुई थी और वो फिर डायलिसिस जिंदगी भर से हो रही है उसकी। फिर मैंने उनको काफी समझाया, बहुत सारे लोग भी आए, कई घंटे डिस्कशन भी हुआ, लेकिन फाइनली वो नहीं माने, उन्होंने कहा आप छुट्टी कर दो, हम दिल्ली ले जाएंगे। फिर किसी फैमिली में समझदार आदमी ने डिसीजन लिया कि नहीं, यहीं रुकते हैं, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो मानते हैं। डायलिसिस हुई उस बच्चे की, 4-5 डायलिसिस हुई और उसके बाद धीरे धीरे उसका किडनी रिकवर होने लग गई। हमने उसका इन्फेक्शन ठीक किया, हाइड्रेशन मेंटेन किया, इसको जिसको बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा था उसको यूरिन आने लग गया और 15 दिन के अंदर उसकी डायलिसिस बंद हो गई। अब वो बच्चा सिर्फ एक साल में एक बार रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आता है, उसका हीमोग्लोबिन 14-14.5 और क्रिएटिनिन 0.8-0.9 ऐसे चल रहा है। उसके घर वालों को तब एहसास हुआ कि शायद अगर उस दिन नहीं डायलिसिस कराते तो शायद वो बच्चा बचता नहीं।
1: बिल्कुल, वास्तविकता ये है
0: जी।
1: और भ्रांतियां मन में क्या क्या लोग पाले रहते हैं आप?
0: तो दूसरा, जो डायलिसिस एक बार शुरू होकर जिंदगी भर चलती है वो उन लोगों पे लागू होती है जिनकी किडनी धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। जब किडनी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है तो उनमें रिकवरी के चांसेस नहीं होते, लेकिन जब किडनी अचानक से किसी वजह से बैठती है, इसको AKI बोलते हैं, तो उसमें 90% मामलों में यूजली 1-1.5 महीने में किडनी रिकवर कर जाती है और डायलिसिस की अगर जरूरत पड़ रही है तो वो बंद हो जाती है। लेकिन जो क्रॉनिक किडनी डिजीज या एंड स्टेज किडनी डिजीज होती है उसमें या तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट, दो ही रास्ते होते हैं।
1: सच्चाई क्या है और क्या मिथक पाले हैं हमारे मन मस्तिष्क में पलते रहते हैं, किन चीजों को हम फॉलो करते हैं, ये बहुत स्पष्ट है। डायलिसिस कोई ऐसी शर्त नहीं है जो एक बार अगर किसी व्यक्ति की हो गई उसे जीवन पर्यंत डायलिसिस पर ही रहना है। तरीका आपने बताई दिया डॉक्टर साहब। आप क्रिएटिनिन के बारे में बार बार बात, क्रिएटिनिन आखिर क्या होता है और इस जांच से क्या स्पष्ट होता है, क्या तय कर पाते हैं?
0: क्रिएटिनिन मसल प्रोटीन होती है, जब हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं तो वो बॉडी में एसिमिलेट होता है, मसल्स बनती हैं, नई नई मसल बनती हैं, पुरानी मसल टूट रही होती हैं, ये लगातार चल रहा होता है बॉडी में। तो जो पुरानी मसल्स के टूटने से जो प्रोटीन रिलीज होती है वो होती है क्रिएटिन, जो बॉडी में डाइजेस्ट होकर क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होती है और जो किडनी के द्वारा यूरिन में पास हो जाती है।
1: अच्छा।
0: किसी वजह से अगर किडनी डैमेज होती है तो वो क्रिएटिनिन किडनी फिल्टर नहीं करती है और वो खून में इकट्ठा होने लगता है।
1: अच्छा।
0: तो क्रिएटिनिन के लेवल से हमें ये पता चलता है कि किडनी का GFR क्या है या कह लीजिए कितने % किडनी काम कर रही है
1: जी। एक डॉक्टर साहब भ्रांति समाज में ये भी है, अगर किसी की हीमोडायलिसिस या खून वाली डायलिसिस हो रही है तो उस व्यक्ति का हार्ट या दिल बहुत कमजोर हो जाता है, सच्चाई क्या है?
0: देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पे जो डायलिसिस है एक्चुअली वो टेक्नीशियंस के भरोसे चल रही होती है
1: जी,
0: लेकिन जिन भी सेंटर्स पे नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर में या गुर्दा रोग विशेषज्ञ के सुपरविजन में डायलिसिस चल रही है और जहां पेशेंट रेगुलर एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल करके रखे हुए हैं, बीपी कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है, तो उन पेशेंट में हार्ट में दिक्कत नहीं आती है। जिन पेशेंट के बीपी कंट्रोल नहीं रहते या शरीर में पानी की मात्रा बढ़ी हुई है, परहेज नहीं कर रहे हैं
1: जी,
0: तो इन लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम

0: आ सकती है। इसमें डायलिसिस की गलती नहीं है, इसमें अगर हम बीपी कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम खाने पीने में परहेज नहीं करेंगे, टाइम पे दवाइयां नहीं लेंगे, टाइम पे दिखाएंगे नहीं, तो ये कारण होते हैं एक्चुअली इसके हार्ट में दिक्कत आने के। दूसरा एक और सबसे बड़ी जो भ्रांति है लोगों में वो ये है कि डायलिसिस के हर मरीज को या हर डायलिसिस में खून चढ़ाना पड़ता है।
1: जी,
0: नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम रेगुलर डायलिसिस करा रहे हैं, रेगुलर आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम ये सब ले रहे हैं और एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन ले रहे हैं, तो खून की कमी नहीं होती है। जो लोग अपने आयरन प्रोफाइल और विटामिन B12, फोलिक एसिड इनकी मॉनिटरिंग नहीं करते या जो एडिक्वेट डायलिसिस नहीं कराते, उन लोगों में धीरे धीरे खून की कमी होने लगती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइएगा, क्योंकि कई लोगों का कहना यह भी है कि जिन लोगों की डायलिसिस होती है उन्हें पानी पीने की मनाही होती है या बहुत कम पानी पीने को दिया जाता
0: है। देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें पेशाब कितना है। आमतौर पर ऐसे तो सीजन के हिसाब से बदलता है। एक होता है इनसेंसिबल वाटर लॉस, है ना, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन शरीर से पानी का लॉस होता रहता है। जैसे सांस में भी पानी होता है, मॉइस्चर होती है, स्किन से भी स्वेटिंग होती है, तो गर्मियों में स्वेटिंग ज्यादा होती है तो गर्मियों में इनसेंसिबल लॉस ज्यादा होता है, सांस के साथ लॉस होता है। ऐसे सर्दियों में भी एयर ड्राई होती है, हमारी सांसों से मॉइस्चर लॉस होता है, स्किन से होता है, तो ये इनसेंसिबल लॉस होता है जो आमतौर पर 400 से 600 ml पर 24 आवर माना जाता है। जितना यूरिन आ रहा है उसमें करीब आधा लीटर और ऐड करके आप पानी ले सकते हो।
1: अच्छा।
0: अगर किसी पेशेंट को 2 लीटर यूरिन डेली आ रहा है तो वो 2.5 लीटर पानी पी सकता है, लेकिन जिस पेशेंट को यूरिन ही 24 घंटे में 200 ml आ रहा है तो वो 2.5 लीटर पानी नहीं पी सकता।
1: अच्छा।
0: क्योंकि बाकी का सारा पानी उसके शरीर में इकट्ठा होगा, सांस फूलेगी, सूजन आएगी। ठीक है, तो जिस मरीज को 100 ml यूरिन आ रहा है वो 500 ml पानी ले सकता है 24 घंटे में।
1: अच्छा।
0: तो ये इस बात पे डिपेंड करता है।
1: पानी की बात होगी डॉक्टर साहब, इसके अलावा और भी कई तरह की ऐसी भ्रांतियां होंगी जो आपके पास लेकर के अब हमारे जो श्रोता हैं या ये कहें कि जो मरीजों के साथ के लोग हैं वो आते होंगे, तरह तरह के सवाल करते होंगे, क्या अनुभव है आपका?
0: एक मुझे याद है, कुछ दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आया था, तो मैंने डायलिसिस के लिए बोला था, लेकिन वो उन्होंने सूजन आ गई थी पूरे शरीर पे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खून भी कम था, लेकिन उन्होंने क्या किया, किसी की बात सुन के और एक भगोने में नमक का पानी भर के और बच्चे को उसमें खड़ा कर दिया।
1: अच्छा।
0: और 8 घंटे से ज्यादा खड़ा रहा वो बच्चा, और 8 घंटे नमक के पानी में खड़े रहने से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसको इमरजेंसी में हमें डायलिसिस के लिए लेना पड़ा। जिस पेशेंट का ओपीडी बेसिस पे डायलिसिस हो सकती थी, आराम से हो सकती थी, उस बच्चे की इमरजेंसी बेसिस पे डायलिसिस करनी, एक तो ये है। दूसरा, मैं सारे डायलिसिस वाले मरीजों से बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों को अचानक की स्थिति में डायलिसिस के लिए बोला गया है, AKI की कंडीशन में बोला गया है, कृपया किसी भी डाउट को लेके अपने डॉक्टर से बात करें, जो क्वालिफाइड है, जो ट्रेंड है किडनी की बीमारियों के इलाज को लेके। मोहल्ला, पड़ोस वाले, रिश्तेदारों की, दोस्तों की ना सुने, क्योंकि ये लोग ट्रेंड नहीं होते हैं गुर्दे की बीमारियों के इलाज के लिए। और अगर डॉक्टर ने डायलिसिस की जरूरत बताई है तो करा लेनी चाहिए, क्योंकि डायलिसिस जान लेती नहीं है, जान बचाती है। पहली बात। दूसरी बात, जो लोग रेगुलर डायलिसिस पे आ चुके हैं उन लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। पहली बात ये कि स्टैंडर्ड जो है वो हफ्ते में 3 या 1 हफ्ते में 12 घंटे डायलिसिस का स्टैंडर्ड होता है। तो एक डायलिसिस आमतौर पर 4 घंटे की होती है, तो 1 हफ्ते में 3 डायलिसिस कराएंगे तब आपका डायलिसिस का टाइम 12 घंटे बनेगा, तो रेगुलर डायलिसिस कराएं। दूसरी बात, अपनी बीपी की, शुगर की, आयरन की, कैल्शियम की,
1: इसकी जांच की
0: रेगुलर जांच कराएं, और जो दवाइयां चल रही हैं वो रेगुलर दवाइयां खाएं। तीसरा, जो खाने पीने का परहेज बताया जाता है, स्पेशली प्रोटीन का इंटेक, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब चीजों का प्रॉपर जो है अपने सिचुएशन के हिसाब से, वेट के हिसाब से, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो है डॉक्टर और डाइटिशियन दोनों से डिस्कस करके डाइट चार्ट बनवाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर पीरियड पे हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, एल्बुमिन, वायरल मार्कर, SGOT-PT, यूरिक एसिड, पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल, आयरन प्रोफाइल, ये सारे रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर होने चाहिए। मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं पांडे जी, जो जब अस्पताल आते हैं तो खुद कार चला के आते हैं, और जब अस्पताल में घुसते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पेशेंट है। और वो पेशेंट पिछले 10

0: साल से डायलिसिस कराने, आप विश्वास नहीं करेंगे, सूट पहन के आते हैं और बिल्कुल पेशेंट की तरह नहीं लगते, डायलिसिस कराते हैं और खुद गाड़ी चला के चले जाते हैं। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे खुद को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे एडवाइस फॉलो कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, अपने डॉक्टर पर भरोसा और अपनी स्वयं के बारे में जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, चाहे बीमारी कुछ भी हो और प्रक्रिया इलाज की डायलिसिस ही क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि अगर गुर्दे में किसी के पथरी हो गई और पथरी के बाद उन्होंने ऑपरेशन कराया तो डायलिसिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, सच्चाई क्या है?
0: देखिए, इसमें सच्चाई ये है कि अगर किसी को पथरी है तो समय पे ऑपरेशन करा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग पथरी के लिए तंत्र मंत्र और ये अल्टरनेटिव मेडिसिन के भरोसे रहते हैं, चूरन काढ़ा ये वो ये सब करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना किडनी के फंक्शन की मॉनिटरिंग भूल जाते हैं, धीरे धीरे किडनी डैमेज होने लगी है और नतीजा वो किडनी खत्म हो जाती है। जिन भी लोगों को किडनी में पथरी है वो भटके नहीं, एक क्वालिफाइड किडनी स्पेशलिस्ट से मिलें और उसका मेडिकल या सर्जिकल जिस भी तरह का ट्रीटमेंट रिकमेंड किया गया है उसको फॉलो करें। अगर किडनी में बड़ी पथरी है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती और सर्जरी की सलाह दी गई है तो जितना जल्दी सर्जरी करा लेंगे उतना जल्दी किडनी बच जाती है और वो डायलिसिस से बच जाते हैं।
1: यानी ये कोई शर्त नहीं है, अगर किडनी में पथरी है और पथरी का ऑपरेशन करा दिया तो डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी।
0: जी,
1: ये भ्रांति है और इस भ्रांति को मन में ना पालें।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, चूंकि हम बात कर रहे हैं डायलिसिस की और आप किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, सर ये और बताइएगा, कहते हैं कि जिन लोगों को थायराइड होती है उन्हें भी किडनी खराब होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं और थायराइड के मरीजों को भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, क्या ये सच्चाई है?
0: थायराइड के मरीजों को डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, डायलिसिस की जरूरत किडनी के मरीजों को पड़ती है।
1: जी,
0: और किडनी की बीमारी का जो रिस्क है वो थायराइड वाले पेशेंट्स में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि हाइपोथायराइड वाले पेशेंट्स में वेट गेन ज्यादा होता है।
1: जी,
0: तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर टाइम पे दवाई ली जाए, टाइम पे मॉनिटरिंग की जाए, किडनी का रिस्क सेम ही होता है।
1: और क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब, चूंकि बात बड़ी महत्वपूर्ण है, डायलिसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, भ्रांतियां लोगों के मन में अभी भी पता नहीं क्या क्या होगी, जबकि सच्चाई इससे अलग है। आपने बताया कि डायलिसिस जान जोखिम में नहीं डालती, बल्कि डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी विधा है जिसके माध्यम से जान बचाने की कोशिश होती है और जान बचाई भी जाती है। क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? और
0: देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी पेशेंट को किडनी में दिक्कत है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़े हुए हैं और जो जीएफआर है
1: जी,
0: वो 10 से कम है, पोटेशियम बार बार बढ़ जाता है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा
1: जी,
0: या शरीर में एसिड का लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा, या सांस फूल रही है, या बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, या यूरिया में ब्लीडिंग है, कोएगुलोपैथी है और फ्लूड ओवरलोड है, या यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से दौरे पड़ने लग गए हैं, तो वो लोग कृपया टाइम बर्बाद करके मरीज की जान को जोखिम में न डालें और समय पे डायलिसिस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इससे मरीज का जीवन सुरक्षित हो जाता है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन होने की स्थिति में ने मोहल्ले पड़ोस वाले या रिश्तेदार या कोई भी ऐसा आदमी जो गुर्दे की बीमारी के इलाज के लिए प्रशिक्षित नहीं है उससे सलाह ना लें।
1: बिल्कुल, एक प्रशिक्षित चिकित्सक से बात करें, जो सुझाया जाए, जो बताया जाए उसके सुझाव को मानते हुए उचित इलाज कराएं। डायलिसिस की बात जहां तक है तो ये मैं समझ सकता हूं डॉक्टर साहब इतनी बातचीत करने के बाद कि डायलिसिस एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर डायलिसिस की सलाह या सुझाव दिया जाता है तो अवश्य कराएं, अपना जीवन बचाएं।
0: मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, कर्म करना हमारे हाथ में होता है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। ऐसे ही मरीज की बीमारी की स्थिति, लक्षण और रिपोर्ट के आधार पर अगर डायलिसिस जरूरी है तो करानी चाहिए, बाकी तो जीवन ऊपर वाले के हाथ में होता है। डॉक्टर होने के नाते हम लोग सजेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, हर पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली जो लाइफ है वो ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन कोशिश करना हमारे मरीज के और मरीज के घर वालों के ही हाथ में होता है।
1: कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए, प्रयास,
0: कोशिश में पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं श्रोताओं को स्पेशली बोलना चाहूंगा कि गंगाचरण हॉस्पिटल रामपुर गार्डन और गंगाशील हॉस्पिटल डीडीपुरम बरेली दोनों में 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। और जो हमारे ये ये दोनों सेंटर हैं, ये उन चुनिंदा सेंटर्स में से आते हैं जहाँ पे

0: हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए अलग से डायलिसिस मशीन की व्यवस्था है
1: जी.
0: उनको, मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस पॉजिटिव पेशेंट को डायलिसिस के लिए लिया ही नहीं जाता
1: जी,
0: है.
1: जी.
0: हमारे यहाँ उनको लेते भी हैं और उनके लिए प्रॉपर एक अलग सेगमेंट की भी व्यवस्था है, डेडिकेटेड स्टाफ होता है. कोई दिक्कत होने पे जो है आप आके मुझसे मिल सकते हैं
1: जी
0: और बात कर सकते.
1: डॉक्टर प्रेम मोहन झा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को डायलिसिस के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनके विषय में अवगत कराया और जो वास्तविकता है उससे भी अवगत कराया. आपका स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली.
4: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से.
5: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
3: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
6: महिलाओं के बांझपन और जठरानी की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
3: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
6: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
3: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली. इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444.
7: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है. रात्रि के 8 बजने को है. थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम रिले किया जाएगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से.

0: 4.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं।
1: चेंज कर दो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 8। आइए अब सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री मुक्तिनाथ झा की कहानी उलझन।
1: शरद ऋतु की सुहानी सुबह चिड़ियों का कलरव और पूरब के अंतहीन आकाश पर फैली अरुणोदय की लालिमा तीनों एक साथ मन को लुभा रही थी। प्रकृति के संपूर्ण परिवेश में अरुणोदय के साथ आई सुहानी सुबह की ताजगी व्याप्त थी। देवी प्रसाद दालान के अपने चिर परिचित कमरे में चारपाई पर लेटे हुए थे। वृद्धावस्था की निर्मल काया में मधुर स्मृतियों ने अचानक उत्साह का संचार कर दिया। अपने पुरखों के इस दलान को वे बालपन से देख रहे थे। जीवन की कई मधुर और मायूसी से भरी यादें इस दलान से जुड़ी थी। घर के बाल वृंद से लेकर बुजुर्ग तक की अधिकांश दिनचर्या इसी दलान पर गुजरती थी। ये सारी यादें उन्हें अब किसी बीते हुए युग की जीवनचर्या लग रही थी। अब दलान में वह चहल पहल और रौनक नहीं रही जो लोगों के रहने से हमेशा बनी रहती थी। आजीविका की तलाश में बाहर जा रहे लोगों की वजह से दालान ही नहीं बल्कि सारा गांव लगभग वीरान हो गया था। बदन से रजाई हटते ही देवी प्रसाद को ठंडी हवा की चुभन महसूस हुई। वे धीरे से बिस्तर से उठे और उन्होंने कमरे की खिड़की के सारे पल्ले खोल दिए। पूरा कमरा सुबह की धूप से जगमगा उठा। पूरब की क्षितिज पर सूर्यदेव संपूर्ण आभा के साथ चमक रहे थे। देवी प्रसाद जी का हृदय भगवान भुवन भास्कर के प्रति श्रद्धा से भर उठा। उनको लगा कि भगवान भुवन भास्कर के रूप में सुदूर गगन पर चमक रहा यह प्राण पोषक दिव्य प्रकाश पुंज जगत के प्राणियों के लिए करुणामयी परमेश्वर की आभामयी उपस्थिति ही है। देवी प्रसाद ने पूरे भक्तिभाव से पूरब के आकाश पर चमक रहे सूर्यदेव को नमन किया और चारपाई पर आकर लेट गए। सुबह की सुहानी धूप उन्हें रुचिकर लग रही थी। उन्होंने गौर किया कि आंगन से किसी के आने की आहट अभी तक नहीं मिली है। देवी प्रसाद ने अनुमान लगाया कि अभी घर के लोग जगे नहीं होंगे। जाड़े में रजाई की गर्माहट में सुबह की नींद बहुत प्यारी लगती है। वृद्धावस्था में अपने असमर्थ शरीर की वजह से वे अपने इकलौते पुत्र संतोष की मदद से ही दिनचर्या शुरू कर पाते थे। जीवन की शांत वेला में उन्हें अपना रोगग्रस्त शरीर बहुत कष्ट दे रहा था। संतोष की शादी बहुत पहले हो चुकी थी।

परिवार छोटा था, घर में दो बेटियां और पत्नी थी। देवी प्रसाद को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए लगभग 30 वर्ष बीत चुके थे। देवी प्रसाद शरीर से लाचार थे और उनकी जरूरत भी सीमित थी। पिता ने कभी पेंशन के रुपए का हिसाब पुत्र से नहीं मांगा। वे यही सोचकर संतोष कर लेते कि संतान तो अपनी ही आत्मा की भौतिक उपस्थिति है, मेरा जो कुछ है मेरे पुत्र का ही तो है। दालान के सामने विशाल तालाब था। तालाब के दक्षिण किनारे पर प्राचीन शिवालय बना था। दालान की खिड़की से लगभग पूरा तालाब दिखता था। तालाब में जल के अलंकार कई श्वेत और रक्ताभ कमल खिले थे। कमल के पत्तों पर ओस की बूंदें बिखरी हुई थीं। सुबह की धूप में बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे कमल दल पर कई बाल सूर्य उतर आए हों। बालारुण से अलंकृत कमल के सौंदर्य को देखकर देवी प्रसाद मुग्ध हो गए। तालाब में खिले मनभावन ताजे कमल पुष्पों को देखकर मानस पटल पर अचानक पुरानी स्मृतियां साकार हो उठी। अनायास ही उन्होंने बुदबुदाते हुए स्वयं से कहा, देवकी को कमल के फूल बहुत पसंद थे। कांच की कठौती में पानी भरकर देवकी उसे कमल के फूलों से सजाया करती थी। कमल दल से सुसज्जित कठौती के पास बैठकर हम दोनों कितनी बातें करते थे। अभी तक देवकी के साथ मैं दो बार चाय पी चुका होता। सचमुच जीवन पथ पर चलते चलते कुछ ही समय बाद पति पत्नी की रुचि और स्वभाव एक हो जाते हैं। देवकी दुनिया से विदा क्या हुई, मेरे लिए तो जैसे जीवन का अनुराग ही विलुप्त हो गया। देवकी का रूप लावण्य जितना सुंदर और आकर्षक था, वह हर काम भी उतनी ही रुचिपूर्ण ढंग से करती थी। पुरानी स्मृतियों का सिलसिला शुरू हुआ तो यादों की कई परतें खुलने लगी। संतोष का बचपन और हम दोनों से असंख्य प्रश्न करता हुआ उसका चंचल बातुनी बालमन, जीवन का वह कितना मोहक कालखंड था। गतिशील कालखंड अच्छा हो या बुरा, रुकता कहाँ है। संतोष अब कितना सयाना हो गया है, कितनी नपीतुली बातें करता है, चेहरे पर शिकन लिए पता नहीं किस उलझन में डूबा रहता है। जब तक जीवन है परेशानी और संघर्ष तो रहेंगे ही। देवी प्रसाद ने आंगन की तरफ झांक कर मन ही मन कहा, आज देर तक सब सोए हुए हैं। मायूस मन से वे सोचने लगे, देवकी का साथ क्या छूटा, जीवन कष्टप्रद हो गया, मेरी कोई दिनचर्या अब समय से पूरी नहीं हो पाती है। पराश्रित होना कितना कष्टकर होता है। शरीर के जो अंग कभी सुख दे रहे थे वही अब दुख दे रहे हैं। तथापि जब तक जीवन है, तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद जीवन में अनुराग और उत्साह को बनाए रखूं, इसी में जीवन की सार्थकता है। पापा, मैंने बरामदे में पानी रख दिया है। कुछ क्षण रुककर संतोष ने जोर से कहा, पापा पानी रख दिया है, अच्छी बात है बेटा। ऐसा लगा जैसे देवी प्रसाद समाधि से अचानक जाग कर बोल उठे हों। देवी प्रसाद जी ने आहिस्ता आहिस्ता नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नाश्ता किया और श्रीमद् भागवत पुराण लेकर उसके पृष्ठ पलटने लगे। पवित्र भागवत में लिखी ज्ञान और अनुभव की कई मार्मिक पंक्तियों को उन्होंने अंडरलाइन कर रखा था। भागवत पुराण में महाराज भरत का मृग छोने पर मोहित होना और फिर मृग के रूप में जन्म ग्रहण करने का प्रसंग देवी प्रसाद बार बार पढ़ते थे। इस प्रसंग को पढ़कर उन्हें आभास होता कि व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति से भरी मनोवृत्ति ही हमारे जन्म के हेतु हैं। अपनी अच्छी या बुरी मनोवृत्ति के अनुरूप ही हम उत्तम या अधम शरीर धारण करते हैं। सामने सड़क पर हो रहे कोलाहल को सुनकर देवी प्रसाद ने भागवत पुराण को एक तरफ रख दिया और सामने सड़क की तरफ वो गौर से देखने लगे। कमजोर दृष्टि की वजह से उन्हें कुछ साफ नहीं दिख रहा था और कोलाहल की ध्वनि भी स्पष्ट नहीं थी। बेटा, सड़क पर क्या हो रहा है? संतोष ने धीरे से कहा, सड़क पर धार्मिक शोभा यात्रा जा रही है। बेटा, सड़क पर कौन जा रहे हैं? हर साल की तरह इस साल भी हाथी घोड़े और ऊंट पर शोभा यात्रा जा रही है। संतोष ने इस बार जोर से यह बात दोहराई। देवी प्रसाद ने फिर पूछा, सड़क पर क्या हो रहा है? इस बार संतोष ने पिता के कान के पास चिल्लाकर कहा, आप एक बार में सुनते नहीं हैं या फिर ना सुनने का नाटक करते हैं। कहा तो धार्मिक शोभा यात्रा है, वर्षों से इस दलान के आगे से यह शोभा यात्रा जाती है, सब पता है, फिर भी आप एक ही बात बार बार पूछकर मेरी उलझन बढ़ाते रहते हैं। बेटे के रूखे बर्ताव से देवी प्रसाद आहत होकर स्तब्ध हो गए। उन्होंने इशारे से संतोष को पास बुलाया और प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा मेरी उम्र 90 को छूने जा रही है, मेरी काया का हर अंग अब कमजोर हो गया है, मैं ना तो ठीक से देख पाता हूँ और ना ही सुन पाता हूँ। मेरे कान आँख हाथ पैर तो अब तुम ही हो। अपने बेटे का हाथ थामकर कुछ याद करते हैं उन्होंने आहत भरी मुस्कान के साथ कहा, इस शोभा यात्रा को देखकर मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई।

समय तुम्हारी उम्र लगभग 5 वर्ष रही होगी। इसी दलान पर मैं तुम्हें कंधे पर बैठाकर यही शोभा यात्रा दिखा रहा था। तुम कौतूहल वश शोभा यात्रा के एक ही जानवर के बारे में बार बार पूछ रहे थे। पापा, वह बड़ा दांत वाला कौन है? मैंने तुमको पुचकारते हुए कहा था, बेटा हाथी है। तुमने कई बार पूछा, पापा वह क्या है? मैंने हर बार खुश होकर कहा, बेटा हाथी है। तुम दिन भर यही

0: बेटा हाथी है, तुम दिन भर यही पूछते रहे पापा वह क्या था। मैंने हर बार तुम्हें प्यार और दुलार से कहा बेटा हाथी था, और आज मेरे दो बार पूछने पर ही तुम्हें उलझन होने लगी। बेटा, वृद्ध माता पिता तो बेटे के लिए बच्चों की तरह हो जाते हैं। बचपन की तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारी माँ और मेरी उलझन दूर हो जाती थी। क्या वृद्ध पिता की बातों को बच्चों की तरह नहीं ले सकते हो? एक बार सोचकर तो देखो, तुम्हारी भी उलझन दूर होने लगेगी। देवी प्रसाद की वाणी में वेदना थी। पिता की वेदना को महसूस कर पुत्र की अंतरात्मा हिल उठी। उसको लगा कि पापा सही तो कह रहे हैं। उसकी आंखें नम हो गई। उसने शालीनता से कहा, पापा माफ कर दीजिए, बेख्याली में मुझसे सचमुच बड़ी गलती हो गई। अब कभी आपकी किसी भी बात से मुझे उलझन नहीं होगी। पुत्र की मृदुलता मिश्रित सम्मान भरी बातें सुनकर वृद्ध पिता का दंतहीन मुख अबोध बालक की तरह खिल उठा।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे श्री मुक्तिनाथ झा की कहानी उलझन। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं मुक्ता चटर्जी के गाए गीत एवं भजन, और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस भजन के साथ, रचना है तुलसीदास।

सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मुक्ता चटर्जी के गाए गीत एवं भजन। अभी आप सुन रहे थे प्रभा माथुर की ये रचना, स्वर थे मुक्ता चटर्जी के। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत जिसे लिखा योगेश प्रवीण ने।

अभी आप सुन रहे थे योगेश प्रवीण की रचना, स्वर थे मुक्ता चटर्जी के। और इसी गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 8:30। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाजों में हीरो नंबर 1 इस फिल्म का गीत। गीत के बोल हैं समीर के और संगीत आनंद मिलिंद का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में राजा फिल्म का गीत। गीत के बोल हैं समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे राजा फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बीवी नंबर वन से। इस गीत को गाया है अनुराधा श्रीराम और अभिजीत ने, समीर की रचना और धुन अनु मलिक की।

बीवी नंबर वन इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अभिजीत और अनुराधा श्रीराम की आवाजों में। और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के

0: सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
0: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लैंड ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और

0: आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बजाय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले

0: पांच से सात दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

तू बदन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शकील बदायनी का लिखा गीत था और रवि का संगीत था। विविध भारती से समय सुन रहे हैं आप, आपके लिए कार्यक्रम।

आपके लिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो। फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन की तर्ज। अब आपको सुनवा रहे हैं कन्यादान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की तर्ज है।

कश्मीर की कली फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा था, OP नैयर ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए एक गाना सुनिए। राजा मेहंदी अली खान ने बोल लिखे हैं और मदन मोहन ने तर्ज बनाई है। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

अभी आप सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का गीत, और आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को कार्यक्रम के अगले गीत में। काला पानी फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन एसटी बर्मन की।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना काला पानी, इस फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म के गीत में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत और धुन ओपी नैयर की।

मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को पेइंग गेस्ट इस फिल्म के गीत में। गीत के बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत एसडी बर्मन का।

0: जमाना एक दिल एक जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा
1: हा हा हा छोड़ दो अचल जमाना क्या कहेगा
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा
1: जमाना क्या कहेगा
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: पेइंग गेस्ट फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और अब कार्यक्रम में अंतिम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। चलती का नाम गाड़ी इस फिल्म का गीत है जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है एसडी परमन ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का गीत। और इसी गीत के साथ ही पुराने फिल्मी नगमों का ये कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड अब यहीं समाप्त होता है।